0: लीजिए सुनिए अनमोल विचार।
1: समय किसी के लिए नहीं रुकता, बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता, इसलिए हर पल का सही उपयोग करना ही समझदारी है। सफलता पाने वाले लोग समय की कीमत समझते हैं और आज के काम को कल पर नहीं डालते। याद रखिए, समय हमारा इंतजार नहीं करता, लेकिन हम समय का सदुपयोग करके अपने भविष्य को

0: किसी के लिए नहीं रुकता। बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता, इसलिए हर पल का सही उपयोग करना ही समझदारी है। सफलता पाने वाले लोग समय की कीमत समझते हैं और आज के काम को कल पर नहीं टालते। याद रखिए, समय हमारा इंतजार नहीं करता, लेकिन हम समय का सदुपयोग करके अपने भविष्य को जरूर बेहतर बना सकते हैं।
1: ये था अनमोल विचार। अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मातृ वंदना से।

भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं भाई मनमोहन सिंह व साथियों की आवाजों में शब्द।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, प्रत्येक किसान की ये चाहत होती है कि वो अपनी जमीन से अधिक उत्पादन प्राप्त करें और आर्थिक तौर पर संपन्न बने। इसके लिए प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपज बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। फसलों से भरपूर पैदावार लेने के लिए भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बनाए रखना अहम बात है। इसके लिए फसल लेते समय खाद का प्रयोग हम करते हैं, अर्थात खाद को मिट्टी में अच्छी प्रकार से मिलाकर फसल की आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों को जमीन में हम

0: उपलब्ध करवाते हैं। यूं तो रासायनिक उर्वरकों का थोड़ा सा इस्तेमाल भी भूमि में अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है, लेकिन इसके बहुत सारे खराब प्रभाव भी होते हैं। रासायनिक उर्वरक एक तो महंगे होते हैं, सभी किसानों की पहुंच से बाहर होते हैं, इससे जो फसल उत्पादन की लागत है वो बढ़ जाती है, और साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से खेत की यानी मिट्टी की जो भौतिक दशा है वो भी खराब हो जाती है। रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ या इनके स्थान पर किसान भाई कंपोस्ट खाद का प्रयोग कर सकते हैं। कंपोस्ट खाद से अधिक उत्पादन आपको मिलेगी और साथ ही साथ खेत में मिट्टी की जो भौतिक दशा है उसमें भी सुधार आता है। कंपोस्ट खाद के प्रयोग से भूमि का संगठन अच्छा बनता है, जिससे मिट्टी की जलधारण क्षमता सुधरती है। कंपोस्ट खाद के पोषक तत्व धीरे धीरे निकलते हैं, जिससे ये भूमि में लंबे समय तक बने रहते हैं। कंपोस्ट खाद बनाना भी बहुत सरल होता है, आसान है और इसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं होता। प्रत्येक किसान भाई के पास कुछ जानवर ज़रूर होते हैं, जिन्हें वे खास करके खुले छोड़ देते हैं और उनका गोबर आदि जमा नहीं करते। इस तरह से ये बेकार में बर्बाद हो जाते हैं। किसान भाइयों, पशुओं के गोबर तथा मलमूत्र से सने खरपतवारों को किसी सुरक्षित गड्ढे में इकट्ठा करके उन्हें सड़ाकर अच्छी कंपोस्ट खाद बनाई जा सकती है। कंपोस्ट बनाने में यदि आप थोड़ी सी वैज्ञानिक विधि का भी इस्तेमाल करें तो इसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। कंपोस्ट बनाने के लिए 6 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा तथा 2 से 3 फीट गहरा गड्ढा बना लें। इसमें नीचे 1 फीट तक गोबर रखें और फिर ऊपर से मलमूत्र से सने हुए खरपतवारों तथा चारों के अवशेषों की एक तह फैला दें। संभव हो तो उस पर थोड़ी सी यूरिया भी छिड़क दें। यूरिया का छिड़काव हम इसलिए करते हैं क्योंकि इससे खाद जल्दी सड़ेगी और नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, इसी प्रकार से गोबर और कचरे की परत से गड्ढों को भर दें। अंत में ऊपर से मिट्टी लीपकर गड्ढों को बंद कर दें और कंपोस्ट को सड़ने के लिए छोड़ दें। अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। कच्ची कंपोस्ट खाद का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कच्ची गोबर अथवा कंपोस्ट खाद को खेत में देने से खेत में दीमकों का प्रकोप हो सकता है और फसल पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हमेशा पूरी तरह से सड़ी हुई कंपोस्ट व गोबर की खाद का ही प्रयोग करें। खाद को जल्दी सड़ाने के लिए बीच बीच में उसे उलट पुलट दें। अगर मौसम सूखा है तो पानी भी छिड़क देना चाहिए। इस प्रकार से 2 से 3 महीने में कंपोस्ट पूरी तरह से तैयार हो जाती है। पूरी तरह से सड़ी हुई कंपोस्ट में 0.5% नाइट्रोजन तथा 0.5% फास्फोरस व 1% तक पोटाश की मात्रा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी विद्यमान होते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप एग्री टिप्स सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले

0: सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
1: 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस दिन देश उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान जान गंवाई और अपने घरों से विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव न्यांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत लाइबेरिया संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 लोग घायल हुए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे। इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 मजदूरों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार MV रानी लक्ष्मी माया बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर आज सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शनिवार 15 अगस्त को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से चलकर माया बंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। लिटिल अंडमान के लिए नालंदा चलियान आज रात 9 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल 15 तारीख को सवेरे 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस आएगा।

ने कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कानेकोबार की यात्रा पर सोमवार 17 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और मंगलवार 18 तारीख को शाम 4 बजे कानेकोबार से चलकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। नालंदा जलियान ननकौरी होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर मंगलवार 18 तारीख को सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और गुरुवार 20 तारीख को सवेरे 8 बजे कैम्बल बे से चलकर ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए चलेगा।

एमवी रंगा शहीद द्वीप के लिए आज दिन में 11 बजे श्रीविजयपुरम से चलेगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए छूटेगा तथा दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम वापस आएगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी रानी चंगा आज दिन में 11:30 पर श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा। ये जहाज दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप के लिए आज दोपहर बाद 2:30 पर श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी जॉली बॉय आज संध्या 5 बजे श्रीविजयपुरम से छूटेगा और कल शनिवार 15 तारीख को सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम वापस आएगा। एमवी रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए कल शनिवार 15 अगस्त को सवेरे 6 बजे श्रीविजयपुरम से छूटेगा और कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्रीविजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी रानीचंगा कल सवेरे 6:15 पर श्रीविजयपुरम से रवाना होगा और कल ही सवेरे 8:30 पर शहीद द्वीप के लिए चलेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप के लिए कल सवेरे 6:15 पर श्रीविजयपुरम से चलेगा और सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर एमवी बाराटांग कल सवेरे 7 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी रविवार 16 तारीख को सवेरे 7 बजे रंगत से चलकर उन्हीं मार्गों से होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप के लिए कल दिन में 11 बजे श्रीविजयपुरम से छूटेगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम वापस आएगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी जॉली बॉय कल दिन में 11:30 पर श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा। ये जहाज दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए चलेगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर श्रीविजयपुरम से चलेगा और शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम वापस आएगा। और स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल संध्या 5 बजे श्रीविजयपुरम से रवाना होगा और रविवार 16 तारीख को सवेरे 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए चलेगा। श्रोताओं, ये था जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:15 हुए हैं। प्रस्तुत है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

साथ आज मैं हूँ आपकी रेडियो सखी सुनीता। दोस्तों आज बातें वतन की। दोस्तों वतन की मिट्टी की खुशबू बता रही है स्वतंत्रता की नई सुबह आने वाली है। जिस आजादी के लिए वीरों ने अपना सर्वस्व लुटाया वो स्वतंत्रता का सूरज फिर उजाला लेकर आया है।

दोस्तों, मेरा वतन मेरी पहचान, इसके लिए हर धड़कन कुर्बान। आने वाली है आज़ादी की वो सुनहरी भोर, गूंजेगा भारत माँ का जय जयकार चारों ओर।

दोस्तों, वतन से बढ़कर कोई ख्वाब नहीं, तिरंगे से प्यारा कोई जवाब नहीं। स्वतंत्रता की हवा जब चलती है, भारत माँ की शान और भी बढ़ती है।

0: तो दोस्तों, वतन की खुशबू से अब हमें दीजिए इजाजत, होगी फिर मुलाकात एक नए विषय के साथ एक नए अंदाज में। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी सुनीता। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की 330वीं कड़ी।

कुंभकर्ण वध के बाद युद्ध भूमि में अब रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद आ उतरा है। अनेक प्रकार के वाण कृपाण तथा अन्य आयुध चारों दिशाओं में छा गए हैं। इधर वानर और रीछ योद्धा पर्वत खंडों और वृक्षों से उस पर प्रहार कर रहे हैं।

बाण तथा अन्य आयुध चारों दिशाओं में छा गए हैं। इधर वानर और रीछ योद्धा पर्वत खंडों और वृक्षों से उस पर प्रहार कर रहे हैं, किंतु इनका उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। मेघनाथ ने हनुमान, अंगद, नल, नील, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि महारथियों के शरीर अपने अस्त्रों से छलनी कर दिए। मेघनाथ के कुछ बाण सर्पों का रूप धारण कर वानर सेना के महारथियों को बांधते जा रहे हैं। तब श्री राम ने अपनी एक और लीला दिखाने के लिए अपने को भी नागपाश में बंधवा लिया। ये देख देवतागण चिंतातुर हो गए। मेघनाद ने तब त्रिशूल से वयोवृद्ध जांबवान पर आक्रमण किया, लेकिन जांबवान ने वही त्रिशूल अपने हाथों से ग्रहण कर मेघनाद पर प्रहार किया, जिसके आघात से वो मूर्छित होकर गिर पड़ा।

श्रोताओं, अभी आप रामचरित मानस गान की 330वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह व संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:40 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम गांधी चर्चा।

नमस्कार श्रोताओं, गांधी चर्चा में बातें शांति दूत गांधी की। परिवार के बच्चों को गांधी जी बहुत अच्छे लगते थे और गांधी जी को भी बच्चों से काम करवाना सहज लगता। वे गोंद और डाक टिकट खरीद लाए। उन्होंने बच्चों से कहा कि पत्रों को सफाई से मोड़कर लिफाफे पर डाक टिकट लगाएं। बच्चों ने इस छोटे छोटे कामों को बहुत लगन और उत्साह से किया। जब सब लिफाफे तैयार हो गए तो उन्होंने बड़े बच्चों से कहा, अब आप लोग लिफाफों पर पते लिखें और सारे पत्र डाक में डाल दें। बच्चों ने जल्दी से सारे काम कर डाले। उन्होंने ये पत्र प्रमुख भारतीयवासियों के पास भेज दिया। गांधी जी इस समय 27 वर्ष के थे। वे बड़े उत्साह से काम कर रहे थे। लेख व पुस्तिकाएं भेजने के बाद उन्होंने सांस ली ही थी कि उन्हें पता लगा कि बंबई में

प्लेग की घातक बीमारी फैल गई है। वे तुरंत बंबई पहुंचे और बीमारी की रोकथाम करने वाली सरकारी समिति के साथ काम करने लगे। यहां उन्होंने देखा कि गरीबों के पास नित्य क्रम के लिए शौचालय तक नहीं है। जो भी स्थान मिलता वे लोग वहीं बैठ जाते। हरिजन कहे जाने वाले गरीबों की दुर्दशा ने उन्हें हिलाकर रख दिया। इन गरीबों को केवल सफाई करने के लिए लगाया जाता था। बस गांधी जी ने सब गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाएं जुटाने का काम शुरू कर दिया। अपने खाली समय में गांधी जी बीमारों की सेवा करते। जब उन्हें पता चला कि उनके बहनोई गंभीर रूप से बीमार है, वे उन्हें अपने कमरे में ले आए और उनकी मृत्यु उपरांत सेवा करते रहे। बंबई से गांधी जी पूना गए। भारत के जाने माने नेता गोपाल कृष्ण गोखले तथा बाल गंगाधर तिलक से मिले। गांधी जी द्वारा भेजी गई पुस्तिकाओं व उनके प्रकाशित लेखों से वे दोनों उनसे पहले से ही प्रभावित थे और परिचित भी थे। तिलक ने हाल ही में गीता का अनुवाद किया था। उन्होंने गांधी जी से गीता पर चर्चा की। गोखले ने उनसे भारतीय दर्शन पर बातचीत की, फिर भारत की स्थितियों के बारे में भी बताया। गांधी जी ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों की दुर्दशा के बारे में बताया। गांधी जी गहराई से सब बातों पर विचार करते रहे। जब गांधी जी राजकोट लौटे तो उन्हें नाटाल यानी दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों द्वारा भेजा गया एक अत्यावश्यक पत्र मिला। उन्होंने गांधी जी से तुरंत लौट आने की प्रार्थना की थी। गांधी जी और कस्तूरबाई ने जल्दी से सामान बांधा। उन्होंने रास्ते के लिए शाकाहारी भोजन, ढेर सारे फल और भारतीय मिठाई भी रख ली। फिर वे दोनों बच्चों के साथ पानी के जहाज में बैठकर दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यात्रा करने में गांधी जी को बड़ा अच्छा लग रहा था। वे उन्हें प्राय डेक पर ले जाते और कहानियां सुनाते। उन सब ने समुद्र यात्रा का खूब आनंद उठाया। इधर गांधी परिवार समुद्र यात्रा का आनंद उठा रहा था, उधर गांधी जी के लौटने की खबर पूरे दक्षिण अफ्रीका में फैल गई। वहां रहने वाले भारतीय उत्सुकता से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन गोरे लोग घबरा रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि गांधी जी के साथ कैसा व्यवहार करें। 800 भारतीयों को लेकर दो जहाजों ने डरबन बंदरगाह में लंगर डाल दिए। यात्रियों को संगरोष में 5 दिन तक जहाज में ही रखा गया। 5 दिन के बाद संगरोष की आवृत्ति 3 सप्ताह के लिए और बढ़ा दी गई। यात्री थके हुए थे। 26वें दिन दोनों जहाजों के यात्रियों को उतरने की अनुमति दी गई। गांधी जी के मित्र उन्हें व उनके परिवार को लेने जहाज के अंदर आ गए। एक हितैषी ने उन्हें बताया कि कुछ गोरे युवक गांधी जी से मारपीट करने के लिए बाहर खड़े हैं। 2-3 मित्रों ने गांधी जी को जहाज पर ही रोक लिया। अन्य मित्र कस्तूरबाई और बच्चों को लेकर चुपचाप बंदरगाह से बाहर चले गए। गांधी जी मित्रों के साथ बंदरगाह से बाहर निकले। जब वे सड़क पर पहुंचे ही थे कि एक लड़के ने उन्हें पहचान लिया। वह चिल्लाया, वह देखो गांधी जा रहा है। आवाज सुनते ही गोरे युवकों ने गांधी जी को घेर लिया। एक ने उनकी पगड़ी झपट ली, दूसरे ने ठोकरें मारी और तीसरा उन पर पत्थर फेंकने लगा। गांधी जी के मित्रों ने तुरंत एक रिक्शा किराया पर ले लिया, लेकिन झगड़ा देखकर जुलू रिक्शा वाला डर गया और वह उन्हें वहीं छोड़कर भाग गया। गोरे गुंडे गांधी जी को पकड़कर मित्रों से अलग ले गए और उन्हें बुरी तरह मारा। वह सड़क पर गिर पड़े। बहुत देर बाद वे कोशिश करके उठे और रेलिंग पकड़कर खड़े हो गए। अभी भी उन पर सड़े हुए अंडे और पत्थर पड़ रहे थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ से अपना सिर छिपा लिया। तभी उन्हें एक महिला का स्वर सुनाई दिया। अरे ये तो गांधी है। स्वर मृदु और दयापूर्ण था। गांधी जी ने सर उठाकर देखा कि एक औरत अपने छाते की सहायता से आक्रमणकारियों से लड़ रही है और सबको डांट रही है।

आखिर में पुलिस के सिपाही आ गए। उन्हें देखते ही हमलावर भाग गए। गांधी जी ने महिला को धन्यवाद दिया। महिला ने अपना परिचय दिया, गांधी जी मैं पुलिस सुप्रिंटेंडेंट की पत्नी मिसेस अलेक्जेंडर हूँ, और गांधी जी से हाथ मिलाया। इतने में गांधी जी के मित्र भी आ पहुंचे और उन्हें वे ले गए। गोरी हमलावरों ने गांधी जी का पीछा किया और जहां वे ठहरे थे वहां भी पहुंच गए। उन्होंने मेजबान को धमकी दी कि अगर गांधी ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो वे उनके मकान में आग लगा देंगे। आधी रात थी, मेजबान और मेहमान दोनों संकट में थे। शीघ्र ही पुलिस सुप्रिंटेंडेंट अलेक्जेंडर घटनास्थल पर जा पहुंचे। उन्होंने चुपचाप गांधी जी के पास संदेशा भेजा, कृपया पिछले दरवाजे से आप निकल जाइए। गांधी जी ने भारतीय सिपाही का वेश पहना, भीड़ के बीच से होकर बाहर निकल आए और सीधे पुलिस थाने जा पहुंचे। थाने पहुंचकर उन्होंने चैन की सांस ली। गोरे लोगों द्वारा गांधी जी को पीटे जाने का समाचार इंग्लैंड पहुंचा। ब्रिटेन निवासी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले कुछ गोरों द्वारा गांधी जी के साथ किए गए दुर्व्यवहार से बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने गांधी जी के पास क्षमा याचना के अनेक पत्र भेजे। उन्होंने नाटाल सरकार को भी निर्देश दिया कि वे दोषियों को दंड दे। हमला करने वाले गोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। अपराधियों की शिनाख्त करने के लिए गांधी जी को बुलाया गया। गोरे युवक एक पंक्ति में खड़े थे। गांधी जी ने उनकी ओर देखा, वे सबको पहचान गए। फिर वे बड़े ही मृदु स्वर में बोले, मैं इन सब लोगों को माफ करता हूँ। जब इन लोगों को सच्चाई का पता चलेगा तो इन्हें अपने आचरण पर पछतावा होगा। इतना कहकर उन्होंने पुलिस अधिकारी को धन्यवाद दिया और बाहर चले गए। तो श्रोताओं, आज बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर बिजली चमकने व गरज के साथ वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस बीच वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में कहा जाता है कि अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसके चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 16 अगस्त तक समुद्र में न जाएं। कल सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी।

देर बात यानी सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। 7:05 पर होगा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागनी का आप आनंद ले पाएंगे सवेरे 7:15 पर। व साथ ही विविध भारती मुंबई से होगा प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर फनकार होंगे KL सहगल और रेशमा। सवेरे 9 बजे आप सुन सकेंगे फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर उस्ताद अब्दुल लतीफ खान का हिंदुस्तानी शैली में सारंगी वादन होगा। दिल्ली से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे सवेरे 10 बजे। दिन के 11 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1350वीं कड़ी। निकोबारी कार्यक्रम में 11:30 पर लोकगीत आप सुन सकेंगे। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम में बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा। मलयालम कार्यक्रम होगा 12:30 पर। महफिले कवाली कार्यक्रम में दोपहर 1:10 पर आप आबिदा परवीन को सुन सकेंगे। 1:30 पर होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर पहली सभा का समापन होगा, लेकिन 100.9 MHz FM पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे हेलो डियर फ्रेंड्स। और दोपहर बाद 3:30 पर होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 5 बजे तमिल कार्यक्रम से, जिसमें एक ही श्रोता के पसंद के गीत आप सुन सकेंगे। बंगला कार्यक्रम में 5:30 पर नजरुल गीत आप सुनेंगे। कृषि जगत कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6 बजे, जिसमें डॉक्टर एम स्वामी से बातचीत का विषय रहेगा मसालों का प्रसंस्करण व संवर्धन। संध्या 6:45 पर होगा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। 6:55 पर आप सुनेंगे बैंड म्यूजिक। संध्या 7 बजे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 8 बजे होगा समाचार तरंगिणी। 8:30 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरवगान। और रात 10 बजे आप सुन सकेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेश आते हैं, व साथ ही विविध भारत मुंबई से होगा प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात 9:30 पर करंट अफेयर्स का कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: संसदः प्रावृट्टसत्रं गतदिने समाप्तिमगात्। उभयोः सदनयोः कार्याचरणम् अनिश्चितकालाय स्थगनेन सह सम्पन्नम्। एतत् सत्रं जुलाई मासस्य 20 दिनांके प्रारब्धम्, यस्मिन् 15 दिवसेषु आहत्य 21 उपवेशनानि अजायन्त। अस्मिन् सत्रे सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयकं समेत्य 12 विधेयकानि संसदा पारितानि। स्वकीय समापन भाषणे राज्यसभाध्यक्षः सीपी राधाकृष्णन् इत्यसौ सदने भूयो भूयशः संजातेषु व्यवधानेषु चिन्तां प्राकटयत्। तेनोक्तं यत् एतादृशेषु विघ्नेष्वपि सदनेन 12 विधेयकानि पारयित्वा स्वकीयं मूल वैधानिक कर्तव्यं निर्व्यूढम्। अध्यक्षेण सूचितं यत् सत्रे राज्यसभायाः कार्यं केवलं 37 होरात्मकमेव प्राचलत्। इतः पूर्वं संसदा खनिज संशोधन विधेयकं 26 पारितं, यच्च गतदिने राज्यसभयापि अनुमोदितम्। कृष्णांगारक खनिमंत्री जी किशन रेड्डी इत्यसौ 57 मूलाधिनियमस्य संशोधनार्थं एतं विधेयकं सदने प्रस्तुतवान्। अद्यतावत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवसः वर्तते। देशस्य विभाजन काले स्वप्राणान् आहुतवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि अत्रावसरे देशः श्रद्धांजलिं समर्पयति। अस्य दिवसस्य आचरणाय कृत्स्नेहि देशे राष्ट्रिय राजधान्याञ्च विविधाः स्मृति कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। केन्द्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः अद्य विभाजन विभीषिका स्मृति दिवसस्य पूर्वसंध्यायां नवदिल्ल्यां आयोजितं एकं विशेष कार्यक्रमं संबोधितवान्। एकस्मिन् सामाजिक संचार पटलीय संदेशे असौ देशस्य विभाजनकाले घोरयातनाम् अनुभूतवद्भ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः स्वकीयां भावपूर्णां श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। तेनोक्तं यत् सर्वकारः एतं दारुण इतिहासं संस्मरन् राष्ट्रस्य एकताम् अखण्डतां सामाजिक सौहार्दं च निरन्तरं सुदृढीकर्तुं पूर्णतया कटिबद्धो वर्तते। स्वतंत्रता दिवसावसरे दिल्ली मेट्रो सेवाः सर्वेषां कृते अन्तिमस्थानकेभ्यः प्रातः 4 एव प्रारप्स्यन्ते। दिल्ली मेट्रो निगमेन निगदितं यत् एषः निर्णयः स्वतंत्रता दिवस समारोहे सहभागितायै आगच्छतां विशेषातिथीनाम् आमन्त्रितानां सुगमगमनागमनाय गृहीतः। नाइजीरिया देशस्य लागोस नगरे 4 दिनानि यावत् आयोजितायां राष्ट्रमण्डल प्रतिस्पर्धायाम् अत्युज्ज्वल प्रदर्शनेन सह भारतं 35 स्वायत्ती कृतवत् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7 हैं, लीजिए सुनिए जन सूचनाएं। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 1.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 92% और न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 30.5 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 5:08 पर हुआ व सूर्यास्त का समय रहेगा 5:40। अब जायजा लेते हैं उड़ान संबंधी जानकारी का। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान उड़ान संख्या 2937 दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और यात्री विमान उड़ान संख्या

9-3-6 श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी वापसी उड़ान भरेगा दिन के 11:40 पर। श्रोताओं, ये थी एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ान संबंधी जानकारी। श्रोताओं, अब सुनिए एक सूचना। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2026 को लाल किले की प्राचीर से होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह का डीडी के श्री विजयपुरम के माध्यम से सुबह 6:25 से कार्यक्रम की समाप्ति तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। साथ ही नेताजी स्टेडियम श्री विजयपुरम में 80वें स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह का भी डीडी के श्री विजयपुरम के यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुबह 8:50 से कार्यक्रम की समाप्ति तक लाइव स्ट्रीम भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शाम 5 से रात 8 तक डीडी के श्री विजयपुरम द्वारा विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। तत्पश्चात लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन का पुनः प्रसारण किया जाएगा। 16 अगस्त को भी माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन को डीडी के श्री विजयपुरम सुबह 8 से कार्यक्रम की समाप्ति तक पुनः प्रसारण करेगा।

जिन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस ब्रेक के बाद।

0: परेशानी से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कल मुख्य समारोह नेताजी स्टेडियम में आयोजित होगा। द्वीपों के उपराज्यपाल कल सुबह 9:19 पर ध्वजारोहण करेंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आज कला एवं संस्कृति निदेशालय की ओर से राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं और अंडमान निकोबार कमान की ओर से आज शाम फ्लैग पॉइंट में लाइव बैंड कॉन्सर्ट का आयोजन किया जाएगा। सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनल पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के

0: प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल सुबह 7 बजे से दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण और देश के नाम संदेश का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसे सुबह 6:25 से दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम अपने यूट्यूब चैनल पर प्रसारित करेगा। नेताजी स्टेडियम से राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का सजीव प्रसारण सुबह 8:50 से किया जाएगा। शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। इसके अलावा कल रात 8 बजे और 16 अगस्त को सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री के संबोधन का पुनः प्रसारण होगा। आकाशवाणी श्री विजयपुरम कल सुबह 8:50 से द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी द्वारा नेताजी स्टेडियम से ध्वजारोहण और द्वीपवासियों के संबोधन का सीधा प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के देश के नाम संबोधन के चलते आज शाम का प्रादेशिक समाचार 7:05 के बजाय शाम 6:45 पर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के संबोधन को देखते हुए कल सुबह का प्रादेशिक समाचार भी सुबह 7:05 के स्थान पर 6:45 पर प्रसारित किया जाएगा। 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कल मुख्य समारोह श्री विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम में आयोजित होगा। द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी सुबह 9:19 पर ध्वजारोहण करेंगे। द्वीपों के तीनों जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर एक साथ ध्वजारोहण किया जाएगा। साथ ही प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार अन्य विभागों से भी अपने अपने परिसर में समारोह आयोजित करने की अपील की गई है। उधर श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण किया जाएगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष वी वेट्रीवेलु वार्ड नंबर 7 में सुबह 6:15 पर, कनिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश पाल गोविंद नगरपालिका परिषद विद्यालय में सुबह 6:45 पर और अध्यक्ष एम वसंता नगरपालिका परिषद कार्यालय परिसर में सुबह 7 बजे ध्वजारोहण करेंगी। अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा द्वीप समूह में बनाए गए 2 ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के उपलक्ष्य में लोक निवास में कल समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी ने गोताखोरों को प्रमाण पत्र और पदक प्रदान कर सम्मानित किया। इस समारोह में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और पर्यटन हितधारक उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने समुद्री पर्यटन के क्षेत्र में द्वीप समूह की अपार संभावनाओं और डाइविंग गतिविधियों के माध्यम से हासिल किए गए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल के मार्गदर्शन में द्वीप समूह को एक वैश्विक डाइविंग गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए भारत सरकार की डेस्टिनेशन डेवलपमेंट स्कीम को एक प्रस्ताव सौंपा गया है। इस पहल का मुख्य ध्यान डाइविंग गतिविधियों से जुड़े मुद्दे, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ जेट्टी और नाव मरम्मत सुविधाओं जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार करने पर होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से ही सुन रहे हैं।
1: गुड न्यूज फॉर द पीपल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जुंगलिघट लेकर आया है एक नई शुरुआत। For the first time in Andaman, full-time neurology and full-time gynecology and obstetric specialist services are now available under one roof. Ab migraine, lakwa, mirgi, chakkar, naso ki bimariyan, yaddasht ki samasyaen, EEG, EMG aur NCV jaisi unnat jaanchon ke saath saath garbhavastha ki dekhbhal, banchpan, infertility, PCOS, महिलाओं की सभी सामान्य एवं जटिल समस्याओं का विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध है। स्वास्थ्य से समझौता न करें। विजिट हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जुंगलिघट। अपॉइंटमेंट के लिए अभी कॉल करें 9933219444।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है।

0: संस्कृति मंत्रालय की ओर से आज के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस संबंध में द्वीपों में कला एवं संस्कृति निदेशालय आज सुबह 9:30 बजे से टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के इतिहास के इस दुखद अध्याय के दौरान अनगिनत लोगों द्वारा सहे गए भारी कष्ट और दर्द को याद करना है। विभाग ने लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया है। अंडमान निकोबार कमान की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक फ्लैग पॉइंट में सेना और नौसेना द्वारा देशभक्ति पर आधारित लाइव बैंड कॉन्सर्ट का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम सभी के लिए खुला रहेगा। भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और जहाजरानी सेवा निदेशालय के जहाजों पर आज और कल शाम 5:45 से रात 10 बजे तक मैरिन फ्लैग पॉइंट के सामने खड़े जहाजों पर रोशनी की जगमगाहट और कल जहाजों में शाम 5:39 पर एक साथ रंग बिरंगे फ्लेयर्स के साथ फायरिंग की जाएगी। द्वीप समूह के दौरे पर आए भारतीय रक्षा लेखा सेवा 2025 बैच के 12 प्रशिक्षुओं के एक दल ने अंडमान निकोबार कमान के अपने त्रिसेवा कमान अटैचमेंट के तहत लोक निवास में उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी से शिष्टाचार मुलाकात की। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कल क्षेत्रीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संग्रहालय आगंतुकों के लिए बंद रहेगा। ये संग्रहालय अगले कार्य दिवस में नियमित रूप से कार्य करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए जहाजरानी सेवा निदेशालय बम्बू फ्लैट और इसके आसपास के यात्रियों की सुविधा के लिए फिनिक्स बे और बम्बू फ्लैट के बीच अतिरिक्त जलयान सेवाएं संचालित करेगा। ये सेवाएं कल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच संचालित होंगी। बीटेट द्वारा संबद्ध फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन और फूड प्रोडक्शन कार्यक्रमों के लिए इच्छुक उम्मीदवार श्रेणी 1, 2, 3 तथा 4 के तहत कॉमन कॉलेज एडमिशन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल आज से 16 अगस्त तक खुला रहेगा। परामर्श 17 अगस्त सुबह 10 बजे से डीब्रेड के सम्मेलन कक्ष में लिया जाएगा। इसके लिए छात्रों का पंजीकरण कार्य सुबह 9 बजे से 10 बजे तक चलेगा। जिन उम्मीदवारों ने पहले आवेदन किया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कल मुख्य समारोह नेताजी स्टेडियम में आयोजित होगा। द्वीपों के उपराज्यपाल कल सुबह 9:19 पर ध्वजारोहण करेंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आज कला एवं संस्कृति निदेशालय की ओर से राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं और अंडमान निकोबार कमान की ओर से आज शाम फ्लैग पॉइंट में लाइव बैंड कॉन्सर्ट का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी।

कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर गली, हर शहर और हर गांव की अपनी एक कहानी है, जहाँ रंग अलग है, बोली अलग है, लेकिन दिल सबके एक है। यहाँ की मिट्टी में संस्कृति है और अपनों के लिए प्यार है। यही एकता, यही प्यार और यही अपनापन हमारे देश को सबसे खास बनाता है।

दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया उससे बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। हमारा भारत वीरों की भूमि है। यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां मिलकर एकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। हमारा देश भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारी पहचान, हमारी शान और हमारा अभिमान है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि हालात जैसे भी हों, मुस्कुराना सीख ले, गिरकर फिर से उठ जाना सीख ले। हर कोई साथ नहीं देगा जिंदगी में, हर कोई साथ नहीं देगा जिंदगी में, इसलिए खुद का साथ निभाना सीख ले। बहुत बहुत स्वागत आप सभी दोस्तों का इस कार्यक्रम में। इस वक्त मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त शबाना।

से होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह का डीडीके श्री विजयपुरम के माध्यम से सुबह 6:25 से कार्यक्रम की समाप्ति तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। साथ ही नेताजी स्टेडियम श्री विजयपुरम से 80वें स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह का भी डीडीके श्री विजयपुरम के यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुबह 8:50 से कार्यक्रम की समाप्ति तक लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक डीडीके श्री विजयपुरम द्वारा विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। तत्पश्चात लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन का पुनः प्रसारण किया जाएगा। 16 अगस्त को भी माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन को डीडीके श्री विजयपुरम सुबह 8 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक पुनः प्रसारण करेगा। अब सुनिए एक और सूचना। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या यानी आज 14 अगस्त को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र के नाम दिए गए संदेश हिंदी और अंग्रेजी में डीडीके श्री विजयपुरम द्वारा आज शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

सोनू निगम और अनुराधा श्रीराम की आवाज़ों में ये था बोज दी फॉरगटन हीरो फिल्म का गाना, जिसे लिखा था जावेद अख्तर ने व संगीत से सजाया था ए आर रहमान ने। श्रोताओं, अब सुनिए एक सूचना। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2026 को लाल किले की प्राचीर

0: मुंशी का लिखा एवं ए आर रहमान का संगीतबद्ध किया हुआ ये था नायक फिल्म का गाना। स्वर दिया था उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने। श्रोताओं अब कार्यक्रम में समय हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है।

आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो, अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक

हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में तैयार ये था जमीन फिल्म का गाना। शब्दकार समीर व स्वर दिया था के और शान ने। श्रोताओं, अरब कार्यक्रम का आखिरी गीत चाइना गेट फिल्म से।

0: सोनू निगम की आवाज़ में अभी आपने चाइना गेट फिल्म का ये गीत सुना, जिसे लिखा था समीर ने व संगीत से सजाया था अनु मलिक ने। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।
0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को उपराज्यपाल की मंजूरी, आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना राय बाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी

0: के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद करते हैं। इतिहास का वो क्षण जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल में आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली कोलार 6 लेन रोड पर मदर टेरेसा स्कूल के पास से शुरू होगी और इसमें लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आयोजकों को रैली में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रैली में शामिल होंगे। यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इंकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 21 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आंदोलन को एक नया रूप दे रहे हैं। छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और इस भारी छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर और कारागार

0: विभाग में वार्डर और मैट्रन पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के आदेश में उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने पहले ही सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन स्तर के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
1: टनल का कुछ पोर्शन धंस गया है, उसमें पानी आ गया था और पानी आने के कारण लगभग 30 से अधिक लोग थे, जिसमें से सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में 14 लोग जिंदा हैं और 7 को मृत घोषित किया गया है। वर्तमान में रेस्क्यू काम में थोड़ी सी बाधा हो रही है क्योंकि पानी लगातार आ रहा है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए डिजिटल मुद्रा आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शुरू की जाएगी। ये पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी वितरण में एक नए विकास का प्रतीक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में एक और कदम है। सब्सिडी वाले अनाज के भौतिक वितरण से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT और अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के जरिए डिजिटल डिलीवरी तक। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित DBT को पूरी तरह से लागू करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष अतिथि होंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंती भाई के अलावा केंद्र और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
3: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ के हालत गंभीर हो गए हैं। भद्रक के अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर से ऊपर बह रही है और इसका जलस्तर लगभग 19.27 मीटर तक पहुंच गया है। भंडारी पोखरी समेत नदी के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ गई है और कई इलाके अलग थलग पड़ गए हैं। चंपुआ में बाढ़ के पानी ने एक पुल को बह दिया है जिससे सड़क संपर्क टूट गया है। इसी महीने की 20 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूती के रघुनाथपुर में एक भयावह हमले में 4 से 11 वर्ष की आयु के 3 बच्चों की मौत हो गई है। आरोप है कि 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने 4 बच्चों को अपने घर के

0: एक कमरे में ले जाकर उन पर हसीये से हमला किया। और अब खेल समाचार। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल सातवीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ इन्होंने सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। संसद के मानसून सत्र का समापन आज सभी अखबारों की पहली खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हंगामे के बीच धुला संसद का मानसून सत्र। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, न चर्चा न मंथन, सत्ता और विपक्ष की अड़ाअड़ी में बर्बाद हो गए जनता के 171 करोड़ रुपए। अमर उजाला लिखता है, संसद में हंगामे का ग्रहण, 19 बैठकों में 19 घंटे भी न चल पाई लोकसभा। संसद सत्र से निराशा शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, मॉनसून सत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। बड़े अफसोस की बात है कि सत्र के दौरान हर दिन कार्यवाही बाधित हुई। प्रश्नकाल का ना होना सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली के लाल किला धमाकों की साजिश रचने में के बड़े खुलासे को भी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। दैनिक भास्कर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, लाल किला धमाकों में अलकायदा का था हाथ, स्लीपर सेल के जरिए रची थी साजिश। पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ा रुख, हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। न्यायालय ने कहा, ज्यादा चीनी नमक और फैट वाले पैक्ड फूड पर चेतावनी लेबल लगाने पर सरकार फैसला लेने में विफल रही तो खुद दिशा निर्देश जारी करेंगे। हरियाणा में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 7 साल तक मिलेगी GST से छूट। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में किए बदलाव, 25 लाख निवेश करने पर सरकार भी मिलाएगी इतनी ही रकम।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस महिला सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I am Nishit Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu to address the nation today on the eve of 80th Independence Day. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Delhi government approves 20% quota for former Agniveers in fire services and prison department, age limit relaxed. 7 workers killed and 14 injured following landslide and water seepage in under construction tunnel in Chamoli district of Uttarakhand. And Iga Swiatek beats Elena Rybakina to claim the women's singles title at Canadian Open Tennis. And now the news in detail. President Draupadi Murmu will address the nation today on the eve of the 80th Independence Day. The president's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashwani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashwani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks. Today is Partition Horrors Remembrance Day. The nation is paying homage to all of those who sacrificed their lives and suffered unimaginable pain during the partition in 1947. We have a report.
3: To mark the Partition Horrors Remembrance Day, various programs are being organized across the country, including in the national capital. In a fitting tribute to all those who lost their lives due to the partition of the nation and were displaced from their roots, in 2021, the government had decided to observe 14th August

श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज के हमारे फनकार हैं रेशमा और के एल सहगल। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं रेशमा की आवाज़ से।

0: अपने जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो, अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: श्रोताओं, इस समय आप सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं के एल सहगल को।

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। आज के हमारे फनकार थे रेशमा और KL सहगल। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने नया दौर फिल्म से लिया था। आवाजें थी मोहम्मद रफी बलबीर और साथियों के, बोल साहिर के थे व धुन बनाई थी ओ पी नैयर ने। अब आपको सुनवाते हैं जंगली फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार शैलेंद्र व संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो, अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की

0: गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: श्रोताओं, इस समय आप फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने सुन रहे हैं। शांति माथुर और साथियों की आवाजों में आइए सुनते हैं सन ऑफ इंडिया फिल्म का गीत।

नौशाद के संगीत निर्देशन में तैयार ये था सन ऑफ इंडिया फिल्म का गाना। शब्दकार शकील बदायूनी व आवाजें थीं शांति माथुर और साथियों की। अब आपको सुनवाते हैं कश्मीर की कली फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। बोल SH बिहारी के हैं व धुन बनाई है OP नैयर ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: हेलो, मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं आपका दोस्त बनकर आपके शरीर में घुसकर आपको बीमार कर सकता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती माँ मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी एचआईवी जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
0: श्रोताओं, अब सुनिए एक सूचना। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2026 को लाल किले की प्राचीर से होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह का डीडी के श्री विजयपुरम के माध्यम से सुबह 6:25 से कार्यक्रम की समाप्ति तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। साथ ही नेताजी स्टेडियम श्री विजयपुरम से 80वें स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह का भी डीडी के श्री विजयपुरम के यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुबह 8:50 से कार्यक्रम की समाप्ति तक लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शाम 5 से रात 8 तक डीडी के श्री विजयपुरम द्वारा विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। तत्पश्चात लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन का पुनः प्रसारण किया जाएगा। 16 अगस्त को भी माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन को डीडी के श्री विजयपुरम सुबह 8 से कार्यक्रम की समाप्ति तक पुनः प्रसारण करेगा। अब सुनिए एक और सूचना। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या यानी आज 14 अगस्त को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र के नाम दिए गए संदेश हिंदी और अंग्रेजी में डीडी के श्री विजयपुरम द्वारा आज शाम 7 से प्रसारित किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो। हे, हम सारे हैं भारतवासी।

आनंद बख्शी का लिखा एवं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ अभी आपने जिगरी दोस्त फिल्म का ये गीत सुना। स्वर दिया था मोहम्मद रफी ने। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में अभी आपने ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत सुना, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने व संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हे, स्टिल स्टक ऑन ओल्ड कार? स्विच टू स्मार्टर फ्यूल विद मोर सेविंग्स विद विक्टोरियस SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के तहत आज हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद अब्दुल लतीफ खान का सारंगी वादन। इनके साथ तबले पर नफीस अहमद खान तथा तानपुरे पर विलास पेडनेकर और शैलेंद्र दियोधर ने संगति की है। तो लीजिए सुनिए उस्ताद अब्दुल लतीफ खान का सारंगी पर बजाया राग मियां की मल्हार। विलंबित रचना झूमरा ताल में निबद्ध है व द्रुत रचना 3 ताल।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं और अब प्रस्तुत है दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग।
1: प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो, और यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो गया है आपका और हमारा फेवरेट शो, वीकली शो संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस खास एपिसोड के साथ हाजिर है शाहिद, और आज के हमारे खास मेहमान हैं मेजर मानिक एम जोली, सेना मेडल से सम्मानित रिटायर्ड ऑफिसर हैं, इंडियन आर्मी के वेटरन हैं, गोरखा राइफल्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस इनका एक्सपीरियंस है, फील्ड कमांडर, कॉर्बेट इनोवेटर एंड मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट, फाउंडर हैं नेत्रम डिफेंस रिव्यू के, मेजर मानिक एम जोली। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर संदेश टू सोल्जर्स में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शायद, बहुत अच्छा लगा आपसे आज फाइनली बात करके।
0: जी सर, हमें भी बहुत बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं, और सर आपने अपना समय निकाला, कीमती समय आपने निकाला है और आप आए हैं हमारे स्टूडियो में। सर बहुत बहुत आपका एक बार फिर से स्वागत हम करना चाहेंगे, और जैसा कि हमने आपको आपके बारे में सर थोड़ा सा बताया है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, लेकिन जो बातचीत अभी इंटरव्यू से पहले आपसे चल रही थी तो उसमें मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ पता लगी, और लग रहा है कि ये शो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सर हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरीके से ये शुरुआत होती है एक आर्मी ऑफिसर बनने की तरफ, जो एक एक यंग कैडेट जाता है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस होता है और क्या महसूस करता है, वो क्या जोश, वो जज्बा, वो नेशन और एक देश के लिए एक जज्बा होता है जब जाते हैं?
1: तो शायद सबके अपने अपने रीजंस होते हैं आर्मी ज्वाइन करने के, लेकिन एक कॉन्स्टेंट फिक्स रीजन सबका ये होता है कि हर फौजी का अपने देश के प्रति सर्विस करने का, माँ भारती के लिए सेवा करने का एक पक्का जज्बा फिक्स रहता है। बाकी सब एक्सक्यूज़ हैं, पर आप कभी भी ये नहीं पाएंगे कि एक फौजी इससे हट के जवाब दे कि हाँ मैं देश की सेवा नहीं करना चाहता था, कोई और कारण था।
0: जी
1: तो ये हमारा

0: कांस्टेंट है। तो मैं भी बचपन में, मेरे नाना जी भी आर्मी में थे, तो
1: अच्छा,
0: मेरी माँ ने बचपन से ही मुझे यही कहा था तुमने फौज में ही जाना है।
1: यानी कि ऑलरेडी आपको जो है ग्राउंड बना हुआ मिल गया था,
0: हाँ जी,
1: बस
0: तो
1: आपने उस पर
0: या तो
1: अपना सफर शुरू किया।
0: यस, जैसे मैंने 6th, 7th, 8th क्लास के दौरान
1: जी
0: तैयारी शुरू करी एनडीए की, तो 12th खत्म होने से पहले मैंने एनडीए क्लियर कर लिया था। तो
1: ओके
0: स्कूल के एकदम बाद फिर मैं एनडीए चला गया। मैं रोहतक का रहने वाला हूँ,
1: जी
0: तो वहाँ से मेरी क्लास से हम पांच गए थे। तो वो शहर में भी थोड़ा, इट हैज़ दी वर्ल्ड रिकॉर्ड, रोहतक सिटी का रिकॉर्ड है मैक्सिमम ऑफिसर्स
1: अच्छा
0: प्रोड्यूस करने का हरियाणा में।
1: ओके
0: तो बस हमारे यहाँ काफ़ी ट्रेंड होता है आर्मी में जाने का, आर्मी नेवी एयरफोर्स मतलब।
1: जी सर, आपने मेजर मानिक एमजौली हमारे साथ जो सेना मेडल से सम्मानित हैं सर, इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको सेना मेडल से सम्मानित किया गया और दूसरे अवार्ड भी आपको प्रदान किए गए हैं। साथ ही आपको पीएम मोदी का मिशन इनोवेशन नेशनल चैंपियन का भी अवार्ड दिया गया।
0: हाँ जी,
1: उसके अलावा ऐसे बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं आपकी जिसमें आपके पूरे करियर में लगातार कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ आप हासिल करते रहे अपनी डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से। उसके अलावा हम और भी और चीज़ें हैं जो हमें आपके बारे में पता लगी हैं, क्योंकि आप कमीशन हुए थे कोर खरेजमेंट में
0: हाँ जी,
1: 1999 में, फिर उसके बाद आपने मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम किया और आपने 10 साल से, करीब 10 साल आपने वहां पर अपनी सर्विसेज प्रदान की और काउंटर इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर।
0: हाँ जी,
1: तो ये बहुत ही एक ना वैरायटी वाला और बहुत ही अलग अलग तरह के आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एक
0: हाँ
1: आर्मी
0: जी,
1: ऑफिसर, फिर उसके बाद आपने जम्मू कश्मीर में काफ़ी लंबा समय दिया है, सर्व किया है आपने,
0: हाँ जी,
1: और जिस टाइम पर आप कमीशन हुए उस टाइम पर कारगिल वॉर का मेरे ख्याल से टाइम था।
0: बिल्कुल। हम जब कमीशन हुए 99 जून में, कारगिल वॉर चल रहा था,
1: अच्छा,
0: तो जब हमारी कमीशनिंग परेड थी, हम सारे बहुत एक्साइटेड थे कि अब लड़ाई में जाने को
1: हम भी
0: मिलेगा।
1: जाएंगे। अच्छा
0: मुझे याद है कि स्टार न्यूज़ ने एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट को भेजा था हमें इंटरव्यू करने के लिए,
1: ओके
0: और जो जो लड़के इन्फेंट्री में गए थे, जो वहाँ पे लड़ाई के लिए जा रहे थे, यूनिट्स थी, तो उनका उन्होंने हमारा अलग से इंटरव्यू लिया था कि आप
1: अच्छा
0: लोग लड़ाई में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है। तो हम सारों का एक ही जवाब था, बहुत एक्साइटेड है, जल्दी भेजिए, राइट। लेकिन
1: जी
0: लेकिन लेकिन जब तक हम कमीशन हुए, एक्चुअली सीज फायर अनाउंस हो गया।
1: अच्छा
0: तो ये हम अपना, ठीक है, देश के लिए युद्ध ना होना एक तरह का अच्छी, लेकिन पर्सनली आपस में ये है कि हम अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि मैं उस लड़ाई में लड़ने का मौका नहीं मिला।
1: हाँ, मतलब एक
0: मैं,
1: फौजी है और
0: हाँ जी
1: वो चाहता है कि मैं किसी तरह से मैं लड़ाई का
0: बिल्कुल,
1: हिस्सा बनूं।
0: इससे बड़ा टेस्ट क्या
1: जी
0: है हमारे लिए कि लड़ाई में लड़ने का मौका मिले।
1: बिल्कुल।
0: तो वो यूँ लगा लीजिए 2-3 हफ्ते से हम मिस कर गए थे।
1: अच्छा, और सर ये भी है कि उस कारगिल वॉर में जो लोग, जो फौजी शामिल थे उस वॉर का हिस्सा थे, जिसमें से काफ़ी सारे जो फौजी थे उनको शहादत भी हुई, तो वो आपके इमीडिएट सीनियर भी थे, मतलब आपसे उनकी अच्छी खासी, जब आप ट्रेनिंग में थे तब उनसे
0: हाँ जी,
1: मिलते थे,
0: हाँ जी
1: बातचीत होती थी।
0: बिल्कुल, बहुतों बहुतों को हम बहुत अच्छे से जानते थे। हमारा वो हमारे से 1 या 2 कोर सीनियर्स थे, काफ़ियों को हम एनडीए में मिले थे, कुछ को आईएमए में जानते थे। जो फेमस कैप्टन विजयन थापर थे,
1: जी
0: वो मेरे साथ वाले कमरे में रहते थे। और मुझे याद है मैंने उनसे, जब वो पास आउट होके जा रहे थे, वो 6 महीने पहले पास आउट हुए थे, तो
1: अच्छा
0: मैंने उनसे, उन्होंने मेरी कैसेट ले रखी थी माइकल जैक्सन की, तो मैंने कहा
1: अच्छा
0: सर कैसेट तो वापस कर जाओ। कहते हैं अरे यार, जब नेक्स्ट मिलेंगे तब दे देंगे। मतलब
1: ओके
0: आज भी वो बात याद है। उसके बाद फिर तो
1: बिल्कुल
0: हमें यही पता लगा कि उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया।
1: जी
0: सुमित रॉय, विक्रम बत्रा, ये सारे
1: विक्रम
0: हमारे
1: बत्रा।
0: सीनियर्स थे।
1: अच्छा
0: और मतलब देश इनके बारे जितनी बात करे उतनी कम है। इतनी यंग एज पर, आप किसी भी वॉर में देखिए, इंडियन आर्मी के यंग ऑफिसर्स की जो रेशो ऑफ सेक्रीफाइस है, वो किसी भी देश से ऊपर मानी जाती है। क्योंकि जब हम लोग पहुंचते हैं,
1: जी
0: तो सारे टैक्टिक्स एक तरफ, हम कहते हैं हम ही चार्ज करेंगे, आप हम अपने जवानों को सभी यही बोलते हैं, मेरा पीछा मेरा। तो इसीलिए ये एक प्रिंसिपली हमारी आर्मी बहुत, ना केवल एथिकली बहुत
1: एथिकली और साथ ही
0: इज़ वेरी
1: साथ
0: वेल स्ट्रक्चर्ड एंड प्लेस्ड, लेकिन उसका ये भी कारण है कि जितने यंग ऑफिसर्स जाते हैं, उनमें से
1: जी
0: कोई ऐसा नहीं होता तुम आगे चलो, हम तुम्हारे, हम
1: हम
0: कहते हैं
1: आगे
0: हम
1: चलेंगे।
0: आगे चलेंगे, तुम हमारे पीछे
1: क्या
0: चलो।
1: बात है, ये जज्बा तो सर काबिले तारीफ है। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां और यादगार किस्से हैं जो हम मेजर मानिक के साथ डिस्कस करेंगे आज के संदेश टू सोल्जर्स में। और साथ ही एक चीज़ और आपको मैं बता दूंगा कि जिसमें हम आगे बात करेंगे कि मेजर मानिक ऑथर भी हैं और इन्होंने एक किताब भी लिखी है। तो हमारे साथ है मेजर मानिक एम जौली, इंडियन आर्मी से सेना मेडल से सम्मानित। आज के रहेगी बात जारी संदेश टू सोल्जर्स में।

0: मैन मेजर मानिक एम जॉली, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन, गोरखा राइफल्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस फील्ड कमांडर, कॉर्पोरेट मिलिट्री इंटेलिजेंस, कॉर्पोरेट इनोवेटर, मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट, नेत्रम डिफेंस रिव्यू के फाउंडर हैं और साथ ही सेलिब्रेटेड ऑथर हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं, लीडरशिप कोच हैं और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में कश्मीर में इन्होंने ट्रूप्स को भी कमांड किया है। हम एक बार फिर स्वागत करेंगे मेजर मानिक जॉली का। सर बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर संदेश टू सोल्जर्स में।
1: थैंक यू सर। थैंक यू
0: सर। मैं आपके बारे में जब बात करना शुरू करता हूं तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, लेकिन उसके बारे में हम साथ साथ बात करते रहेंगे। पहले सर मैं आपके वो जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं उनके बारे में जानना चाहूंगा। आपको पहला सेवा मेडल से सम्मानित किया गया जो गैलेंट्री अवार्ड कहा जाता है आर्मी का, तो वो किस तरह से और किस उपलक्ष्य में आपको दिया गया?
1: ये मेरी नौकरी का पहला दूसरा साल ही था। मैं यंग कैप्टन था और कुपवाड़ा में हम लोग तैनात थे। मेरी गोरखा रेजिमेंट यूनिट का हिस्सा था मैं
0: जी।
1: तो मेरी जो यूनिट है फर्स्ट बटालियन फोर्थ गोरखा राइफल्स, तकरीबन 200 साल पुरानी हो जाएगी थोड़े दिन में।
0: ओके।
1: वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट्स। तो बहादुरी और ड्यूटी हमारे रग रग में तैयार किया जाता है। तो उसमें हमारी यूनिट ने इतना अच्छा परफॉर्म करा था, हमने 1.5 साल में तकरीबन 100 टेररिस्ट मारे थे।
0: ओके।
1: तो यूनिट को भी साइटेशन मिला था। तो हमने बहुत ऑपरेशंस करे, उनमें से एक ऑपरेशन में मुझे अवार्ड मिला था जिसमें टेररिस्ट ने हम पर हमला किया था जंगल अच्छा। में, और उन्होंने हमारे भी एक सैनिक शहीद हो गया था। फिर उन टेररिस्ट को मार के अपने शहीद सैनिक की बॉडी वापस लाने के लिए मुझे अच्छा। सेना मेडल दिया गया था।
0: तो ये पूरा एक मिशन रहा होगा जिस तरीके से आपने बताया कि ये पूरा एक ऑपरेशन रहा होगा।
1: हाँ
0: तो सर वो तो बड़ा टफ और बड़ा ही खतरनाक रहा होगा, कुछ बताइए उसके बारे में।
1: देखिए जो ये ऑपरेशन है आज इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, मैं और यही बात आपके लिसनर्स को बताना चाहता हूँ
0: जी
1: कि हम सब अपने घर में बैठे हैं, FM सुन रहे हैं, बारिश का मौसम है, चाय पकौड़े खा रहे हैं
0: जी,
1: पर यही टफ और डेंजरस मिशन इस टाइम लाखों सैनिक कश्मीर के जंगलों में और नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में कर रहे हैं,
0: अभी भी कर रहे हैं अपनी
1: दिस वेरी मोमेंट एज वी आर स्पीकिंग, डेली करते हैं 365 दिन। तो एक सोल्जर की लाइफ, किस सेकंड आपको जंगल में कहाँ टेररिस्ट मिल जाए कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कभी कभी आप महीनों सालों भटकते रहते हैं, आपका एनकाउंटर नहीं होता, कभी आपके एक महीने में 4 एनकाउंटर हो जाते हैं। तो इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी जीरो बट पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई। सो व्हाट हैपेंस, आप जाते हैं, आपको एनकाउंटर हो गया, इसमें बड़ा चांस है आपने पहले उनको देख लिया, उन्होंने आपको पहले अच्छा। देख लिया, वो फायर करके भागना चाहेगा, वो रुक के लड़ना चाहेगा, बहुत इतने ज्यादा फैक्टर्स आते हैं, वो ऊपर है आप नीचे हैं, आप नीचे, तो इतने फैक्टर्स डिसाइड करते हैं उस इन दैट वेरी मोमेंट कि व्हाट विल बी द आउटकम, कि इस लड़ाई से कौन कैसे निकलेगा।
0: तो सर जब मिशन पर निकलते हैं सोल्जर्स हमारे निकलते होंगे तो वो ये पता होता होगा कि या तो मतलब जीत कर वापस आएंगे मार करके या फिर
1: या शहीद हो,
0: शहीद होकर।
1: यही है, ये फौज का प्रिंसिपल है हमारे यहाँ, देर इज नो रनर्स अप, यू नो, ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है इंडियन आर्मी में। हमें एक ही चीज सिखाई जाती है, विक्ट्री और सैक्रिफाइस। या सो आप अगर आपको कहा गया है, और कारगिल वॉर अगेन फिर से जो हम पहले भी बात कर रहे थे, जो यंग ऑफिसर्स इतने सैक्रिफाइस हुए, क्योंकि ट्रेनिंग डे पहले दिन, हम 16 साल के होते हैं जब NDA ज्वाइन करते हैं,
0: अच्छा,
1: उस दिन से लेकर जब तक 4 साल ट्रेनिंग है, कमीशन होते, एक ही चीज सिखाई जाती है कि अपने देश के लिए, अपनी फौज के लिए, अपनी यूनिट के लिए, आपके ट्रेंच में जो साथी है उस बड़ी के लिए लड़ाई लड़नी है,
0: उस बड़ी के लिए।
1: या तो आप उसके लिए लड़ते हो, वो आपके लड़ता है, ऐसी टीम बनती है।
0: क्या बात है सर, मतलब वो आपके लिए जान कुर्बान के लिए तैयार है और आप उसके लिए, एक दूसरे के लिए।
1: यही कॉन्फिडेंस है जो आर्मी लीडर्स को कॉर्पोरेट लीडर्स इतना फर्क बनाता है, क्योंकि एक एक सिम्बॉयटिक रिलेशनशिप है
0: जी।
1: उस जवान को पता है मेरा जो ऑफिसर है कभी ऐसा ऑर्डर नहीं देगा कि मेरी जान खतरे में आए।
0: क्या बात है सर, ये
1: अगर खतरा होगा तो खुद पहले जाएगा। और एक ऑफिसर को मालूम है कि जब तक मैं हूं ये मेरे जवान मेरे से आगे लड़ने को तैयार है। तो जब ये इस तरह की
0: ये जो जज्बा है,
1: हाँ जी, जज्बा रहता है, तो सब एक से बढ़कर
0: एक दूसरे के लिए, अपने साथी के लिए, बड़ी के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं।
1: और कॉन्फिडेंस रहता है कि
0: कॉन्फिडेंस रहता है,
1: अपने सुपीरियर के ऑर्डर में पूरा फेथ है कि ये कभी ऐसा नहीं करेगा कि मेरी जान खतरे में। हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम दुश्मन को मारने के लिए लड़ रहे हैं। वो कहते हैं गिविंग लाइफ फॉर योर कंट्री इज एन ऑनर, तो लेट दैट ऑनर बी ऑफ एनिमी।
0: क्या बात है
1: वो,
0: क्या बात।
1: हाँ, तो हमारा काम है जीतना, दुश्मन को मारना। तो एक बहुत ही अलग लेवल की ट्रेनिंग और कैपेबिलिटी।

0: डेवलप करी जाती है आर्मी में,
1: जी
0: इसी कारण वो ऐसे ऑपरेट करती है। अगर आप उस ढर्रे को कहीं और अप्लाई करना चाहेंगे जहाँ पे लाइफ एंड डेथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर वो ऑपरेट वो नहीं एक सक्सेसफुल
1: नहीं
0: होता।
1: हो सकता सर। वही चीज है कि जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग कितनी टफ होती है एक आर्मी ऑफिसर की, लेकिन उस टफ ट्रेनिंग के बावजूद भी वो जो जज्बा है शायद वो उससे भी ज्यादा भारी है उस पर, उस ट्रेनिंग पर वो जज्बा कि वो जो अपने नेशन, अपने वतन के लिए, देश के लिए, अपने बड़ी के लिए, अपनी यूनिट के लिए।
0: देखिए मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। वही भी हम एनडीए जाए 16-17 साल, इट्स जिसको बोलते हैं इम्प्रेशनेबल एज। 16-17 साल में आप दुनिया को समझना शुरू करते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: अब जो लोग कॉलेज जाते हैं उनके चारों तरफ, फॉर एग्जाम्पल आज का देखते हैं इंस्टाग्राम पे वायरल रील बनाना,
1: बिल्कुल सर, सोशल
0: स्टूडियो
1: मीडिया
0: मूवी
1: पूरा
0: हीरो।
1: पूरा एकदम
0: यू नो हमारे आसपास क्या होता था, हम जहाँ ट्रेनिंग करते थे वहाँ लिखा था एक गोली एक दुश्मन, जो हमारे कमरों किल डेथ बिफोर इट किल्स यू, आई विल डाई फॉर माई कंट्री। चारों तरफ आप
1: वो
0: ऐसे,
1: मोटिवेटेड
0: हाँ
1: मतलब स्लोगन्स आपको मिल रहे
0: या
1: हैं।
0: आप ऐसे एनवायरनमेंट में होते हो कि दिन रात आप एक ही चीज सोचते हो कि मैं इस देश के लिए बनाऊं, और अगर कभी जरूरत पड़ेगी
1: तो मैं अपनी जान कुर्बान करूंगा
0: बिल्कुल विदाउट अ डाउट,
1: विदाउट अ डाउट।
0: ये
1: क्या
0: तो
1: बात है
0: इसमें कोई हेजिटेट नहीं करेगा कभी।
1: सर, बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आपसे आगे भी करूंगा। अभी एनडीए के बारे में आपसे पूछूंगा कि आपने उस ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या, जाहिर है वो वक्त बड़ा ही मेरे ख्याल यादगार होता है बडीज के साथ, और इंटरेस्टिंग भी, और कुछ शरारतें भी जरूर होती हैं उस जमाने में,
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो एज ऐसी
1: तो
0: होती है और टाइम ऐसा
1: और
0: होता
1: टाइम
0: है।
1: ऐसा होता है।
0: हाँ
1: तो हम अपने लिसनर्स को यहाँ बताना चाहेंगे कि आप हमें मैसेज करें, मैसेज बहुत सारे आ चुके हैं सर, मैं आपको बता दूं, और एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप हमें मैसेज करके हमारे आज के गेस्ट मेजर मानिक एम जॉली से सवाल कर सकते हैं। नंबर है 9868107070। सर मैं सोचता हूँ कि आगे बढ़ूँ तो कुछ मैसेजेस तो मैं अभी ले लूँगा। ये असम से सर मैसेज आया है, गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, ये हितेंद्र दास हैं सर, आपको भी और हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए हितेंद्र। और उसके बाद मैसेज आया है स्वतंत्रता दिवस का, सब सोल्जर भाइयों का हमारा सल्यूट, हमारे भारत माँ की रक्षा सभी क्षेत्र में उनके बलिदान क्या श्रेष्ठ जीवन का संदेश है। कर्नाटका राज्य विजयपुर डिस्ट्रिक्ट आराकेरी गांव से, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, आरकेडी पंडित चन्नप्पा सरवाड़कर सर, ये मैसेज है।
0: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद आपको भी।
1: और सर ये मैसेज है, हाय आई एम अजय अहिरवार फ्रॉम मध्य प्रदेश, क्लास 12 सर ये स्टूडेंट है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, वॉट थिंग्स शुड आई रिमेंबर ड्यूरिंग प्रिपेरेशन एंड फॉर SSB इंटरव्यू, मेनली SSB गाइडेड फॉर सिविलियन। और अजय अहिरवार सर मध्य प्रदेश है सर, इनको कुछ आप गाइड करना चाहेंगे।
0: तो शायद वैसे तो ट्रेनिंग के लिए मतलब बहुत लंबा होता है ऐसे, पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो
1: जी
0: अक्सर लोग गलती करते हैं, वो ट्रेनिंग की प्रिपरेशन करके इंटरव्यू की तैयारी करके कुछ और बन के दिखाना चाहते
1: अच्छा
0: हैं, और वो पक्का रेसिपी टू फेलियर है।
1: अच्छा
0: आप इंटरव्यू में जैसे हैं 100% वैसे रहिए, और वो तो फिर इंटरव्यू पर है वो आपको शेयर, दैट इज
1: ठीक
0: उसको कोई
1: ठीक
0: गारंटी नहीं कर सकता, पर अगर आप कुछ और बनने की कोशिश करेंगे तो
1: जी
0: डेफिनेटली थ्रू नहीं होंगे। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को कायम रखें
1: जी
0: इंटरव्यू की
1: जो आप
0: तैयारी में,
1: हैं,
0: जो आप हैं।
1: क्या बात
0: अगर
1: है।
0: आपको पिक्चर पसंद है आप बोलिए मुझे पिक्चर देखना पसंद है, ये मत
1: अच्छा
0: बोलिए
1: अच्छा
0: मुझे
1: अच्छा
0: बुक्स पढ़ना पसंद है, क्योंकि टेबल के उधर जो बैठे उसने बहुत
1: जी
0: बुक्स पढ़ी है, पकड़ लेगा
1: तो
0: आपको ये।
1: आपको जो आप हैं वही दिखाएं
0: बिल्कुल
1: वहां पर।
0: बिल्कुल,
1: सर एक और मैसेज है, जय हिंद सर जी, जय हिंद मेजर साहब, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से मैसेज कर रहे हैं सर ये। और सर ये हैं
0: आपको
1: संदेश
0: भी जय हिंद।
1: जी, शो बहुत खूबसूरत शुरू है जी, दिल को छू लेने वाली बहुत खूबसूरत जानकारियां मिल रही हैं। शाहिद जी नमस्ते, मानिक सर नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, यश शिंदे हैं सर ये मुंबई से, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए, जय हिंद। और सर ये एक और मैसेज आ गया है, जय हिंद मेजर साहब, कारगिल वॉर तो हमने नहीं देखा है, मूवी में देखा, लेकिन आपके जरिए हम सुनते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। एडवांस 80th हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस, वंदे मातरम। रोहित मेहर हैं सर ये, बुदापाली विजयपुर बारगढ़ ओडिशा से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, सबको जय हिंद।
1: और सर सभी लोग इस वक्त जो है देशभक्ति के जो ना उसमें सराबोर हैं, जुनून में, जोश में, क्योंकि 15 अगस्त बस अब परसों नजदीक ही है, और ये स्वतंत्रता दिवस जो हमें याद दिलाता है कि जो कुर्बानियां दी गई इस देश की आजादी के लिए, उन सबको हम याद करते हैं। तो यहां पर हम आगे बढ़ेंगे सर, हम बात करेंगे अब एनडीए की। आपने एनडीए में जब आप आए तो क्या माहौल था वहां पर, नया नया एक्सपीरियंस कैसा लगा, एक 16 साल के जब मानिक वहां पर आ रहे थे तो।
0: हाँ जी बिल्कुल, बहुत देखिए, एक तो आप घर से पहली बार बाहर गए होते हैं, और घर से पहली बार बाहर जाके आप किसी रिजॉर्ट में रह रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन आप बिल्कुल
1: अच्छा
0: एक वन ऑफ द टफेस्ट मिलिट्री एकेडमी में चले गए
1: जी
0: जहाँ पे डिसिप्लिन इज द हाईएस्ट।
1: बिल्कुल
0: आपका आपसे 6 महीने सीनियर वो आपके लिए भगवान की तरह है, वो

0: वो लेग आपको करना पड़ेगा
1: बिल्कुल
0: फिजिकली, इट्स वेरी स्ट्रेनिंग। वैसे तो मैं स्पोर्ट्स में था लेकिन
1: अच्छा
0: एनडीए का अलग लेवल होता है, तो शुरू में आपको रूटीन इज़ वेरी टाइट, फिजिकली इतना डिमांडिंग है,
1: जी
0: तो एक बार तो हर कोई हिल जाता है
1: बिल्कुल, क्योंकि आपने जैसे कहा स्पोर्ट्स में तो आप थे, लेकिन वो
0: या
1: स्पोर्ट्स अलग है जो हम स्कूल में करते हैं, या
0: है
1: आपने
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जो आप एकेडमी में कर रहे हैं।
0: बट हमारे स्कूल में बाई चांस स्पोर्ट्स की अच्छी लेगेसी थी, तो मेरे को फिजिकली तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई परफॉर्म करने
1: जी
0: में, बट ये है कि शुरू में जाके, क्योंकि हम अपने घर पे रहे थे, कई बच्चे सैनिक स्कूल से आते हैं उनको थोड़ी
1: जी
0: आदत होती है,
1: ओके
0: हम पहली बार घर से आए थे, मुझे याद है कि पहले एक दो हफ्ते में घर की बहुत याद आती है, क्योंकि
1: जी
0: चारों तरफ हर कोई आपको खाने को दौड़ता है एनडीए में, और घर पे तो जो भी है आपको
1: बिल्कुल
0: सारी
1: जाहिर है प्यार
0: सहूलियत है,
1: से,
0: प्यार है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो मैं एक बार काफ़ी दुखी बैठा था अपने रूम में, तो मेरे एक सीनियर आए, वो सीनियर मोस्ट थे, सिक्स टर्म में थे वो, तो क्या हुआ, मैं कहा सर घर की बहुत याद आ रही है, तो कहते चिट्ठी लिखो,
1: अच्छा
0: तो मैं आपको बस बता रहा हूँ बस सोच कैसे होती है, मैं कहा सर चिट्ठी तो लिख चुका, कहते इधर आओ, मुझे अपने रूम में लेके गए,
1: जी
0: अपना परफ्यूम निकाला अच्छा सा, मेरे पे स्प्रे करा, कहते बस अब खुश हो जाओ, यही खुशी है, वही तो मैं ऑर्डर है खुश होने का, मैं ठीक है सर। तो और उसके आई थिंक बट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वी हैड वाज, हमारे टाइम वहाँ पे मेजर साहब पिक्चर की शूटिंग हुई थी,
1: अच्छा मेजर साहब अमिताभ बच्चन
0: हाँ जी,
1: और अजय देवगन। जी
0: तो उस थोड़े महीनों के लिए एकेडमी का में इतने फनी इंसिडेंट्स हुए थे, आई
1: अच्छा, तो कई महीने वो शूट चला था।
0: थिंक एक दो तीन महीने तो चला था मेरे ख्याल से, तो
1: अच्छा
0: उसमें क्या हुआ कि एक डेढ़ महीना तो चला था फॉर श्योर,
1: जी
0: अकेडमी ने मना कर दिया कि हम अपने कैडेट शूटिंग के लिए नहीं देंगे,
1: ओके
0: तो जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स थे वो बॉम्बे से यंगस्टर्स को लेके आए, उनको तो 150 चाहिए थे, उन्होंने हमारे जैसी यूनिफॉर्म पहनाई
1: ठीक है
0: और उनसे परेड वरेड कराते थे और उनके शूटिंग वूटिंग के लिए यूज़ करते थे,
1: ठीक है
0: लेकिन अब अकेडमी में ऐसा हो गया जब भी आपको कोई सीनियर पकड़े इधर आओ, जूनियर यूँ करते, हम तो मुंबई से आया है तो शूटिंग वाला है, तो काफ़ी क्योस मचा हुआ था उन दिनों,
1: अच्छा
0: थोड़ी देर में सब सॉर्ट आउट हो गया, और फिर एक दो सीन थे जैसे क्रॉस कंट्री का सीन है जिसमें एक पहाड़ी के ऊपर वो दिखाते हैं अजय देवगन फर्स्ट आया,
1: अच्छा
0: तो उसमें उन्होंने हमारे कैडेट्स वगैरह को बुलाया था कि पीछे आप लोग भागना, लास्ट में ये आगे आके फर्स्ट आ जाएंगे,
1: ओके हीरो मतलब हीरो बन
0: हाँ
1: जाएंगे। ठीक है
0: हमारे कैडेट थोड़ा दिल पे ले गए कि हमारे रहते कैसे फर्स्ट आ
1: अच्छा
0: जाएगा, वो आई थिंक 10-15 बार शूट करना पड़ा, हर बार हम आगे आ जाते थे कोई ना कोई, तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत, इट वॉज वेरी फनी, तो
1: अच्छा
0: हम लोग आई मीन काफ़ी क्लोजली शूट, मैं भी एक दो किसी शूट में हूँ भीड़ में कहीं पे दिख रहा हूँ इधर उधर,
1: अच्छा हम सर मैं मूवी देखूंगा आपको देखने के
0: हाँ जी
1: लिए
0: प्लीज, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी, और उसका
1: जी
0: वो गाने भी, एक्चुअली इस मूवी के गाने भी बहुत अच्छे थे सभी,
1: हाँ गाने सर बड़े सुंदर गाने थे, और सिंदूर सुंदर हीरोइन भी थी इसके अंदर,
0: या
1: सोनाली बेंद्रे।
0: बिल्कुल
1: तो सर
0: बिल्कुल,
1: वहां पर गाने भी शूट हुए होंगे उसी एकेडमी में।
0: गाने शूटिंग हमने कभी देखे नहीं, आई
1: अच्छा
0: थिंक हमारे कुछ सीन्स वगैरह मेस के, पीटी ग्राउंड, क्रॉस कंट्री,
1: ये हुए
0: मिलिट्री
1: अच्छा
0: हॉस्टल, ये सब होते थे, लेकिन और सोनाली बेंद्रे तो पूरी एकेडमी की फेवरेट थी, मतलब आप आई डोंट नो लेट 90s में
1: जी जी
0: एंड
1: जी
0: स्टिल टुडे शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस,
1: यस
0: राइट,
1: ऑफ कोर्स
0: और वो एक्टिंग एज अ पर्सन शी इज सो नाइस, जिनसे मिली भी सब इतनी तारीफ करते थे कि इतने अच्छे से बात करती हैं, तो पूरी एकेडमी बस सारी
1: दीवानी थी
0: दीवानी थी, कहीं जहां बहुत ही देखने भाग जाते थे।
1: तो मैंने तो सर आपसे बात करते करते ना वो एक सॉन्ग भी निकाल लिया है, तो उसके बारे में बताइए सर कुछ, कोई किस्सा किसी शूट के दौरान आपके सामने आया हो, आपकी टीम के सामने आया हो।
0: हमें बस एक बार एक मिलिट्री हॉस्पिटल का वहां पे सीन है
1: अच्छा
0: मूवी में, तो जैसे ही होता था तो सारी एकेडमी में बात हो जाती, सोनाली बेंद्रे मिलिट्री हॉस्पिटल में आई है,
1: अच्छा
0: तो 1 घंटे में कई मेरी टांग दर्द हो रही है, मेरी हाथ दर्द हो रहा है, वहाँ पे पहुंच गए बहुत सारे रिपोर्ट करने, सबको वापस भगा दिया था, तो
1: अच्छा
0: सब चलता रहता था वहाँ पे,
1: जी,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: अजय देवगन की कभी कोई शूट आपके आसपास आपके सामने कभी हुआ, क्योंकि एकेडमी में ही शूट चल रहा था।
0: हाँ जी, वो ड्रिल ड्रिल में पीटी में कई बार आते थे, बट आई मीन मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट जो लेवल ऑफ फिटनेस, जो लेवल एनडीए कैडेट्स का होता है
1: बिल्कुल
0: वो फिल्मी हीरोज का नहीं होता, तो अक्सर मतलब थोड़ा सबड्यू करके थोड़ा खर्च के उनसे करवाया जाता था ताकि
1: अच्छा,
0: फिल्मी इफेक्ट पूरा दिख जाए,
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: रीटेक्स के साथ
0: हाँ
1: वो
0: जी,
1: सब ठीक से हो
0: पर मैं
1: जाए।
0: आपको ये बता रहा हूँ हमें बहुत अच्छा महसूस होता था, मतलब एक तरह का कॉन्फिडेंस होता था
1: कॉन्फिडेंस
0: कि बॉलीवुड वो बनने की कोशिश कर रहा है जो हम हैं,
1: जो आप हैं,
0: जो एक कॉन्फिडेंस आता
1: बिल्कुल
0: है कि ये मतलब वो एक्टर्स है, ऑब्वियसली वो फौजी नहीं है, वो अंडर
1: बिल्कुल
0: ट्रेनिंग नहीं है, पर हमें बहुत कॉन्फिडेंस आता था देख के कि हमने जो अचीव किया है, जो हमारी पर्सनालिटीज़ हैं, जो हमारा फिटनेस है,
1: फिटनेस है
0: वो लोग एज एन एक्टर बनने की कोशिश करते

0: हैं टू मेक अ गुड मूवी. सो वो कॉन्फिडेंस आपके साथ सारी लाइफ रहता है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो मेजर साहब, मैंने यहाँ पर ये उस फिल्म का जो आपके साथ यादों में जुड़ी हुई है,
0: बिल्कुल
1: मेजर साहब, उसका ये खूबसूरत ट्रैक निकाल लिया है और आपकी पसंद का भी है. मेजर मानिक एमजोली हमारे साथ हैं, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन. आप बने रहे हमारे साथ संदेश सोल्जर्स में और मैसेज करते रहें.

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स, शाहिद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान मेजर मानिक एम जोली। इंडियन आर्मी वेटरन हैं, सेना मेडल से सम्मानित हैं और गोरखा राइफल और मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहे हैं। फील्ड कमांडर, कॉर्पोरेट इनोवेटर और मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट हैं।

0: खास मेहमान मेजर मानिक एम जोली इंडियन आर्मी वेटरन हैं, सेना मेडल से सम्मानित हैं और गोरखा राइफल और मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहे हैं। फील्ड कमांडर, कॉर्पोरेट इनोवेटर और मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट हैं। फाउंडर हैं नेत्रम डिफेंस रिव्यू के और सेलिब्रेटेड ऑथर भी हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं, लीडरशिप कोच हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बार बार अगर बताना भी चाहूँ तो भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो मेजर साहब, हम बात कर रहे थे सर आपके एनडीए के दौर की, वो बड़े इंटरेस्टिंग किस्से आपने जो सुनाया और हमने गाना भी वो सुना, सोनाली बेंद्रे पर और अजय देवगन पर जो पिक्चराइज किया गया, आपने उनको देखा कि वो शूट के दौरान क्या क्या वहाँ पर इंसिडेंट्स हुआ करते थे। तो मैं आगे बढ़ूँ, मैं सोच रहा हूँ कि पहले क्यों ना मैसेजेस ले लेता हूँ, क्योंकि हमारे लिसनर इंपॉर्टेंट हैं, वो इंतजार कर रहे होंगे हम उनके मैसेज पढ़ के सुनाएं। सर मनीष इदरीसी का मैसेज है रामपुर बिलासपुर से। नमस्कार सर जी, नमस्कार मेजर साहब।
1: नमस्कार, जय हिंद।
0: ये मैसेज है, जय हिंद टू सर, आई एम अजय अहिवार फ्रॉम मध्य प्रदेश। फिर से आया इनका मैसेज और क्लास 12 प्रिपेयर्ड कर रहे हैं ये। फिर से मैसेज आया और हमने आपको बता दिया है, सर ने बताया कि किस तरीके से आप कर सकते हैं और कैसे प्रिपरेशन करनी है। अब ये मैसेज आया सर, संदेश टू सोल्जर्स, मेजर साहब जय हिंद। शो रोचक, ज्ञानवर्धक, लाभप्रद और सकारात्मक संदेश देने वाला है। मेजर साहब, इस शो से लोग इंस्पायर्ड होंगे, देशभक्ति का जज्बा कायम रहेगा, ये कह रहे हैं।
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और ये कहते हैं कि मेरा मानना है कि हर दिल में देश प्रेम की आग सुलगती रहनी चाहिए। और ये एक आगे कुछ पंक्तियां लिखते हैं सर, अर्ज है, चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें।
1: बहुत बढ़िया।
0: तो ये हैं सर एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, जिन्होंने ये मैसेज किया है। और इसके अलावा मैसेज है, विलेज बरकतपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, स्टेट यूपी, नेम चरुण कुमार, आप सभी आर्मी ऑफिसर्स को मेरा जय हिंद सर।
1: आपको भी जय हिंद।
0: और ये है सर, नमस्कार जी, होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, प्रोग्राम हमें अच्छा लग रहा है जी, खुशनसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं, करता हूं उन्हें सलाम ए वतन, सलाम ए वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।
1: भारत माता की जय, जय हिंद। बहुत अच्छा मैसेज था
0: जी सर, मैसेज और भी हैं, मैं सोचूं कि पढ़ के सुनाई दूं फिर आगे हम बातचीत करेंगे। बहुत सारे मैसेज सर, ये बहुत लंबा एक मैसेज है, गुड आफ्टरनून टू यू बोथ सर, संदेश टू सोल्जर्स इज अ नाइस प्रोग्राम, सैल्यूट टू इंडियन आर्मी नेवी एयर फोर्स सोल्जर्स एंड आल्सो योर पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स, थैंक यू शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक एक्सपीरियंस स्पेशली रिगार्डिंग कारगिल वॉर। Regarding your achievement and medals, which are deserving, on the 15th of our country India celebrating 80th Independence Day, on this occasion, I wish all Indians happy 80th Independence Day. Bharat Mata ki jai, apna Bharat mahan hai. Vande Mataram, Jai Hind. From M.R. Madhusudan, ye M.B. Rajeshwar, son of M.B. Rajeshwar, Dattar Colony near Shivalayam Temple, Sita Phalmandi, Sikandrabad, Telangana se sir ye message aaya hai.
1: थैंक यू,
0: काफी खूबसूरत और बड़ा लंबा मैसेज था ये। और ये है, जहिंद सर, आपको और हमारे देश को समस्त जवान स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, आप हैं तो हम सुरक्षित हैं, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं शबनम, बी के दत्त कॉलोनी, नई दिल्ली से।
1: धन्यवाद, आपको भी जय हिंद। और मैं बोलना चाहूंगा
0: जी जी जी
1: कि ये सारे अच्छे मैसेजेस सुन के, चाहे मैं अभी रिटायर्ड हूँ या सर्विंग हो,
0: जी
1: किसी भी फौजी को बहुत अच्छा लगता है, जिसको बोलते हैं ना कि आपको पता है भाई हमारे देश में इतना प्रेम और रिस्पेक्ट है फौजियों के लिए।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल,
1: आप अपनी ड्यूटी करते हैं, घबराते नहीं है, आपको पता है पीछे मेरा देश है,
0: पीछे मेरा देश है, देशवासी हैं सर, और देशवासी सर आपको सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और सर हम आपके ऋणी हैं, क्योंकि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो हमारे देश के भीतर भी, देश की सीमाओं पर भी, देशवासियों की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनका जो डेडिकेशन है देश और देशवासियों के लिए, तो वो सैल्यूट है सर हमारे सोल्जर्स को, इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम है संदेश टू सोल्जर्स। सर मैसेजेस में लगातार अभी मैं सोचता हूँ रोक दूं, अभी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मैं आपसे सर आगे बातचीत बढ़ाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सर आपसे हम जानने के, फिर आप जब गोरखा रेजिमेंट में आप हुए कमीशन 1999 में, तो वो फिर जो सफर शुरू हुआ, अब आप बताएं कि फिर जिस तरह से आपका फिर आगे आप जाते हैं।
1: मैं तो फिर कमीशन कुपवाड़ा में था, कश्मीर में फॉरवर्ड एरिया है, वहाँ पे हमारा रोल या तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कारगिल के एकदम बाद था।
0: अच्छा,
1: तो सीज फायर तो नहीं था, तो दिन रात गोलाबारी होती रहती थी।
0: अच्छा,
1: तो हम भी उन पर करते हैं, वो भी हम पर करते रहते हैं। उस टाइम ये क्रॉस बॉर्डर रेड बहुत होती, उन्होंने काफी सोल्जर्स हमारे उसमें भी शहीद हुए, लेकिन जो था मतलब वो एक सोल्जर के लिए एज अ सोल्जर
0: जी
1: एक एक्सपीरियंस था कि आप किसके लिए सोल्जर बने। अगर आप

0: लड़ाई नहीं देखी, अगर आपने गोलाबारी नहीं देखी अगर आपने वो, तो इस हिसाब से फिर हम काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में चले गए,
1: जी
0: जहाँ पे हमने, मेरी यूनिट ने बहुत अच्छा करा, क्योंकि वो बहुत एक्टिव एरिया था,
1: अच्छा, मतलब
0: हम
1: सेंसिटिव एरिया था और
0: सेंसिटिव
1: हमेशा
0: एरिया।
1: कुछ ना कुछ हैपनिंग।
0: तो कुपवाड़ा बॉर्डर जो है, वहाँ से बहुत सारे लॉन्च पैड हैं जहाँ से पाकिस्तान टेररिस्ट अंदर भेजता रहता है,
1: ओके,
0: तो इस कारण वो बहुत एक्टिव एरिया माना जाता है वहाँ पे
1: और वहां
0: जो।
1: पर आपकी पोस्टिंग थी।
0: हाँ जी, तो आम आदमी एक्चुअली अक्सर जब भी आप बात करते हो जंगल में टेररिस्ट ढूंढ रहे थे, पहाड़ में ढूंढ रहे थे,
1: जी
0: उसका स्केल समझ नहीं पाता कि किस
1: जाहिर है,
0: स्केल पे हम बात कर रहे हैं, कि वो जंगल कितना बड़ा था।
1: अगर मैं इमेजिन भी करूं तब भी मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच
0: या
1: सकता।
0: यूं लगा लीजिए, एक पूरा शहर जंगल है,
1: अच्छा
0: जिस शहर में आप लोग, आपके लिसनर रह रहे हैं,
1: जी,
0: वो पूरा शहर जंगल है, और आप 100 लोग हैं, आप
1: अच्छा
0: कितना ढूंढेंगे? और उसमें पहाड़ियां भी हैं, क्लिफ भी हैं, बर्फ भी पड़ी हुई है 20-20 फुट,
1: 20-20 फुट,
0: 20 फुट तो एवरेज आफ्टर स्नोफॉल होती है, राइट?
1: अच्छा
0: और आप 9,000 फीट से आपका बेस शुरू होता है, 15-17 हज़ार फीट तक जा रहा है, आपको सारा पेट्रोल करना है। तो अक्सर आपने देखा होगा फौजी से आप सब लोग पूछते हैं कैसा था ये था, वो कहते हैं हाँ ठीक था, अच्छा था।
1: तो यानी कि वो जो
0: ओनली
1: ठीक था
0: रीजन
1: कह रहे
0: इज
1: हैं वो,
0: ओनली रीजन इज समझा पाना पॉसिबल नहीं है कि वो किस तरह का एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है।
1: सर मैं ये आपसे जरूर जानना चाहूंगा, वो आप बताइए प्लीज।
0: जी तो सी जो माउंटेन्स हैं वहां पे, क्लिफ्स हैं
1: जी
0: और बर्फ पड़ी हुई है, एक पीछे की तरफ पूरा जंगल है, चलने की जगह नहीं है, स्नो स्टॉर्म आ जाता है, ब्लिजर्ड आ जाएगा,
1: अच्छा
0: उसके बाद ऊपर से टेररिस्ट है
1: जाहिर है
0: जो
1: जो
0: वेट कर
1: सबसे
0: रहा है,
1: बड़ा
0: जो, हाँ, जो वेट कर रहा है कि आप
1: वो
0: उसको
1: वेट कर
0: पहले
1: रहा है।
0: दिख जाए।
1: जी
0: खाना आपको हफ्ते में एक बार हेलीकॉप्टर से आता है,
1: एक बार,
0: हाँ, जो भी फ्रेश राशन वो आपको हफ्ते में एक बार मिल जाएगा, राइट? आपको अगर गरम गर्म गर्म रहना है, ये 20-25 साल पुरानी बात है, तो उसमें केरोसिन का स्टोव यूज़ करना पड़ रहा
1: ओके
0: है, मॉडर्न इक्विपमेंट उस टाइम नहीं थे।
1: जी
0: डेली आप, क्योंकि अनदर थिंग इज़, ये कारगिल के एकदम बाद की बात है,
1: हाँ
0: तो इंडियन आर्मी ने, भारत सरकार ने डिसाइड करा कि कारगिल इसलिए हुआ था कि कुछ पहाड़ी हमने विंटर वैकेट करी थी तो पाकिस्तानी आकर बैठ गए थे,
1: ओके
0: तो अब हम कुछ भी विंटर वैकेट नहीं
1: नहीं
0: करेंगे,
1: करेंगे, हम वहां पर भी अपनी ड्यूटी रखेंगे।
0: तो नेचुरली प्रेशर इज ऑन आर्मी। अब वो पहाड़ियां जहां पर हम आज तक गए भी नहीं थे, उनके
1: ओके
0: ऊपर छोटे छोटे टुप्पे, फिल, रॉक, वहां पे जाके नई पोस्ट एस्टेब्लिश करना, रिसोर्सेज नहीं, क्योंकि आप अगर फौजी को ये भी बोल देंगे ना, चप्पल में जाओ फौज, बर्फ में जाके पोस्ट
1: जी
0: बना लो, वो चला जाएगा।
1: अच्छा,
0: हमें आदत में नहीं होता है बोलना कि ये कंप्लेंट करे कि ये नहीं है वो नहीं
1: एक्सक्यूज
0: है,
1: कुछ नहीं।
0: या तो उस हिसाब से काफी डिफिकल्टी में सर्विस थी। और उस सारे में आपको अंदर आते हुए टेररिस्ट को भी रोकना है, जो अंदर आ गए उनको भी ढूंढना है,
1: अच्छा
0: आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो वहां पे जो गांव है, लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप, वो आपके देशवासी हैं,
1: बेशक
0: आप नहीं
1: उनकी भी
0: चाहते,
1: हिफाजत।
0: हाँ, आपके लिए नहीं चाहते वो सोचे फौज हमारे को परेशान कर रही है। तो इट इज अ वेरी हाई स्ट्रेस, वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। और एक ही चीज आपको कॉन्फिडेंस देती है, मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, ये इस तरह के मैसेजेस, कि आपको बस
1: जहां से
0: ये,
1: हमारी बात शुरू हुई
0: हाँ,
1: थी,
0: कि मैं आपको यही बस, कि जो मैं कर रहा हूँ देश में उसकी वैल्यू है, ये लोग उसको मानते हैं मैं क्या कर रहा हूँ,
1: जी उनको
0: और
1: कदर
0: उस,
1: है इस बात की और उनको परवाह है कि भाई हमारा जो फौजी, हमारा
0: मतलब
1: भाई
0: मानी सी
1: है।
0: बात है, सारे सरकारी डिपार्टमेंट दुनिया के एक तरफ, सारे लीडर ब्यूरोक्रेसी और
1: बिल्कुल,
0: फौजी एक तरफ,
1: फौजी एक तरफ
0: जो प्यार हम फौज को मिलता है वो नहीं, और इसी कारण से
1: जी
0: आप कॉन्फिडेंटली देश सेवा में लगे रहते हैं।
1: बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये तो मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ। हम हर हफ्ते यहाँ पर संदेश टू सोल्जर्स में अपने जो हमारे आर्मी वेटरन्स हैं और जो सर्विस में भी हैं फौजी आते हैं, तो उनसे मिलकर के वो जो देशभक्ति का जज्बा है ना सर, जो है ऑलरेडी, वो कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वो बातें, वो उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइव एक्सपीरियंसेस, जो हम कभी ना महसूस कर सकते, हम कितना भी इमेजिन करने की कोशिश करें, जैसे कि आपने बताया अभी, वो हम कर ही नहीं सकते। और एक फौजी उसको एक्सप्लेन कर पाने में मतलब असमर्थ ही महसूस करेगा कि मैं कैसे बताऊं। तो ये एक अननोन सी एक जो डेडिकेशन हम महसूस करते हैं कि वो हमारे फौजियों की है, तो वो सिर्फ एक दिल से जज्बा ही हम जाहिर कर सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सर इसी दौरान जैसे अब आप जब दूर होते हैं, घर से भी दूर होते हैं, और फिर ऐसी सिचुएशन में, ऐसी लोकेशंस पर, ऐसे हालात में होते हैं जहां पर जैसे आप, तो कितने टफ, तो फिर घर की भी याद आती होगी।
0: बहुत बिल्कुल। और ये दिस इज, वहां पे मोबाइल भी नहीं था,
1: और उस जमाने में
0: तो
1: तो
0: महीनों महीनों में बात होती थी, मैं 10-15 दिन बाद चिट्ठी आती थी,
1: 10-15 दिन में
0: क्योंकि
1: एक बार।
0: पहाड़ में वो एक खच्चर के ऊपर वो पोर्टर लेके आता था,
1: अच्छा
0: चिट्ठी दूर से दिख जाता था, 2 किलोमीटर दूर
1: मेरी
0: से आ रहा है, और सारे एक्साइटेडली बैठे रहे कि मेरी भी चिट्ठी आई
1: भी
0: है,
1: चिट्ठी
0: मेरी।
1: आएगी
0: तो जो आप फिल्मों में छोटा सा दिखाते हैं ना चिट्ठी का क्रेज, वो
1: जी।
0: मजाक नहीं है एक्चुअली,
1: अच्छा
0: आपको महीने में एक बार चिट्ठी आनी है आपकी, और आप

0: लगता है यार कहीं से परिवार से आपके दोस्तों से
1: दोस्तों
0: कुछ
1: से
0: खबर आए तो लेटर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी वहाँ
1: क्या
0: पे।
1: बात है, मतलब
0: हाँ,
1: लेटर्स की हम आज
0: और
1: ये
0: 15 दिन से आप लिख रहे हो,
1: जी
0: आपको उसी डाक से वापस
1: वापस
0: भेज
1: भी
0: दें।
1: भेजना है।
0: या
1: ओके अच्छा
0: तो लेटर्स की बहुत वैल्यू। तो उस टाइम एक रेडियो कैसेट ये सब होता था,
1: अच्छा
0: तो आपके पास कुछ कैसेट बाई चांस जो आपके साथ ऊपर चली
1: ऊपर
0: गई
1: चली गई।
0: वो नेचुरली या तो आपकी फेवरेट बन जाती थी क्योंकि
1: हाँ
0: और कोई
1: सुनते
0: था
1: सुनते,
0: नहीं,
1: क्योंकि और कुछ है ही
0: या
1: नहीं।
0: रेडियो सुनते थे कभी अपना कभी पाकिस्तान का,
1: अच्छा
0: दोनों कैच करते, तो बस कुछ गाने आपके फेवरेट बन जाते हैं, आप वो सुनते रहते
1: तो
0: हैं।
1: उसमें से कुछ बताइए सर।
0: तो एक उस टाइम मेरा फेवरेट बहुत अभी भी आज भी है, एक रुस्तम सर आपका पुराना गाना, फिर तुम्हारी याद आई ए
1: अच्छा
0: सनम। और उस गाने की एक्सटेंडेड वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो सोल्जर्स गाना गा रहे हैं,
1: ओके
0: ये सेनापति जो है किले पे खड़ा है और नीचे
1: अच्छा
0: उसके जवान गाना गा रहे हैं और अपने
1: परिवार को क्या
0: परिवार को याद करते हुए, गर्लफ्रेंड को, बीवी को याद करते हुए गा रहे
1: बात
0: हैं।
1: है।
0: तो द होल सेटिंग ऑफ द सॉन्ग इस तरह से है कि वो सिर्फ लव सॉन्ग नहीं है, इट इज
1: जी
0: लॉन्गिंग ऑफ सोल्जर्स, जो सोल्जर्स हैं
1: जी
0: वो उसको याद कर रहे हैं
1: उसको
0: जिसको
1: याद
0: मिस
1: कर
0: कर
1: रहा
0: रहे
1: है,
0: हैं।
1: क्या बात है।
0: अगर
1: तो मैंने सर ये आपके कहते कहते ही सॉन्ग निकाल लिया है।
0: जबरदस्त
1: मेजर मानिक एम जॉली आज के संदेश के हमारे खास मेहमान, सेना मेडल सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन, और मेजर मानिक की पसंद का ये ट्रैक आप भी एंजॉय करें हमारे साथ। बने रहें संदेश सोल्जर्स में, शाहिद आपके साथ।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आप सुन रहे हैं शाहिद की आवाज़ और मेरे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान मेजर मानिक एम जौली, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन। और ये गाना मेजर साहब की पसंद से हमने सुना सुरतम सौराब से। सर, यहाँ पर बातचीत का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो तो उतना शायद जोशीला नहीं था, लेकिन जिस जोश से हम आगे बढ़े हैं तो प्रोग्राम खत्म होने का समय आ गया और अभी मेरे पास बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए बची हुई हैं। तो मैं मैसेजेस जो ऑलरेडी काफी सारे इकट्ठे हो गए मैं उनको बाद में पढ़ूंगा, लेकिन मैं अभी आपसे ही जानना चाहूंगा, मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी आपने एक काफी बड़ा समय दिया, एक बड़ा रोल प्ले करा, तो वो क्या था एक्सपीरियंस आपका, उसके बारे में बताइए।
1: तो शायद मिलिट्री इंटेलिजेंस में आप वॉलंटियर करते हैं कि मैं इसमें सर्विस करना चाहता हूँ, आपको 2 साल का प्रोबेशन रखते हैं वो।
0: अच्छा,
1: तो अराउंड 10-11 साल में MI में था, तो वहाँ पे मैं काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट था।
0: अच्छा।
1: और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, काउंटर इंटेलिजेंस की हमारी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए।
0: ओके।
1: इंटेलिजेंस ऐसे होती है उनकी खबर लें, तो अलग अलग डोमेन में, और नॉर्थ मेरा डोमेन था तो उसमें वही नौकरी करी मैंने ज़्यादा। काफ़ी ऑपरेशंस किए हमने, काफ़ी देश में जो जासूस घूम रहे हैं काफ़ी

0: पकड़े।
1: अच्छा,
0: तो इस तरह से मेन टास्क हमारा फिर ये होता है कि
1: कि कोई अगर इंट्रूडर है
0: हाँ जी,
1: तो उसका पता लगाना और उसको पकड़ना।
0: या और हमारे जो बेसिकली कम्युनिकेशंस, इंटेलिजेंस का बेस इज कम्युनिकेशन, वहाँ से खबर आती रहे और यहाँ से खबर ना जाए, बाकी सारी दुनिया इसके अराउंड बनी हुई है। ये दो पिलर हैं।
1: ये दो पिलर हैं।
0: या सो अपना अपना रोल सब प्ले करते हैं। तो उसमें मैंने स्पेशलाइजेशन थी मेरी कम्युनिकेशंस की,
1: जी
0: स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की, जो अभी मैं पढ़ाता हूँ और फौज छोड़ने के बाद तब से वही करते हैं।
1: जी तो सर, इसमें जो साइबर सेल का भी जो रोल
0: या
1: रहता है, वो भी आपने सेटअप किया, उसमें भी आप
0: देखो,
1: शामिल रहे।
0: तो 2000 अर्ली 2001-2002 में जब नया नया इंटरनेट आना शुरू हुआ था, तो सबको समझ आया था कि इंटरनेट से कम्युनिकेशन अब होगा।
1: ओके,
0: उससे
1: ये वो
0: पहले
1: उस
0: तो
1: जमाने की बात
0: हाँ,
1: है।
0: चिट्ठी फोन पे चल रहा था सारा
1: जी
0: काम।
1: जी जी
0: तो उस टाइम देश का, आर्मी का रादर, पहला साइबर सेल पुणे में मैंने
1: पुणे
0: सेटअप
1: में
0: करा था।
1: आपने।
0: मैंने एक दो कोर्स करे थे, स्पेशली कोर्स
1: अच्छा
0: करवाए साइबर इन्वेस्टिगेशंस के, एथिकल हैकिंग के। तो हमने समझा कि ये कैसे है। तो उससे काफ़ी, आर्मी है, आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी चीज़ें टेक्नोलॉजी नहीं आती है पहले पकड़ने की कोशिश करती है,
1: ओके
0: ताकि हमें एक स्टेप आगे रहे। तो फिर हमने साइबर सेल, साइबर पॉलिसी, इस पर काफ़ी काम किया,
1: अच्छा
0: जो वो आज तक चल रहा है और काफ़ी, अब तो बहुत डेवलप्ड है, पूरी डोमेन है। तो
1: बिल्कुल,
0: उस टाइम तो नया नया था
1: नया नया था
0: सब।
1: तो
0: हाँ
1: जाहिर
0: जी,
1: है टफ भी रहा होगा उस टाइम पर, उसको सब मतलब स्ट्रीमलाइन करना, उसको एस्टेब्लिश
0: समझने में
1: करना,
0: टाइम लगता था कि
1: समझने में
0: ये
1: टाइम
0: कैसे
1: लगता
0: होता
1: होगा।
0: है, यू नो,
1: जी
0: वैसे।
1: तो सर, अभी ये सब चीज़ें तो हो गई हैं आपकी, लेकिन
0: ये वो वाला जमाना था शायद, जब आप किसी से ईमेल मांगते थे, वो ईमेल के साथ पासवर्ड देता था। मैं सच
1: अच्छा
0: बता रहा हूँ, तो लोगों ने कहा पासवर्ड क्यों दे रखा था, फिर वो चेक कैसे करेगा। मतलब लोग धीरे धीरे समझ आई लोगों
1: समझ
0: को।
1: आया कि
0: हाँ जी,
1: भाई ये जो साइबर है ये किस तरह से
0: हाँ
1: काम
0: जी,
1: करता
0: हाँ
1: है और
0: जी,
1: इसमें कैसे सिक्योर रह सकते
0: हाँ
1: हैं।
0: जी,
1: सर, ये इन सब चीज़ों के साथ साथ आप जो हैं ऑथर भी हैं, आपने किताब लिखी है कुपवाड़ा कोर्स, और इसके बारे में ज़रूर बताइए। इतना सब आपने किया, आप एक डायरिंग आर्मी ऑफिसर, इंटेलिजेंस पर आपने काम किया, काउंटर टेररिज्म पर आपने काम किया, आपको सेना मेडल से और दूसरे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, आपको पीएम मोदी के मिशन इनोवेशन के नेशनल चैंपियन के तौर पर भी आपको सम्मानित किया गया, अब आप ऑथर भी बन गए।
0: हाँ जी। तो ये अभी मैंने 1 साल पहले लिखी थी। तो अपने सारे एक्सपीरियंसेस, कुछ ऑपरेशंस को इकट्ठा करके मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, गोरखा गैरिसन,
1: अच्छा
0: जिसमें गोरखा यूनिट और कुछ इंटेलिजेंस वाले जम्मू कश्मीर में ISI और टेररिस्ट को ढूंढ रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: तो
1: तो ये एक
0: उसकी,
1: स्टोरी है,
0: ये एक पूरी, ये सीरीज
1: सीरीज
0: है, ये
1: है।
0: फर्स्ट बुक थी उसकी, कुपवाड़ा कोड्स,
1: ओके,
0: जो कि पिछले साल आई थी और हार्पर कॉलिंस के साथ है।
1: क्या बात है। तो
0: तो
1: सर, क्या आप चाहेंगे कि इसको मतलब हम OTT प्लेटफॉर्म या कहीं पर देखें इसको, अगर अब पिक्चराइज किया जाए इसको,
0: हाँ जी,
1: फिक्शन?
0: इट इज़ अ वेरी गुड स्टोरी। आई होप किसी दिन इस पे कुछ बने,
1: जरूर सर,
0: क्योंकि
1: जरूर,
0: हाँ
1: हमारी
0: जी,
1: शुभकामनाएं हैं और हम जरूर चाहेंगे कि इस पर अच्छी आपके एक्सपीरियंसेस के साथ, जो इसमें एक्सपर्टीज के साथ जो आपने लिखी है ये, उसको जरूर पर्दे पर, छोटे पर्दे पर ही सही लेकिन उतारा जाए और हम उसको देख पाएं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, इतनी अच्छी आपने बातें करी, इतने अच्छे एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर करे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला और 80वां देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो उसकी भी बहुत बहुत तमाम देशवासियों को, हमारे सुनने वालों को और मेजर मानिक आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: सर
0: आपको
1: जाते
0: शायद।
1: जाते, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जाते जाते मैं सर आपसे अब ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि कम से कम एक आपकी पसंद का गाना जरूर चलाऊं जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और आपके दिल से करीब है।
0: तो मैं आपको बताता हूँ, जब NDA में थे तो ये पिक्चर रिलीज हुई थी बॉर्डर,
1: बॉर्डर, जी बड़ी
0: तो
1: फेमस,
0: उसका गाना था संदेश आते हैं।
1: जी
0: संडे को दोपहर को हर कमरे में गाना चल रहा था,
1: अच्छा
0: और इस गाने, आई डोंट थिंक फौजी लाइफ, फौजी इमोशंस को इस गाने से अच्छा कोई कैप्चर करता है।
1: क्या बात है
0: तो
1: सर।
0: मैं फर्स्टली आपको थैंक यू, आपके सभी लिसनर्स को जय हिंद।
1: सर, लिसनर्स तो
0: और
1: हमारे अभी भी जुड़े हुए हैं और
0: हाँ
1: मैसेजेस आ रहे हैं।
0: हाँ जी, और स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं, और थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच सर आपके आने के लिए। यहां पर मेजर मानिक एम जॉली की पसंद का ये गाना हम छोड़ करके जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम सर को जाते जाते जो मैसेज, कुछ एक तो मैं कम से कम पढ़कर सुनाई दूं। सर, हैट्स ऑफ ऑल योर एक्सपीरियंसेस शेयरिंग, विश वन लाइफ वी गेट अ चांस टू लिव 1% ऑफ योर लाइफ, प्लीज शेयर योर बुक फ्रॉम USA न्यू जर्सी। ये मैसेज आया है किसी का और इनका नाम मुझे नहीं पता लग पा रहा है, लेकिन इन्होंने सर बड़ा दिल से मैसेज
0: या
1: कराया आपको।
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट योर मैसेज। जय हिंद आपको भी।
1: और सर ये मैसेज है, सर कैन वी ज्वाइन सीक्रेट सर्विस थ्रू NDA और आफ्टर NDA, ये पूछ रहे हैं सर। समय हालांकि खत्म हो गया लेकिन मैं क्या करूं,
0: हाँ जी,
1: मैसेज
0: हाँ जी,
1: सर।
0: जरूर जरूर, आप फौज में जाइए और कुछ भी ज्वाइन करें।
1: और सर ये मैसेज है, हेलो सर, NDR एंड एंड

0: आरजे एन मेजर सर, जय हिंद, जय भारत सर, जैसे आप जैसे महानुभाव की बातें सुनकर यूथ बहुत इंस्पायर होते हैं, उनमें देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है। आप सदा स्वस्थ रहें। मिसेस धर्म भाटिया, रोहतक से सर ये मैसेज आया सर, आपके शहर
1: अरे
0: से।
1: वाह, हमारे शहर से आए
0: जी।
1: भाटिया जी, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद आपको भी।
0: और सर मेजर साहब को विजय कुमार त्रिचुरपल्ली की ओर से जय हिंद और स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। सर विजय कुमार हैं ये।
1: आपको भी विजय जी, जय हिंद आपको भी।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर एम जॉली, हमारे साथ थे आज, वेटरन इंडियन आर्मी, सेना मेडल से सम्मानित। और आप सुन रहे थे संदेश सुदर्श शाहिद के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग अभी आप सुन रहे थे।
2: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए एक सूचना। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2026 को लाल किले की प्राचीर से होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह का डीडी के श्री विजयपुरम के माध्यम से सुबह 6:25 से कार्यक्रम की समाप्ति तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। साथ ही नेताजी स्टेडियम श्री विजयपुरम से 80वें स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह का भी डीडी के श्री विजयपुरम के यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुबह 8:50 से कार्यक्रम की समाप्ति तक लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। अतिरिक्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शाम 5 से रात 8 तक डीडी के श्री विजयपुरम द्वारा विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। तत्पश्चात लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन का पुनः प्रसारण किया जाएगा। 16 अगस्त को भी माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन को डीडी के श्री विजयपुरम सुबह 8 से कार्यक्रम की समाप्ति तक पुनः प्रसारण करेगा। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 11 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1350वीं कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कल स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विमलेश।
3: जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं अजीत। स्वाधीनता दिवस की आप सबको बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर कविता से।
2: तो शुरू करते हैं कविता। जब भी सर झुके मेरा तब देश को सलाम हो, तमन्ना बस यही है मेरी हर सांस देश के नाम हो।
3: तिरंगे की शान पर ये जीवन कुर्बान हो, हर धड़कन में मेरी भारत ही का नाम हो। श्रोताओं, कैसी लगी कविता जरूर बताइएगा।
2: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से, ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखते हैं,
2: अनुभव और कर्म ये दो हमारे गुरु हैं, दोनों ही साथ चलते हैं। कर्म परिस्थिति में लड़ना सिखाता है और अनुभव जीत हासिल करना।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश सुनने की।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी, कूट कुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक।
3: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
3: और भवरपुर बसना छत्तीसगढ़ से राधेश्याम, चंपा देवांगन।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: ये भी जानिए श्रृंखला में एक बार फिर से हम लेकर आए हैं श्रोताओं आपके लिए रोचक जानकारियों का पिटारा। जैसा कि आपको पता है कल हम मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त की आजादी का जश्न।
2: श्रोताओं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है 1857 से, जो 1947 तक चली। हम सब जानते हैं कि 10 मई 1857 को ये मेरठ छावनी से शुरू हुआ था, जब जननायक मंगल पांडे ने बगावत का बिगुल बजा दिया था।
3: श्रोताओं, ऐतिहासिक रूप से इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है
2: जी।
3: लेकिन इससे पहले भी स्थानीय रूप से बहुत से जनजातीय और अन्य समूहों ने भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और आजादी का नारा बुलंद करके राष्ट्रीय आंदोलन का मंच तैयार किया।
2: इन जनजातीय समूहों में मुंडा, भील, उरांव, गोंड, संथाल, कड़ावा इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन आदिवासी आंदोलनों के नायकों में बिरसा मुंडा, सिद्धो और कानू और अल्लूरी सीताराम राजू जन जन में जाने जाते हैं।
3: तो श्रोताओं, एक लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली
2: जी।
3: तो आज हम विशेष रूप से जानेंगे कि क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो पहली बात आपको बता दें श्रोताओं कि 15 अगस्त 1947 को भारत के पास कोई राष्ट्रीय गान नहीं था, इसीलिए उस दिन कोई गीत नहीं गाया गया था।
2: जी हाँ श्रोताओं, क्योंकि राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में ही घोषित किया गया
3: जी। तो अब बात करते हैं तिरंगे की। श्रोताओं, आपको बता दें पहली बार तिरंगा झंडा 6 अगस्त 1947 को फहराया गया था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से झंडा 16 अगस्त 1947 को ही फहराया गया था।
2: तो क्या 15 अगस्त के दिन कोई समारोह नहीं हुआ था? श्रोताओं, ऐसा बिल्कुल नहीं है
3: जी। 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में तिरंगा फहराया था और 16 अगस्त 1947 को उन्होंने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया था। आपको बता दें कि उस दिन लाल किले के प्रांगण में लाखों की भीड़ थी।
2: श्रोताओं, एक और रोचक बात आपको बता दें कि 15 अगस्त को अन्य देश भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वो देश हैं दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो।
3: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी स्वतंत्रता दिवस के दिन की। अब आज का प्रश्न, आज ही की जानकारी से, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: और अब सुनते हैं आज के विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है दादा भाई नौरोजी।
2: इस कार्यक्रम में भारत के स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके प्रयासों और योगदान की चर्चा की गई है। उन्हें आधुनिक भारत की राजनीति का पितामह भी कहा जाता है।

0: आधुनिक भारत के निर्माताओं में दादा भाई नौरोजी का नाम प्रमुख है। अंग्रेजों को उनके जुल्मों के लिए खरी खोटी सुनाने वाले पहले भारतीय वे ही थे। इंग्लैंड में उन्हीं लोगों के वोटों से वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना जाना भी उनके जैसे महान व्यक्ति का ही काम था। भारतीयों में स्वदेश के प्रति प्रेम और उन्हें स्वराज्य का नारा देने वाले भी दादा भाई नौरोजी ही थे। यही कारण है कि इस देश के लोग अगर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो दादा भाई नौरोजी को राष्ट्र का पितामह। 4 सितंबर 1825 को एक पारसी पुरोहित के घर दादा भाई का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था श्री नौरोजी पालनजी दोरड़ी और माता का नाम श्रीमती मीणकबाई था। पुरोहिती और थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी से ही इनके परिवार का पालन पोषण होता था। 4 वर्ष की कम उम्र में ही दादा भाई के सिर से पिता का साया उठ गया। परिवार आर्थिक कष्ट में डूब गया। दादा भाई के पिता ये चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर पारिवारिक पुरोहिताई का काम करे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें पुरोहित बनाने की बजाय स्कूल भेजना उचित समझा और उनकी पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने में कोई कसर ना छोड़ी। उन दिनों देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और विदेशी शासन को इसकी कोई चिंता ना थी कि भारत के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। बंबई के तत्कालीन गवर्नर श्री माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन कुछ भिन्न विचार के थे। उन्होंने अपनी कोशिशों से नेटिव एजुकेशन सोसाइटी नाम की एक संस्था बनाई जो भारतीय बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी। इस संस्था ने बंबई में 2 स्कूल खोले। उनमें से एक में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और दूसरे में देशी भाषा। दादा भाई की मां ने उन्हें देशी भाषा वाले स्कूल में भर्ती करवा दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में वो न केवल पढ़ने में तेज थे अपितु दूसरे क्षेत्रों में भी वे सबसे आगे थे। उनकी योग्यता को देखकर उनके एक प्राध्यापक ने उन्हें भारत की आशा नाम दिया था। आगे चलकर दादा भाई ने इस विशेषण को सार्थक कर दिखाया। उनकी योग्यता को देखकर बंबई के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अर्सकिन पेरी ने उन्हें सलाह दी।
1: दादा भाई, तुम इंग्लैंड जाकर बैरिस्टरी कर लो।
2: लेकिन सर, इंग्लैंड जाना और वहां रहकर बैरिस्ट्री पढ़ना, इन सब के लिए तो बहुत पैसा चाहिए।
1: इसकी तुम चिंता न करो, तुम्हारी बैरिस्ट्री की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं दूंगा। तुम जाने की तैयारी करो।
2: सर, आप मेरी पढ़ाई के लिए खर्चा करेंगे? लेकिन सर, मैं अपनी माँ और घर के अन्य लोगों से पूछकर ही कुछ फैसला कर सकता हूँ।
1: जैसे तुम्हारे मर्जी।
0: दादा भाई ने जब अपने घर में इंग्लैंड जाने और वहां बैरिस्ट्री पढ़ने की बात कही तो पारसी समाज के बुजुर्गों ने इसका विरोध किया। उन्हें डर था कि इंग्लैंड जाकर दादा भाई कहीं ईसाई न बन जाएं। परिणाम यह हुआ कि दादा भाई ना इंग्लैंड जा सके और ना ही बैरिस्ट्री पढ़ सके। दादा भाई अपने विद्यार्थी जीवन में ही सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने लगे थे। जनता की भलाई और उन्नति के काम में वो पूरी तरह जुट गए। लड़कियों की शिक्षा को कार्य रूप देने वाले वे पहले व्यक्ति थे। ऐसे समाज में जहां लड़कियों को शिक्षा देने के प्रबल समर्थक न थे, दादा भाई ने कुछ विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बंबई में एक संस्था बनाई। इस संस्था द्वारा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अपेक्षा के अनुसार तत्कालीन समाज ने उनका कड़ा विरोध किया।
3: अरे भाई, कौन हो तुम? ये घर घर जाकर क्या प्रचार कर रहे हो?
2: जी, मैं दादा भाई हूँ।
4: दादा भाई,
2: और हमारी संस्था ये प्रयत्न कर रही है कि लड़कियां स्कूल जाएं और शिक्षा प्राप्त करें।
4: अरे लड़कियां पढ़ेंगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है।
3: अरे लड़कियां

0: घर से बाहर जाएंगे? अरे ना भाई ना,
1: अरे जाओ कुछ और काम करो।
2: सुनिए सुनिए, आप लोग मेरी बात तो सुनिए। देखिए, लड़कियों का अलग से स्कूल होगा और यदि वो पढ़ लिख जाएंगी तो उनके जीवन में नई रोशनी आएगी, वो परिवार और समाज को बेहतर बनाने में सहायक होंगी।
3: दादा भाई के इस प्रचार का लगातार विरोध होता रहा, किंतु दादा भाई और उनके सहयोगियों ने हिम्मत ना हारी। उन्होंने लड़कियों का एक नियमित स्कूल खोल दिया और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ लड़कियां उस स्कूल में आने भी लगीं। कुछ पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग दादा भाई की लगन और ईमानदारी से प्रभावित हुए बिना ना रह सके। सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया और देखते ही देखते बंबई में लड़कियों के कई स्कूल खुल गए। 30 वर्ष की आयु में ही दादा भाई को एक व्यापारी कंपनी के सहयोग से इंग्लैंड जाने का मौका मिला। वे जानते थे कि व्यापारिक तिकड़मबाजी में तो वे सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इंग्लैंड जाने का ये मौका उन्हें फिर नहीं मिलेगा। वे इंग्लैंड जाकर अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता और भारतीयों की उन्नति के लिए सक्रिय कार्य करना चाहते थे। अतः इंग्लैंड पहुंचते ही उन्होंने अपने व्यापारिक कामों के साथ देश सेवा का काम भी शुरू कर दिया। उनका विश्वास था कि यदि इंग्लैंड की आम जनता और सरकार को भारत की दुर्दशा से परिचित कराया जाए तो भारत की हालत में सुधार हो सकता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की सभाओं में दादा भाई ने अपने राजनीतिक विचारों को अंग्रेजों के सामने रखा।
2: भारत का शासन भारत के हित में होना चाहिए, और ये भारत में 1,00,000 सैनिक रखकर नहीं बल्कि वहां रहने वाले लाखों भारतीयों की सहमति और विश्वास से हो सकता है।
3: मई 1869 को इंग्लैंड से बंबई आकर उन्होंने भारतीयों की एक सभा बुलाई।
2: मेरे साथियों साथियों, हमें भारत में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसी जनता की अपनी प्रतिनिधि संस्थाएं बनानी चाहिए।
1: क्या ब्रिटिश सरकार ऐसा होने देगी?
2: ब्रिटिश सरकार के सामने हम अपना प्रस्ताव रखें, उससे पहले हमें इसके योग्य बनना होगा।
4: लेकिन वो कैसे?
2: इसके लिए हमें लोगों को तैयार करना होगा, और जनमत को तैयार कर अन्याय व गलत बातों के खिलाफ आवाज उठानी होगी।
5: लेकिन लेकिन हमारी आवाज सुनेगा कौन?
6: और क्या ब्रिटिश सरकार इस जनमत की आवाज को बर्दाश्त करेगी?
5: क्या अंग्रेज सरकार इसे बर्दाश्त करेगी?
2: वो बर्दाश्त ना करे, पर हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इंग्लैंड में एक ऐसी संस्था बनाए जो भारतीयों की मांगों को इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उठाए।
3: देखते देखते बंबई के लोगों में नई लहर दौड़ गई, और इसके बाद बंबई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा कायम हुई। दादा भाई ने सोचा कि यदि इंग्लैंड की लोकसभा में भारत का कोई प्रतिनिधि हो तो भारत की दुर्दशा का हाल वहां की जनता तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए वे पुनः इंग्लैंड गए और वहां के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए, किंतु इसमें वो हार गए। इस हार से वो जरा भी निराश नहीं हुए। भारत की एक और राष्ट्रीय शख्सियत मदाम भीकाई कामा ने उनके अगले चुनाव के लिए काम आरंभ किया। परिणामतः उन्हें इंग्लैंड की लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त हुई। इतिहास में ये पहला अवसर था जब ब्रिटेन की लोकसभा में एक साधारण भारतीय चुना गया था। लोकसभा की कार्रवाई में शुरू से ही उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया कि भारतीय लोग विद्या, बुद्धि और सतर्कता में अंग्रेजों से कम नहीं। उन्होंने अपने प्रयत्नों से लोकसभा में सिविल सर्विस में भारतीयों को भर्ती करने का प्रस्ताव पास करवाया। भारत के लोगों के लिए उनका ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण था। 81 वर्ष की आयु में भी वो देश के सुधार में दिन रात लगे रहते थे। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। मित्रों के आग्रह पर सन 1907 में वे लंदन से स्वदेश लौट आए। 30 जून 1917 का वो दिन दुर्भाग्यपूर्ण था जब स्वराज्य का सपना अपनी आंखों में लिए देश का ये वयोवृद्ध नेता 92 वर्ष की आयु में इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गया। गोखले

और महात्मा गांधी ने दादा भाई की कर्तव्य निष्ठा को आगे बढ़ाया। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की इस मूर्ति के प्रति देश सदैव ऋणी रहेगा।

0: दादा भाई नौरोजी, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। श्रोताओ आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
1: ये कार्यक्रम भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अहम भूमिका और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आधुनिक भारत के निर्माण और एकीकरण में उनके विशेष योगदान के बारे में विस्तार से बताता है।
2: मैं कम बोलने वाला आदमी क्यों? क्यों मैं कम बोलता हूँ? एक सूत्र है कि जो मैंने सीख लिया है कि मौनम मूर्खस्य भूषण, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं, वो विद्वानों का काम है। लेकिन जो हम बोले उसी के पर हम न चल सके तो हमारा बोलना नुकसानकारी है, इसलिए भी मैं कम बोलता।
3: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, पंडित नेहरू ने भारत के नव निर्माण की नींव रखी, तो सरदार पटेल ने 500 से भी अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाकर उसे एक स्वतंत्र, एकीकृत और अखंड राष्ट्र की पहचान दी।
4: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात में हुआ था। वल्लभ भाई की आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। आगे पढ़ने के लिए वे पास के शहर पेतलाड़ चले गए। वहां वे पढ़ाई के साथ साथ ही खेलकूद, कुश्ती और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे। तभी एक दिन,
5: वल्लभ वल्लभ।
6: हाँ।
5: अरे तुमने कुछ सुना
6: क्या? क्या हुआ घनश्याम?
5: अरे वो अपने देसाई सर है ना,
6: हाँ?
5: उन्होंने राम जी को क्लास से निकाल दिया।
6: क्लास से निकाल दिया?
5: हाँ।
6: मगर क्यों? वो तो बड़ा सीधा साधा लड़का है।
5: राम जी के पास किताब नहीं थी, घर से पैसे नहीं आए, इसलिए वो खरीद नहीं सका। पर देसाई सर भला उसकी क्यों सुनते, उन्होंने राम जी पर 4 आना फाइन कर दिया।
6: किताब न लाने पर 4 आने फाइन? फिर क्या हुआ?
5: फिर क्या, आज क्लास में आते ही देसाई सर ने पूछा,
7: क्यों राम जी फाइन लाए हो?
5: तो बेचारा राम जी बोला, नहीं सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो जानते हो इस पर सर एकदम भड़क गए और बोले,
7: निकल जाओ मेरी क्लास से और जब तक फाइन लेकर ना आओ तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
6: ये तो सरासर अन्याय है। ठीक है, तो कल से सिर्फ राम जी ही नहीं, हम में से कोई भी उन्हें शक्ल नहीं दिखाएगा।
5: क्या कह रहे हो, देसाई सर का गुस्सा नहीं जानते हो तुम?
6: जानता हूं, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे अन्याय करना बुरी बात है वैसे ही अन्याय सहना भी बुरी बात है। हम गरीब घरों के लड़के हैं, हमारे माँ बाप किसी तरह पेट काट कर हमें पढ़ाते हैं। अगर हमें बिना कसूर जुर्माना भरना पड़े तो हमारे माँ बाप इतना पैसा कहाँ से लाएंगे भाई?
5: लेकिन अभी तो सिर्फ राम जी के 4 आने का ही सवाल है।
6: सवाल 4 आने का नहीं है घनश्याम, सवाल है अन्याय के आगे सिर झुकाने का। देसाई सर को गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है, बात बात पर मारपीट, बात बात पर फाइन। इसी तरह वो पारिक सर हैं जो जबरदस्ती लड़कों को अपनी दुकान से कापी कलम खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। सब जानते हैं वो बाजार भर में सबसे महंगा सामान बेचते हैं, फिर भी हमें उनकी दुकान से सामान खरीदना पड़ता है।
5: हाँ, और अगर ना खरीदो तो नंबर कम देते हैं।
6: इसीलिए तो कहता हूं सब मिलकर एक हो जाओ और इस अन्याय का विरोध करो। चलो सब लड़कों से बात करते हैं।
5: ठीक है,
6: उनसे कहते हैं कल से कोई लड़का उनकी क्लास में न जाए।
5: लेकिन वल्लभ सुनो तो सही, अगर इतने सारे लड़के क्लास में ना जाकर इधर उधर घूमेंगे तो प्रिंसिपल साहब नाराज नहीं होंगे क्या?
6: हाँ ये तो तुम ठीक कहते हो। ठीक है, इसका हल भी मैंने सोच लिया है।
5: क्या?
6: स्कूल के बाहर जो धर्मशाला है उसमें बैठेंगे, ना इधर उधर भटकेंगे ना शोर करेंगे।

0: तुम जाकर उस धर्मशाला में हमारे बैठने की व्यवस्था करो। और सुनो, बाबू से कहो कहीं से 3-4 घड़ों की व्यवस्था करे।
1: घड़ों की व्यवस्था? पर वो क्यों?
0: अरे भाई, इतने लोग दिन भर वहां बैठेंगे तो पीने का पानी भी तो चाहिए। हम लोग वहीं बैठकर अपना काम करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे।
2: हाँ वल्लभ, ये ठीक है।
3: वल्लभ भाई की ये पहली हड़ताल सफल रही। 3 दिन तक सिर्फ उनकी कक्षा के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया। आखिर प्रिंसिपल साहब ने अपने सहयोगियों की ओर से क्षमा मांगी और आश्वासन दिया कि फिर कभी किसी छात्र को बिना अपराध सजा नहीं दी जाएगी।
4: इस घटना से वल्लभ भाई के 2 प्रमुख गुण प्रकाश में आए। एक था उनका कुशल नेतृत्व और दूसरा संगठन की अद्भुत शक्ति। वल्लभ भाई में एक और विशेषता थी और वो थी उनकी शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता। कठिन से कठिन परिस्थिति में वे बड़ी जल्दी सही निर्णय लेते थे और फिर पूरी दृढ़ता और लगन से उसके पालन में लग जाते थे। उनके इन्हीं गुणों को देखकर गांधी जी ने उन्हें अपना विश्वास पात्र सहयोगी बनाया था।
3: मैट्रिक करने के बाद वल्लभ भाई ने डिस्ट्रिक्ट लीडर की परीक्षा पास कर गोधरा में वकालत शुरू की। बाद में उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की परीक्षा पास की और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करने लगे। जल्दी ही एक कुशल और निर्भीक वकील के रूप में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। उन्हें अहमदाबाद नगर पालिका का सदस्य और बाद में उसका अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक हित के लिए कई बार अंग्रेज अफसरों से लोहा लिया और विजय प्राप्त की। ऐसी ही एक घटना थी नागपुर के झंडा सत्याग्रह की।
5: ये क्या दिनेश भाई, आज फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने का इरादा है क्या?
6: हाँ भाई, इरादा तो पक्का है।
5: पर सुना है कल सिविल लाइंस वाले जुलूस में काफी लोग गिरफ्तार हो गए।
6: हाँ, काफी स्वयंसेवकों ने गिरफ्तारी दी और जानते हैं उनमें करोड़पति सेठ जमनालाल बजाज भी थे।
5: अच्छा, सेठ जमनालाल को भी नहीं छोड़ा? तो फिर अब जुलूस का नेतृत्व कौन करेगा?
6: सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी की खबर सुनकर अहमदाबाद से वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं। वही खेड़ा सत्याग्रह वाले, बड़े जीवट वाले व्यक्ति हैं। अब वही इस झंडा सत्याग्रह की बागडोर संभालेंगे। ये लो, वो आ ही गए।
0: क्यों दिनेश भाई, कैसे हो? यहाँ का क्या समाचार है?
6: जी मैं अच्छी तरह हूँ, पर आप यात्रा से आए हैं, थके होंगे, कुछ देर आराम कर लीजिए, बाकी बातें कल होंगी।
0: नहीं भाई, मैं किसान का लड़का हूँ, आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। तुम पहले यहाँ का हाल सुनाओ।
6: यहाँ का हाल ठीक नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी से बहुत से लोगों की हिम्मत टूट गई है। सबसे पहले तो हमें स्वयं सेवकों की आवश्यकता है।
0: मेरा भी यही ख्याल है, पर नागपुर में इतने स्वयं सेवक मिलने कठिन है। ऐसा करें कि सभी प्रांतों के कांग्रेस अध्यक्षों को मेरी ओर से पत्र लिखवाएं।
6: जी।
0: और उनसे अनुरोध करें कि अधिक से अधिक स्वयंसेवक यहां भेजने की व्यवस्था करें।
6: उससे क्या होगा
0: भाई? अंग्रेज सरकार हमें झंडा लेकर चलने नहीं देगी, पकड़कर जेल में डाल देगी। अगले दिन फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने के लिए और स्वयंसेवक चाहिए या नहीं? ऐसा प्रबंध करना है कि हर रोज कम से कम 50 लोग जुलूस निकालें और गिरफ्तारी दें। देखना है अंग्रेज सरकार की जेल में कितनी जगह है।
3: सरदार पटेल की देखरेख में जुलूस निकलने लगे और गिरफ्तारियां होने लगी। नागपुर जेल भर गई तो सत्याग्रहियों को अकोला जेल भेजा गया। लेकिन 110 दिन चले इस सत्याग्रह में किसी दिन स्वयं सेवकों की कमी नहीं हुई। आखिर अंग्रेज सरकार को शांतिपूर्ण जुलूसों और सभाओं पर से पाबंदी हटानी पड़ी।
4: सरदार पटेल की एक ऐसी ही महत्वपूर्ण विजय थी

0: बारदोली के किसान आंदोलन की सफलता। उनकी इसी सफलता पर गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। हुआ यूं कि सरकार ने बारदोली जिले के किसानों पर लगने वाले कर में एकदम से 22% की वृद्धि कर दी। गरीब किसानों के लिए इतना कर देना संभव नहीं था। सरदार पटेल ने पहले किसानों की ओर से सरकार से अपील की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने सत्याग्रह का शंख फूंक दिया। उन्होंने गांव-गांव, घर-घर में जाकर किसानों से कहा कि वे बिल्कुल टैक्स न दें।
1: मैं आप लोगों को यह साफ-साफ बता देना चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए मैं आपको कोई बड़े-बड़े हथियार नहीं दे सकता। बस आपका अपना दृढ़ निश्चय और कष्ट सहने की आपकी सामर्थ्य है, यही वो हथियार है जिनसे आपको ये लड़ाई लड़नी है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप कष्ट सहने के लिए तैयार हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी एक दिन आपके आगे घुटने टेकने के लिए विवश हो जाएगी।
2: ठीक है, हम सब तैयार हैं।
1: भाइयों, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग डरते हैं कि उनकी जमीनें छिन जाएंगी। लेकिन एक बात तो बताइए, क्या अंग्रेज सरकार अपने साथ यह जमीन विलायत ले जाएगी?
2: नहीं।
1: अंग्रेज सरकार के ये आला अफसर क्या खुद आपकी जमीन जोतेंगे?
2: नहीं।
1: तो फिर आप लोग किस लिए डरते हैं? सरकार आपकी जमीन छीनकर दूसरों को दे देगी। अगर आपकी एकता में बल है तो कोई दूसरा आपकी जमीन पर हल नहीं चला सकेगा। सारे गुजरात के किसान आपका साथ देंगे, सारे देश के किसान आपका साथ देंगे। अरे, किसान के लिए कष्ट सहना कोई नई बात है क्या? जाड़े, गर्मी, बरसात में कौन खून पसीना एक करके फसल उगाता है? कीड़े मकौड़ों, सांप बिच्छुओं की परवाह न करके कौन उन फसलों की रखवाली करता है? अंग्रेज सरकार भला इन कष्टों से बढ़कर और क्या कष्ट दे सकती है? आप एक बार इन कष्टों को हंसकर सहने का निश्चय कर लीजिए, आपकी जीत निश्चित है।
2: ठीक है, हम सब तैयार हैं।
0: बारदोली के किसान सत्याग्रह पर सबकी आंखें लगी हुई थीं। ये गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के आदर्शों की परीक्षा थी, और इसमें विजय भी अहिंसा और सत्य की ही हुई। असहयोग आंदोलन, खादी प्रचार, चुनावों की व्यवस्था, सूखा, बाढ़, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत बचाव कार्य, इन सभी में सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व और संगठन कौशल का प्रमाण मिलता रहा। और इसी तरह 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ।
3: जब हिंदवासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है,
0: सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उनके सुयोग्य प्रशासन से विभाजन के समय की भीषण स्थिति जल्दी ही काबू में आ गई। 15 दिसंबर 1950 को बंबई में दिल के दौरे से उनका निधन हुआ। 1991 में उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। यही कृतज्ञ राष्ट्र की इस लौह पुरुष के लिए श्रद्धांजलि है।
4: श्रोताओ, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना
5: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1350वीं कड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं और अब लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनला मनिंगी रोखर हमांग इंगी रहे थका लमक दलगी मीडियम वेव 438.6 मीटर है 684 किलो हर्ट्ज रमांग एलगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम एलगी निकोबारी प्रोग्राम तहांग। मिनका तलोनी हेक तरन मिने महावत करिचौ ने लखाय मिने कुन बनाम ही एम वी रानी लक्ष्मी किरण गिर तहे ने चुहमाय पंडा ददिकलीपुर इट सात कैन रो तलाभ न लग्न फनिस वे चट्टी गचवान इपुर इट सात कैन रो तलाभ न रंग टिकलीपुर सकमाय पंडा अमीन एलदा लक ने चु श्री विजयपुरम नलंदा किरण गिर में ने चु लिटि अंडमान इट मा चु तिर कैन रो तहत न लग्न हेडवाफ गचवान इपुर इट मा चु तिर कैन रो तलाभ न रंग लिटि अंडमान नंग चु श्री विजयपुरम एमवी कालीघाट चूहली तिलंडमान कानिक बार चूहली तिलंडमान तो कानिक बार इतसाद सीन अलांग चिंगेत इतसाद कहीं रो तलाब हुए नलग में हेडवाव ना जवान इतहर सीन अलांग चिंगेत इत फ्रेंड कहीं रो तलाहराप नरांग कानिक बार सकली तिलंडमान अनमिन एल तलाग करने चूसरी विजयपुरम एमवी कालीघाट चूहल चिलंडमान कानिक बार चावरा तेरेसा गचाल नैन गौरी एलदल कर निचूह कैम्बल बे इतने नाय सात अलाउंगो चिंगेत इत सात कर रो तलाब हुए नलक ने हेडवाफ गचावान इत तलु नाय अलाउंगो चिंगेत इतने सीन कर रो सकाम न रंग कैम्बल बे सक गचाल तेरेसा चावरा कानिक बार तेली तिलंडमान अनमिन एलदल कर निचू श्री विजयपुरम नालंदा चुन एन कौर दैम्बल बे इतहर सीन अलाउंग चिंगेत इत मचू उतर कहीं रो तलाब हुए नलक ने हेड वाफ गचवान इत ने नाय अलाउंग चिंगेत इतहर कहीं रो तलाब हु न रंग कैम्बल बे सकन एन कौर अनमिन एल तला कर ने चू श्री विजयपुरम अनु ने मिन कह तलो नी इन सकाम हांगी तेरे आइए तरोखर क्रिएटर्स राल तारिक आंकु निकुन बनाम ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ये तो आओ इन द स्टोरी रे नवा में या वनाय हेक इंद्री गंगी कुन बनाम ही ते तरोखर बनाम नी अंतंगामु तके तुरे तक ये हमुक तेरे आए लगते इंगम जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज मिने यंगी प्रोग्राम रमांगम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग तंगम प्रसार भारती इंद्रे नैनुन तह हमुकु तयि नैनु कॉन्डन यि तसा मिने तसा मिने तनेहनुरेन तिंदेकन हि आकु इकुन बनामरे मिने कल्चर तरोहि तमिने टूरिस्ट प्लेस तमिने

一第三米呢？第三米呢？但你很多人听得见伊，阿古尼坤巴南勒，米呢 culture 特罗伊，但米呢 tourist place， 但米特罗讲言 tradition 伊 in 勒 ，whole 勒 tap， 特就带 story， 伊 bloggers， 阿古尼坤巴南伊。Tersahi ayia, ay ah ni kubari, yip taheng indre. Ni min in lahan yi, vi ap taheng, sel ipta, lui minutes video, venyab is doringi, island kun banam hi. Nenun min, tanung len ap ta, mihoy, tangam district, level, 50,000, State level, net leg, national level, 5 leg. Asu apri tahuk kata yi register lere tengamu elngam waves app rangnyaku ngam my waves chu elngam program ngai submit len up video re laktuku ik 1st August sel ip ta luyana alango August jinget अब तल नकु रे ताकि आई रजिस्टर लरे वर्ल्ड ऑर्गन्स डोनेशन डे ये तरह है यें ये वर्ल्ड ऑर्गन्स डोनेशन डे इन दागमु रे तक नरहु किने केन ताहिंग सकाम Taheng sam yu, hen ngo jinget, ta fen sin alango, August jinget. Ni re tak tangamu ta yip toho, lo nu ta donet. Mi hoi na, ke taheng, ta samine, liver, hearts, lungs. Ni sakama tangamu na, one decision me, life me, lasting legacy, hamuk nuan. Na ini kun banam hi India anu ne terhayin ro ialangi sakama tengamu

Nah, tinggal kayak ini, ayo, tak kasar.

掌声送上。

0: 65 days to 412 days. New FTTH plan for monthly charge of 1199 month plus GST, providing speeds up to 200 Mbps.
1: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ. इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है. सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं. और माइलेज भी बढ़िया है. 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में. बाय ऑफर्स अप टू 80,000.
2: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है. शर्तें लागू.

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 meter അഥവാ 684 kHz-ൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

हमने हाइपरसोनिक क्षेत्र में भी बड़ी छलांग लगाई है। एक्टिव कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर के 1200 सेकेंड से अधिक के सफल परीक्षण ने भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी विकसित करने की क्षमता रखने वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल प्रदर्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एयर डिफेंस में हमारी शक्ति स्वदेशी कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के पहले सफल परीक्षण से और बढ़ गई है, जिसके सभी सिस्टम पूर्णतः स्वदेशी हैं। साथियों, आधुनिकीकरण के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करना भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस वर्ष बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक साथ 125 रणनीतिक आधारभूत संरचनाएं राष्ट्र को समर्पित किए, जो बीआरओ के इतिहास की सबसे बड़ी एकल उपलब्धि है। लगभग 5000 करोड़ रुपए की लागत से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे क्षेत्रों में बनी 28 सड़कें और 93 पुल हमारी सेनाओं की तेज आवाजाही को सुनिश्चित करेंगे। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों से हमारा जुड़ाव और मजबूत हो रहा है। हमारे सैनिकों का सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ाव पहले की तुलना में अब और ज्यादा बढ़ रहा है। सिर्फ सीमावर्ती क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि हर जगह हमारी सेनाएं फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में कार्य करती हैं। देश में कहीं भी जब कभी दुर्भाग्यपूर्ण आपदा आती है तो हमारी सेनाएं वहां तुरंत पहुंचकर राहत बचाव का कार्य करती हैं। इसलिए साथियों, हम आधुनिकता या आत्मनिर्भरता के जो कुछ भी प्रयास कर रहे हैं उसका मुख्य आधार हमारी सेनाएं, हमारे सैनिक और उनके परिवारजन ही हैं। हमारी सेनाएं हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतिबिंब है। हम अपने वेटरन्स के कल्याण के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। पिछले 5 वर्षों में यक्ष सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम बजट में 300% की वृद्धि हमारी इसी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड के अंतर्गत पिन्यूरी ग्रांट 4000 से बढ़कर 8000 रुपये, एजुकेशन ग्रांट 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपये और मैरिज ग्रांट 50000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। यह बदलाव साफ तौर पर हमारे सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखा रहे हैं। साथियों, आज जब हम रक्षा क्षेत्र में इतने बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं तो मुझे आपसे यह कहते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि भारत का रक्षा क्षेत्र भारत की बेटियों के लिए भी सम्मानजनक रास्ते खोल रहा है। 2026 में हमने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की जब नेशनल डिफेंस एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली पहली महिला कैडेट्स ने सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त किया। 17 महिला अधिकारियों का यह जत्था साबित करता है कि साहस और नेतृत्व किसी एक जेंडर की सीमा में नहीं बने,

हमारी नारी शक्ति की इसी भावना का विस्तार समुद्र प्रदक्षिणा भी है, जहां तीनों सेनाओं का पहला ऑल वेमेन सरकम नेविगेशन सेलिंग एक्सपेडिशन हुआ, जिसमें IASV त्रिवेणी पर सवार 9 महिला अधिकारियों ने 314 डेज में 4 महासागरों में 25,500 नॉटिकल माइल्स की यात्रा पूरी की है। यह अदम्य साहस नारी शक्ति के नए भारत का जीवंत प्रतीक है। साथियों, इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए बहुत ही विशेष है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि हम सब इस अवसर को एक उत्सव के रूप में मनाएं। यह केवल एक वर्षगांठ नहीं बल्कि हमारी सामूहिक चेतना का उत्सव है। मुझे पूरा विश्वास है यह स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और हम सबके अंदर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा की ऊर्जा को ऐसे ही बनाए रखेगा। अंत में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व आर्मी नेवी एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के वीर जवानों सम्मानित पूर्व सैनिकों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए

0: हम संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी बनेंगे और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए विकसित भारत के निर्माण में अपना सार्थक योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत।
1: अभी आप स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का सैनिकों के नाम संदेश सुन रहे थे। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए वंदे मातरम के 150 वर्ष और देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान पर संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ अनुभा रोहतगी की विशेष बातचीत।
1: विवेक जी, हमारे 80वें स्वतंत्रता दिवस में अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो चुका है और ये राष्ट्रीय पर्व उसके जरिए मनाया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में नागरिकों में देशभक्ति की जो भावना जगाने के लिए और राष्ट्रीय एकता और भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने में हर घर तिरंगा अभियान ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: हर घर तिरंगा अभियान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये है कि ये भारत के सभी नागरिकों को मौका देता है कि वह अपनी देशभक्ति को भारत के तिरंगे के साथ खड़े होकर अभिव्यक्त कर पाएं। और इस अभिव्यक्ति का जो पूरा उत्सव है वो हर घर तिरंगा के रूप में हर वर्ष मनाया जा रहा है और इस वर्ष उसमें खास उत्साह है, क्योंकि इस बार हर घर तिरंगा के साथ जो वंदे मातरम के 150 वर्ष हुए हैं उसको भी हम साथ में मना रहे हैं। तो भारत के सभी नागरिक, सभी युवा, सभी लोग मिलके तिरंगे के साथ साथ वंदे मातरम का उत्सव भी मना रहे हैं और इस बार जो सेल्फीज अपलोड हो रही हैं उनके साथ साथ जो सर्टिफिकेट हर घर तिरंगा के पोर्टल से जाता है उसमें वंदे मातरम के लिरिक्स और वंदे मातरम का गायन भी जा रहा है और नागरिकों को ये भी सुविधा है कि वंदे मातरम का गायन करके भी, रिकॉर्ड करके भी वो उस पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। तो इस पर बहुत अच्छा हमें प्रतिसाद मिला है, जो नागरिक भाग ले रहे हैं और पहले 2 दिन में ही 3 करोड़ से ज्यादा जो भागीदारी हमारे पोर्टल पे इस कैंपेन में हो गई है और इस बार रिकॉर्ड कैंपेन रहेगा जो पिछले सभी 5 सालों में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उत्सव इस बार हर घर तिरंगा के कैंपेन में बनेगा।
1: आपने भी जैसा कहा कि इस साल हर घर तिरंगा अभियान जो है उसका खास महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित है। तो स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पहले लाल किले की प्राचीर से पहली बार वंदे मातरम गाया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई की और हमारी पहचान से जुड़े ये दो प्रतीक हैं। इन दोनों प्रतीकों का एक साथ आना, आप इसे कैसे देखते हैं?
2: देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। असल में वास्तविकता यह है कि इस बार तीनों प्रतीक साथ होंगे, भारत का तिरंगा, भारत का नेशनल एंथम जनगणमन और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तीनों को सेलिब्रेशन में एक साथ सम्मिलित किया जाएगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किला की प्राचीर पे आएंगे तो सबसे पहले वंदे मातरम का गायन होगा, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी झंडा वंदन करेंगे और झंडा वंदन के तुरंत बाद जब तिरंगा फहराया जाएगा तो नेशनल एंथम का गायन होगा। तो ये जो तीनों भारत के प्रतीक हैं, जो भारत की सॉवरेनिटी के, भारत के नागरिकों के स्वाभिमान के और भारत की स्वतंत्रता के और भारत के जो विश्व में जो भारत का गौरव है उसको स्थापित करने के जो तीनों प्रतीक हैं, तीनों प्रतीक एक साथ पहली बार इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में इकट्ठे मनाए जाएंगे।
1: संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम को गाने के लिए एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल अपलोड किया है। हम जानना चाहेंगे ये ट्यूटोरियल क्या है और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई?
2: वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसका विभाजन हो गया था। इस राष्ट्रीय गीत के सिर्फ 2 ही जो पहले पैरा थे उसका गायन देश भर में होता था और जो बाकी का राष्ट्रीय गीत था उसका गायन भारत में नहीं होता था। इस बार जब वंदे मातरम के 150 वर्ष हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का नेतृत्व किया कि हम वंदे मातरम का पूरा गायन करेंगे और उसका जो टूटा हुआ हिस्सा है उसका केवल गायन नहीं करेंगे, तो चूंकि पूरे वंदे मातरम का गायन होना है इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसके जो पूरे वंदे मातरम के लिरिक्स हैं और उसका गायन का स्वरूप है उसका सभी नागरिकों को पता हो, इसलिए उसका ट्यूटोरियल हमने इस पोर्टल पे रखा है और ये सुविधा दी है कि नागरिक अभ्यास कर सकें, उसके पूरे लिरिक्स को याद कर

0: सके और उसको अभ्यास कर सके वंदे मातरम का गीत का, और जिस सुर में और जिस संगीत में सही मायने में वंदे मातरम का गायन होना है उसको सीख के वो गायन करें, उसका गायन सार्वजनिक भी हो और उनका गायन जो है वो अपने स्तर पे भी करके उसको अपलोड पोर्टल पे करें।
1: राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भारत के नागरिकों और खासकर भारत के युवाओं में देशभक्ति की भावना को और कैसे गहरा कर सकता है?
0: देखिए, जो हर घर तिरंगा का कैंपेन है और वंदे मातरम का गायन है, उससे जो गर्व का अनुभव होता है और जो उससे सामाजिक सामंजस्य और सामाजिक एकता का अनुभव होता है और देश के प्रति और देश की जो अस्मिता है उसके प्रति जो गौरव की भावना होती है और भारत माता के प्रति जो सम्मान की भावना है, उससे नागरिकों में अपने देश की

0: सामंजस्य और सामाजिक एकता का अनुभव होता है और देश के प्रति और देश की जो अस्मिता है उसके प्रति जो गौरव की भावना होती है और भारत माता के प्रति जो सम्मान की भावना है, उससे नागरिकों में अपने देश की, अपने कौम की, अपने समाज की, अपने आप को आगे ले जाने की जो भावना उत्पन्न होती है, उस सब का प्रतीक वंदे मातरम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम का जो पूरा जो स्वरूप आया वो वंदे मातरम से आया, और वंदे मातरम ही भारत के जो तिरंगा है, जब झंडा भारत का बनना शुरू हुआ स्वतंत्र भारत का, उसमें भी वंदे मातरम का योगदान हुआ। असंख्य भारत के जो स्वतंत्र वीर हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, उनके लिए वंदे मातरम ही वो नारा था जिसके ऊपर उन्होंने अपनी जान को न्यौछावर किया। तो इसलिए वंदे मातरम एक पूरा स्वरूप है जो देश को गर्व प्रदान करता है। देश की स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को हम सादर याद करते हैं, और देश के भविष्य में और देश को आगे ले जाने के लिए जो भावना होनी चाहिए वो भावना हमें वंदे मातरम के गायन से आती है।
1: हम सभी ने प्रधानमंत्री मोदी का हालिया सोशल मीडिया पोस्ट देखा जिसमें उन्होंने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री का वीडियो नागरिकों को क्या संदेश देता है और इस अभियान को गति देने में प्रधानमंत्री की अपील कितनी महत्वपूर्ण है?
0: जो हर घर तिरंगा का अभियान है उसका नेतृत्व पूरे प्रारंभ से ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। उन्हीं के आह्वान से ये पूरी कैंपेन शुरू हुई है, और इस बार भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है पूरे देशवासियों को कि वो हर घर तिरंगा में बढ़ चढ़ कर भाग लें, उसका बहुत बड़ा जो रिस्पॉन्स है वो हमारे देश के नागरिक दे रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, इस बार के हर घर तिरंगा कैंपेन में जो पार्टिसिपेशन है वो पिछले बार से भी बहुत ज़्यादा है, बहुत उत्साहपूर्ण है, और साथ साथ वंदे मातरम का गायन भी हो रहा है, और वंदे मातरम का पूरा गायन हो रहा है, और उसका जो स्वरूप है, जो राष्ट्रीय प्रतीक है, उसमें कानूनी तौर पे जोड़ने का प्रावधान भी किया गया है। तो ये सारी चीजें भारत के गौरव को बढ़ाने वाली हैं, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना है उसमें देशवासियों का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाने वाली है।
1: हम क्योंकि नागरिकों के पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, तो इस अभियान को सफल बनाने में आप आम जनता की भूमिका को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
0: देखिए, ये तो जो अभियान है ये है ही भारत के आम लोगों का और देशवासियों का, उन्हीं की भूमिका है, उन्हीं का भागीदारी है जिससे ये अभियान सफल हो सकता है। और ये केवल अभियान नहीं है जो हम सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के दिन पे मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस के सप्ताह में मना रहे हैं। ये अभियान ऐसा है जो सतत चलने वाला है, जो भारतीयों की आत्मा और भारतीयों के जो कर्म है उनको डिटरमिन करने वाला है। इसलिए भारतीयता की भावना, भारत के ऊपर गर्व की भावना, अपने राष्ट्र के ऊपर सब कुछ न्यौछावर करने की भावना बनाने के लिए ये अभियान है। और ये जो विकसित भारत का हमारा संकल्प है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसको पूरा करने के लिए और उसकी एक मजबूत जो नींव है उसको स्थापित करने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, जिसमें सभी नागरिकों को, सभी देशवासियों को, युवा वर्ग को बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए।
1: ये तो हम सब जानते हैं कि ये अभियान जो है हर घर तिरंगा, ये नागरिकों को अपने घरों और कार्यस्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन बहुत से लोग अब भी राष्ट्रीय ध्वज को सही तरीके से फहराने के, उसको संभालने के नियम कानून नहीं जानते हैं। तो क्या संस्कृति मंत्रालय ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यानी कि भारत के ध्वज संहिता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कुछ खास अभियान चलाया है या कोई खास कदम उठाए हैं?
0: देखिए, अधिकार अपने घर पे झंडा फहराने का ये जो कॉलोनियल लॉ था और कॉलोनियल रूल्स थे उसमें नहीं था। ये स्वतंत्र भारत में जब इस बात पे चर्चा हुई कि हर भारतीय नागरिक को अपने घर पे और कार्यस्थल पे तिरंगा लहराने का अधिकार होना चाहिए, वो अधिकार मिला, और उस अधिकार मिलने के बाद अब सारे भारतीय इस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने घरों में, अपने कार्यस्थल में और अन्य स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर जो भारत के तिरंगा को लहराने में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि हम तिरंगे का पूरा सम्मान करें और फ्लैग कोड का पालन करें। इसके लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो

0: पोर्टल बनाया गया है, उसमें डूज एंड डोंट्स बहुत अच्छे से दिए गए हैं और ये बताया गया है कि क्या फ्लैग कोड के रूल्स हैं और किस तरह से हम तिरंगे को ससम्मान हम अच्छे से फहरा सकते हैं, और फहराने के बाद जो उसका सम्मान होना चाहिए जब हम उसको उतारें वो कैसा होना चाहिए, जो तिरंगा झंडा है उसका स्वरूप, उसका साइज, जिस मटेरियल पे तिरंगा है वो कैसा मटेरियल होना चाहिए, ये सारी चीजें हमने डूज एंड डोंट्स में दी हैं और हमेशा ये प्रयास रहा है कि कैंपेन के साथ साथ हम सम्मानपूर्वक अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं और सम्मानपूर्वक उसको रखें, ये सारे प्रावधान भी हमने अपने स्तर पर करने का प्रयास किया है।
1: ये अभियान अभी 17 अगस्त तक चलेगा, तो हम जानना चाहेंगे कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा वो क्या विभिन्न कार्यक्रम हैं जो इस पूरे सप्ताह में आप लोगों ने आयोजित किए।
0: ये केवल संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ही आयोजन नहीं कर रहा, भारत सरकार के सभी विभाग और देश के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज भी बहुत सारे आयोजन कर रहे हैं, तो जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, स्कूलों में कॉलेजेस में कार्यक्रम हो रहे हैं, जो हमारे CAPF और आर्मी हैं उनके बैंड्स का प्रदर्शन पूरे देश भर के नगरों में और गांवों में हो रहा है, इसके अलावा जो हमारी पंचायतें हैं नगर पालिकाएं हैं उनमें कार्यक्रम हो रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी तिरंगा कॉन्सर्ट का आयोजन होगा 17 तारीख को, बाइक रैली का आयोजन हुआ जो संस्कृति मंत्रालय ने किया, इसके अलावा जो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे है उसका आयोजन हो रहा है, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि पूरे भारतवर्ष को ये याद रहे कि जो हमारे ऊपर विभीषिका आई, हमारा अब ये कर्तव्य है कि ऐसी विभीषिका पुनः ना हो, उसके ऊपर हम काम करें, और ये पूरे भारत का उत्सव है जिसमें सभी प्राइवेट संस्थाएं, सभी जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, उनको सम्मिलित किया गया है और विभिन्न प्रकार के आयोजन हर स्तर पर हो रहे हैं।
1: जैसा भी आपने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के जो समारोह है उसमें विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस यानी कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो 14 अगस्त को यानी कि आज मनाया जा रहा है, तो हर भारतीय और खासकर युवा पीढ़ी के लिए इस दिन को ध्यान में रखना, इस दिन को याद करना क्यों महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, जब भारत की स्वतंत्रता आई उसके साथ साथ ये विभीषिका भी आई जिसमें भारत को धर्म के आधार पर बांटा गया, और जब धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ तो उसका नतीजा ये हुआ कि लाखों लोग उसमें मारे गए और लाखों लोग डिस्प्लेस हुए। ये समाज के लिए एक सबक है और देश के लिए एक सबक है कि एकता और सामाजिक सामंजस्य इस देश को आगे बढ़ा सकता है, और ऐसा सबक हमें सीख लेना चाहिए कि जब देश के विभाजन को हमने होने दिया और इस प्रकार की भावनाओं को विभाजित हमने होने दिया और ऐसी व्यवस्था में हम रहे कि हमारे देश को विभाजन की विभीषिका का दंश सहना पड़ा, अब हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि ऐसा दंश पुनः ना हो और हमने जो विभीषिका सही ऐसा मौका दोबारा ना आए, इसलिए सारे समाज को सारे देशवासियों को अपने आप को देश के लिए समर्पित करके, भारत के लिए समर्पित करके, भारत की एकता अखंडता और भारत को विकसित बनाने में अपने आप को लगा के ही हम ये सबक सीख सकते हैं कि आगे हम ऐसी कभी भी इस प्रकार की दुर्घटना अपने देश में नहीं होने देंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस अवसर पर यानी कि विभीषिका स्मृति दिवस पर लोगों को श्रद्धांजलि दी और इस श्रद्धांजलि में उन्होंने ये भी कहा, मैं उनके शब्द दोहरा रही हूं, इससे उबरते हुए लोगों ने शून्य से अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा किया, मुश्किलों को कामयाबी में बदला और हमारे देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनकी जिंदगी का सफर हमें इंसानी जज्बे की ताकत की याद दिलाता है। विवेक जी, ऐसे समय में जब भारत का ध्येय है 2047 तक विकसित भारत बनना, प्रधानमंत्री का ये संदेश कितना प्रासंगिक है जो उन्होंने इस विभीषिका से गुजरे हुए लोगों की जज्बे की जब बात करते हैं, वो कितना प्रासंगिक है?
0: वो प्रासंगिक इसलिए है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस प्रकार की कठिनाई और जिस प्रकार की समस्या जो लोग विस्थापित होकर आए उन्होंने सही, और फिर भी उन्होंने तरक्की का रास्ता अपनाया और भारत के विकास में वो योगदान उन्होंने दिया और दे रहे हैं, उसी प्रकार पूरे समाज को मेहनत से और अपनी भावना है तरक्की की उससे आगे बढ़ने से हम भारत को विकसित भारत की तरफ ले जा सकते हैं। तो हमारे लिए इंस्पिरेशन होना चाहिए कि जो कठिनाइयां हैं वो हमें रोक नहीं सकते।

0: थी, कठिनाइयां हमारे लिए प्रेरणा बनेंगी और हम उन कठिनाइयों को, उन चुनौतियों को पार करके अपने भारत को, अपने देश को विकसित बना पाए, इस हेतु अगर हम कार्य करेंगे तो हम सफल हो सकते हैं।
1: हर घर तिरंगा अभियान 2026 के अंतर्गत एक प्रमुख पहल हुई है सूर्य पथ तिरंगा, हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताएं।
0: देखिए, भारत का तिरंगा पूरे विश्व भर में 15 अगस्त को फहराया जाएगा। भारत के सभी जो एम्बेसीज हैं, मिशंस हैं पूरे विश्व में, और जो हमारे भारतीय लोग जो अलग अलग देशों में रहते हैं, वो सब भारत का तिरंगा फहराएंगे। पर ये तिरंगा जब फहराया जाएगा तो समय का अंतर है, जब सूर्य का उदय ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा, जो पूर्वी हेमिस्फीयर है क्योंकि ईस्ट से सूर्य का उदय होता है, उस समय भारत में अभी अंधेरा होगा। तो जो सूर्य पथ तिरंगा है वो सूर्य के पथ के साथ साथ तिरंगा के फहराने को हम मनाएंगे और उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो पूरा ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर से जब तिरंगा फहराया जाएगा उसका सम्मान होगा, और जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता जाएगा वैसे वैसे तिरंगा भी अलग अलग विश्व के भागों में अपना स्वरूप लेता जाएगा और फहराता जाएगा, और ऐसे चलता चलता वो भारत में आएगा और फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएगा। उस पूरी प्रक्रिया को सूर्य पथ तिरंगा का नाम दिया गया है। भारत के तिरंगे को जो हम सम्मान देते हैं स्वतंत्रता दिवस के दिन, और जो हम सैल्यूट करते हैं, वो सैल्यूट भारत के तिरंगे को वो पूरे विश्व भर में सूर्य के पथ के साथ साथ होता हुआ पूरे विश्व को दिखेगा और बताया जाएगा।
1: सूर्य पथ तिरंगा के अलावा भी क्या, 2022 में जब ये हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ था तो तब से अब तक, इस बार जैसे हमने बात अभी करी कि सूर्य पथ तिरंगा एक नई पहल है, उसके अलावा क्या बदलाव हुए इन 5 सालों में और उनका कितना असर आपको दिखाई दे रहा है?
0: जब हर घर तिरंगा अभियान चला था तो तब ये चिंता होती थी कि हमें उतने तिरंगे झंडे मिल पाएंगे जो हम अपने नागरिकों को दे पाए, तो तिरंगे का प्रोक्योरमेंट और तिरंगे की सप्लाई चेन है उसको बनाने का चैलेंज था। पर आप देखें कि 5 साल की कैंपेन के बाद अब वो चैलेंज खत्म हो गया है। हर नागरिक अपना तिरंगा खुद ढूंढ रहा है, ले रहा है और अपना रख रहा है और उसको फहरा रहा है। दूसरा, पहले जो स्टेक होल्डर्स थे, जो पूरा कम्युनिकेशन का नेटवर्क था वो बनाया गया, अब वो नेटवर्क पूरा कंप्लीट बन गया है। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं वैसे ही पूरा देश एक्टिवेट हो जाता है। सभी संस्थाएं, सभी वर्ग के लोग, सभी एसोसिएशंस, सभी राज्य, सभी सरकारें, सभी नगर पालिकाएं, सभी पंचायतें खूब धूमधाम से हर घर तिरंगा में सम्मिलित हो जाते हैं। तीसरा, जो सबसे बड़ा अंतर आया है कि जो भावना है तिरंगे के प्रति और जो सम्मान है वो एकदम से उसमें बहुत विस्तार हुआ है। तो हर छोटा बच्चे से लेके सबसे बड़ी उम्र के नागरिक भी तिरंगे को लेके सम्मान से इन दिनों में हर घर तिरंगा कैंपेन में सम्मिलित होते हैं। फिर हर वर्ष हर घर तिरंगा कैंपेन में कुछ ना कुछ नया जुड़ता गया, जैसे इस बार वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ को जोड़ा गया। तो इस तरह से ये जो कैंपेन है इसका विस्तार होता जा रहा है और आने वाले वर्षों में और अधिक विस्तार इस कैंपेन का होगा, जो भारतीयों को उनकी जो देश के प्रति उनके कर्तव्य हैं और जो देशभक्ति के प्रति जो सम्मान है उसको हम आगे आने वाले समय और अच्छे से बढ़ाते रहेंगे। और ये ऐसा कैंपेन है जो भारत को विकसित भारत बनाने में एक बड़ा योगदान कर पाएगा।
1: आपने बताया कि ये जो कैंपेन हर घर तिरंगा जो पोर्टल पे, संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पे जो इसके प्रतिक्रिया आ रही है बहुत ही उत्साहवर्धक है, उसमें कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं, कुछ ऐसी रिएक्शंस जो आप हमसे साझा करने चाहें जो बहुत अलग हैं या जिनसे बहुत एक उत्साह बढ़ता है?
0: विभिन्न प्रकार के आयोजन जो अलग अलग देश के हिस्सों में हो रहे हैं और उनको जो अपलोड वहाँ के नागरिक और वहाँ के एसोसिएशंस कर रही हैं वो बहुत प्रेरणादायी आयोजन हो रहे हैं। मैंने आज देखा भोपाल में लेक के ऊपर एक बहुत अच्छी उन्होंने संरचना बना के हर घर तिरंगा को सेलिब्रेट किया। लद्दाख में जो हमारे नागरिक हैं उन्होंने बहुत सुदूर पहाड़ के एक क्षेत्र में बहुत सुंदर तिरंगा का स्वरूप बना के उसको सेलिब्रेट किया, उसको अपलोड किया। दक्षिण में जो हमारे नागरिक हैं बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने हर घर तिरंगा कैंपेन को आगे बढ़ाया। फिर अभी पोंगल का उत्सव हुआ, अभी नवरोज आ रहा है, तो उसके साथ भी जो हमारे ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स हैं उनके साथ भी हर घर तिरंगा की रंगोलियां बन रही हैं और उनको साथ में जोड़ के हमारे नागरिक हर घर तिरंगा कैंपेन को भी साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो विभिन्न तरीके से, विभिन्न प्रकार से जो भारत के नागरिक हैं वो

0: घर तिरंगा कैंपेन में सम्मिलित हो रहे हैं और बहुत सारी प्रेरणादायी तस्वीरें अपलोड हो रही हैं, स्टोरीज अपलोड हो रही हैं और बहुत उत्साह से हमारे नागरिक भाग ले रहे हैं। मेरा आह्वान है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व हमें प्रदान किया इस कैंपेन में सम्मिलित होने के लिए, उसमें सभी भारत के नागरिक बहुत अच्छे से और बढ़ चढ़कर और सभी वर्ग के लोग इसमें इसी तरह से और जोर शोर से सम्मिलित होंगे और इस बार हम पिछले 5 साल का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा भागीदारी इस साल के हर घर तिरंगा कैंपेन में हुई है।
1: इस अभियान में युवा वर्ग को साथ जोड़ने के लिए, उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में संख्या में शामिल करने के लिए, खासकर स्कूल और कॉलेजेस के लिए क्या सरकार ने कोई खास कदम उठाए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग इसमें शामिल हो, बच्चे शामिल हों?
0: मुझे जो लगता है कि सरकार को बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ी इस साल। ये इतना अच्छा युवा वर्ग का इसमें उत्साह है कि जगह जगह स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सार्वजनिक स्थानों में युवा स्वतः ही इस कैंपेन से जुड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा रिस्पांस युवा वर्ग का हर घर तिरंगा कैंपेन में है। तो मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा कोई आउटवर्ड प्रयास करने की आवश्यकता है। एक बार आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उस आह्वान का ही इम्पैक्ट है कि युवा वर्ग बहुत अच्छे से इस कैंपेन में सम्मिलित हो रहा है।
1: हम जैसे बात कर रहे थे कि हमारा ध्येय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को एक ध्येय, एक मिशन दिया है कि 2047 तक विकसित भारत बनना है। ऐसे समय में हम जब भारत की स्वतंत्रता दिवस के हम जश्न मना रहे हैं, कितना जरूरी है कि हम अपना अतीत ना भूलें, हम अपने स्वतंत्रता संग्राम, उस बंटवारे के दर्द को और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से जो एक राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा होती है लोगों के अंदर, इस भावना को साथ लेकर आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर आगे बढ़ें।
0: ये जितना भी पूरा कैंपेन है और जो भावना जागृत हो रही है, उसका जो नेचुरल जो रिजल्ट है वो यही है कि हमें आत्मविश्वास प्राप्त हो रहा है, हमें आत्मविश्वास और मिलेगा। हमें जो देशभक्ति की भावना है, जो एकत्व की भावना है, एकता की भावना है, इकट्ठे मिलके आगे बढ़ने की भावना है, वो इससे सुदृढ़ हो रही है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब हम अपने देश में और अपने आप में हम आत्मविश्वासी होते हैं तो हमें जो आत्मनिर्भरता है उसकी भावना भी स्वयं ही आती है। क्योंकि कई बार ये अगर भावना हो कि हमारे यहाँ जो प्रोड्यूस होता है, हमारे यहाँ जो है वो विदेश में कोई चीज है उससे इन्फीरियर क्वालिटी का है या दोयम दर्जे का है, जब ये भावना आती है तो आत्मनिर्भरता की भावना कमजोर होती है। पर जब हमें आत्मविश्वास आता है और अपने देश पे गर्व होता है, अपने देशवासियों पे गर्व होता है और अपने देश में बनने वाले उत्पादों पे गर्व होता है तो आत्मनिर्भरता अपने आप आती है। उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है और उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। तो आपकी बात सही है कि जो ये कैंपेन है, वो चाहे हम वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ मना रहे हों या हम हर घर तिरंगा की कैंपेन में हिस्सा ले रहे हों, अपनी सेल्फी अपलोड कर रहे हों तिरंगे के साथ या वंदे मातरम को गा के हम अपलोड कर रहे हों, इन सभी जो एक्टिविटीज हैं उनका रिजल्ट यही है कि हम भारत के निर्माण के प्रति अपने आप को पुनः समर्पित करने की भावना से काम कर रहे हैं। और इस भावना से अगर हम काम करते हैं तो आत्मनिर्भरता, भारत का विकास और इसके साथ विकसित भारत बनने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है उसकी पूर्ति, ये सभी उद्देश्य हमारे सफलता की ओर बढ़ते हैं।
1: हमारे स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़े ये तीनों कार्यक्रम, चाहे वो हर घर तिरंगा अभियान हो, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का समारोह हो या फिर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हो, भारत के गौरवशाली अतीत को एकजुट, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से जीवंत भविष्य की उसकी आकांक्षाओं से कैसे जोड़ते हैं ये तीनों?
0: देखिए, जो ये तीन चीजें इकट्ठी हुई हैं, तिरंगा हमारे देश का सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है, वंदे मातरम हमारा न केवल भविष्य है बल्कि वो हमारे अतीत की धरोहर भी है और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज भी है। और जो पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे है, जो हम विभाजन की विभीषिका को याद करते हैं, वो हम अपने आप को सजग करते हैं, वो अपने आप को सावधान करते हैं कि जो गलती पूर्व में हुई, जो गलती उस समय हुई, वो गलती दोबारा ना हो और समाज का ऐसा निर्माण हो कि उसको दोबारा कोई ना तोड़ पाए, उस भावना को वो सुदृढ़ करती हैं। तीनों ही जो चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और तीनों ही जो हर घर तिरंगा के इस बार के उत्सव में सम्मिलित हैं, वो तीनों ही एक ऐसी दिशा हमारे नागरिकों को देती हैं जो देश की एकता, अखंडता, देश का सम्मान और देश के स्वाभिमान के लिए काम करने के लिए सभी को प्रेरित भी करती हैं।
1: विवेक जी, आखिरी सवाल।

0: भारत का युवा, जो भारत का भविष्य है और जो विकसित भारत के इस मिशन को पाने में जिनकी बहुत अहम भूमिका होगी, इस अवसर पर, भारत की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, क्या आप उनको कोई संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही संदेश दिया है उसी को दोहराना चाहूंगा कि जो भारत के युवा हैं वो अपने आप को ये ना माने कि उनको सिर्फ आज का भारत देखना है, वो भारत के भविष्य के निर्माता हैं और भारत की भविष्य की धरोहर के सुरक्षा रखने के भी उनका कर्तव्य है। वो अपनी संस्कृति से सीख लें, जो विरासत में हमने पाया है, जो हमारी बहुत ही समृद्ध विरासत है, उसको अपना के अपने आगे बढ़ने का रास्ता अपनाएं और ऐसा रास्ता अपनाएं जिसमें जो भारत को विश्व के शीर्ष पे हम ले जा सकें उसकी तरफ वो अपना कंट्रीब्यूशन करें। और मैं ये भी मानता हूं कि जो भी कार्य हम अपने लिए चुन लेते हैं उसी कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करके आप समाज में अग्रणी बन सकते हैं। कोई भी एक प्रोफेशन या कोई भी एक कार्य किसी दूसरे प्रोफेशन या दूसरे कार्य से बेहतर नहीं होता। तो जिसको आपने चयन किया, अगर आपने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का संकल्प लिया, अगर आपने हेल्थ के क्षेत्र में काम करने का संकल्प लिया, अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में काम करने का संकल्प लिया, अगर आपने समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने का संकल्प लिया, अगर आपने किसी और प्रोफेशन को आपने अपना प्रोफेशन बनाया, तो किसी भी प्रोफेशन में, आर्ट में, कल्चर में, कॉमर्स में, साइंस में, या जो भी प्रोफेशन आप चुनते हैं, हर एक प्रोफेशन में शीर्ष पे जाने का अवसर रहता है। अगर आप मेहनत करेंगे, शीर्ष पे जाएंगे, तो आपको रिकग्निशन मिलेगा। कोई एक प्रोफेशन या एक क्षेत्र किसी दूसरे क्षेत्र से बेहतर नहीं है। हर एक क्षेत्र को अपना के, किसी भी क्षेत्र को जो आपने चुन लिया उसमें आप मेहनत करेंगे तो शीर्ष पे पहुंच सकते हैं और देश की तरक्की और देश को विकसित बनाने में आप योगदान कर सकते हैं। इसलिए पूरे मन से देश के सम्मान को अपने मन में रखते हुए, देशभक्ति को अपने मन में रखते हुए, तिरंगे के सम्मान को आगे बढ़ाते हुए आप मेहनत करें, जो आपके विचार हैं उसमें आप सकारात्मकता रखें और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम करते रहें और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम करते रहें।
0: विवेक जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम।

0: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, हमेशा की तरह मैं रागिनी आप सभी किसान भाइयों और बहनों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस कृषि जगत कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसे कि आप जानते ही हो कि कार्यक्रम की शुरुआत एक नेक विचार से किया जाता है और नेक विचार है, जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। और जीवन में किसी पर दया करोगे तो वो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। तो साथियों, हमें हमेशा अच्छे कार्य करते रहना है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। और आज का प्रश्न है, पशु आहार में दाने और चारे का क्या अनुपात होना चाहिए? किसान साथियों, इस प्रश्न को फिर एक बार दोहराते हैं, पशु आहार में दाने और चारे का क्या अनुपात होना चाहिए? किसान साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप सोचते रहिए, इसका जवाब हम कार्यक्रम के अंत से पहले जरूर बताएंगे।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी।

0: पहली वाली बात कहाँ,
1: पर हम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं और चखम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: किसान साथियों, मसाले हमारी खेती की वे नगदी फसलें हैं जिन्हें कम जमीन में सोने की खेती कहा जा सकता है। या केवल भोजन का स्वाद और खुशबू नहीं बढ़ाते बल्कि किसानों की किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। आइए सुनते हैं मसालों का प्रसंस्करण व संवर्धन के संदर्भ में डॉक्टर एस स्वैन से की गई ये बातचीत।
4: किसान भाइयों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे मसालों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के बारे में। हमारे द्वीपों में मसालों की खेती बहुत सारे किसान भाई करते हैं और इनके लिए ये जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ कार्यक्रम में है डॉक्टर सच्चिदानंद स्वाइन। डॉक्टर स्वाइन, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
5: नमस्कार
4: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि हमारे इन द्वीपों में जहाँ तक मसालों का सवाल है तो इसका उत्पादन, इसके अंतर्गत जमीन वगैरह जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से क्या कहते हैं ये आंकड़े।
5: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखा जाए कि टोटल 3160 मीट्रिक टन मसाला उत्पादन होता है, तो जो इतना मसाला आपको 1660 हेक्टर एरिया में होता है। बहुत सारा मसाला उत्पाद होता है आपका नॉर्थ एंड मिडल अंडमान। और जो मसाला का बात होता है उसमें जनरली जो मसाला नाम होता है कि ब्लैक पेपर, चिलीज, जिंजर, टर्मेरिक, नटमेग, क्लोव्स एंड दालचीनी, सिनामन। तो आउट ऑफ 7 स्पाइसेस है जो मसाला है, ज़्यादा मसाला आपका होता है जिंजर, तो 1910 मीट्रिक टन मसाला अदरक होता है। पड़ोसन वाइज देखेंगे तो फर्स्ट आता है जिंजर, देन आपका आता है चिलीज, टर्मरिक,
4: मिर्च, उसके बाद हल्दी,
5: देन लौंग, क्लोव्स बुलाता है, देन दालचीनी, सिनामन, देन गुलमर्च, ब्लैक पेपर, देन लास्ट आता है आपका नटमेग।
4: अच्छा,
5: लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि तो टोटल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोई स्पेशलाइज स्पाइस और कार्ड नहीं है। जैसे आपका प्लांटेशन क्रॉप्स एग्जैक्टली, जैसे आपका फूड क्रॉप्स, जैसे मलनाडु होता है ना ओनली फॉर एप्पल प्लांटेशन, ओनली फॉर ऑरेंज का, ओनली फॉर ग्रेप्स का, जो महाराष्ट्र में होता है। यहाँ इतना नहीं कि एग्जैक्टली जो एरिया है जिसमें एग्जैक्ट होता है ओनली लौंग का होता है, ओनली होता है, सब मिक्स ही।
4: अच्छा, मतलब व्यावसायिक तौर पर कमर्शियल तरीके,
5: कमर्शियल तरीके होता नहीं,
4: होता नहीं है।
5: और कमर्शियल तरीके से वो करेंगे तो उसमें क्या होता है ना, लेबर चाहिए, तो स्पेशल ऑर्चर्ड चाहिए, और इनका जो और भी एग्रो टेक्निक जो होता है, प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस होता है, बाकी इंसेक्ट पेस्ट अटैक जो होता है, इसका जो होल टेक्निक जो होता है ना उसमें अवेलेबल नहीं है।
4: डॉक्टर स्वाइन, एक बात और ये होता है कि जो अंडमान में जो मसाले प्रोड्यूस होते हैं उसकी पॉपुलैरिटी या जो प्रचलन हम देखें तो यहाँ पे मेनलैंड से जो आते हैं उसके मुकाबले थोड़ा सा कम कभी कभी पाते हैं क्वालिटी, ऐसा क्यों होता है, क्या है इसका?
5: अच्छा क्वेश्चन है। जो उस मसाला के बारे में बात कर रहे हैं, वन बाय वन शुरू करेंगे। पहले करेंगे सिनामन से, दालचीनी का जो होता है हार्वेस्टिंग टाइम होता है, जनरली होता है जुलाई अगस्त में होता है हार्वेस्टिंग, लेकिन अंडमान में क्लाइमेट जैसा होता है तो जुलाई अगस्त में हेवी रेनफॉल होता है, एवरीडे आपको बारिश मिलता है, तो उस टाइम हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि सिनामन जो होता है इसको बार्क होता है, छिलका उसको निकाल के सुखाते हैं, तो जहाँ पे आपका इतना बारिश होता है तो छिलका निकालने के बाद कहाँ सुखाएंगे, और उसको कैसे सुखाएंगे, उनके पास कोई मैकेनिकल ड्राइंग फैसिलिटी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ सन का ऊपर डिपेंड करते हैं, धूप आएगा तो सूखेगा, तो लोग वहाँ पर हार्वेस्टिंग कर दिया, छिलका निकाल दिया, नहीं सूखेगा तो सूखेगा नहीं, क्योंकि आप जुलाई अगस्त सितंबर में कम से कम 30-40% बारिश हो जाता है उसमें, नहीं सूखेगा, तो जो हल्का जो बीच में सनलाइट मिलता है वो सूखाएंगे ठीक से नहीं सूखेगा, जहाँ पे 4 दिन में सूखना चाहिए वहाँ पे 10 दिन लगे सूखने के लिए, तो 10 दिन में सूखेगा तो उसमें क्या होगा ना, उसमें फंगस, स्पोर्स, माइक्रोग्रेजम अटैक हो जाएगा उसके ऊपर, नमी रहता है, मॉइस्चर रहता है, पानी ठीक से नहीं जाएगा, तो उसमें क्या होगा ना, उसमें वो क्या माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो जाएगा, तो नहीं सूखेगा, खराब हो जाएगा
4: क्वालिटी,
5: क्वालिटी पूरा खराब हो जाता है। सेकंड थिंग, लोग फार्मर्स लोग क्या करते हैं कि इसको जब हार्वेस्टिंग करते हैं क्यों करते हैं, ताकि ज्यादा धूप होता है मिलता है, जो हार्वेस्ट करते हैं ना, अभी क्या होता है ना, जो ट्री का जो सिनामन का पेड़ का जो ट्रंक होता है ना वो अभी ऑलरेडी सूख जाता, थोड़ा सूख जाता है, अगर मोटा मोटा बार्क नहीं मिलता, अभी देखिए धीरे धीरे बारिश कम होता आता है ना, तो ट्री ट्रंक वो भी सूख जाता है धीरे धीरे, तो आपको इतना मोटा मोटा आपको बार्क नहीं मिलता है, तो बार्क इटसेल्फ जब पतला मिलता है, इसको सुखाएंगे तो और पतला हो जाएगा, इसलिए अंडमान का स्पेसिस पॉपुलर नहीं है, क्योंकि हार्वेस्टिंग टाइम ठीक होने पाता,

0: ठीक से
1: ठीक समय में जब करना है उस समय किसान कर नहीं
0: कर
1: पाते
0: नहीं
1: हैं, जब
0: पाए,
1: देर होता है तो उसकी क्वालिटी
0: क्वालिटी
1: अपने
0: खराब
1: आप
0: हो जाते
1: से।
0: हैं। और सेकेंड थिंग, उसको जो सुखाते हैं ना धूप में, ठीक है, अभी भी सुखाएंगे, अभी भी टाइम नहीं कि एग्जैक्टली आपको 10 दिन तक 15 दिन तक बारिश हो, नहीं हो पाएगा, जरूर नहीं है। अच्छा, सडन रेनफॉल होता है, और मेन फैक्टर होता है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है आपका ड्राइंग डेट कम हो जाता है, जहाँ पर सूखना चाहिए आपको 2 दिन का, 2 दिन बदला पड़ जाता है 5-6 दिन, और भी खराब हो जाता है। और ठीक से सूखने बाद भी और भी प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम पैकेजिंग का। कोई भी चीज़
1: अच्छा
0: को आपको ठीक से पैकेजिंग नहीं करेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो खुला रहता है ऑटोमेटिक, और मॉइस्चर फिर वो मॉइस्चर बाहर से ले लेता है, तो वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है। तो ठीक से उसी हिसाब से आपका जो पैकेजिंग मटेरियल मिलता है, पॉलीप्रोपाइलीन मटेरियल और पॉलीथीन रोल्ड LDPE HDPE, उसे पैकिंग करेंगे, उसको क्वालिटी लिखेंगे, क्वालिटी का असेसमेंट करेंगे, ताकि अंडामान स्पाइसेस सुपर हो पाएगा। ये तो
1: बिल्कुल,
0: बात हो गया सिनेमन का,
1: दालचीनी की।
0: दालचीन का। सेकेंड होता है आपका जो लौंग का, क्लोव्स का, नटमेग का, और चिलीज। चिलीज ज़्यादा प्रॉब्लम होता है नहीं, क्योंकि चिलीज का जितना प्रोडक्शन होता है यह हम कंज्यूम हो जाता है, ज़रूर
1: और
0: नहीं
1: ग्रीन
0: है,
1: चिलीज के रूप में ही हो जाता
0: हो
1: है
0: जाता है,
1: काली
0: इतना
1: मिर्च के।
0: खराब होता नहीं है। और गोलमिर्च का, तो गोलमिर्च का सेम प्रॉब्लम। तो गोलमिर्च का जो छोटा जो उसको बोलते हैं बेरी, क्योंकि बॉन्च में आता है, बेरी बुलाता है। और गोलमिर्च का डिफरेंट टाइप होता है, इसका व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, फ्रोजन पेपर होता है। तो इसको जैसे मान लीजिए आपको ग्रीन पेपर जो होता है पेड़ में होता है, इसको लेके आपको सुखाएंगे ना, तो सुखाएंगे ठीक से, नहीं सुखेगा तो खराब हो जाएगा, पूरा फंगस आ जाता है अंदर, पूरा पर सड़ जाता जैसे हो जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, जहाँ तक प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन का सवाल है, तो आप लोग किसानों को क्या सजेशन देते हैं कि किस तरह से करें, ताकि जैसे आपने कहा कि वैल्यू भी ज़्यादा मिले, क्वालिटी भी थोड़ा अच्छा मिले, तो यहाँ का जो कंडीशन है, यहाँ की जो परिस्थिति है, तो उसमें कैसे आप लोग वैल्यू एडिशन के लिए कैसे उनको एनकरेज करते हैं?
0: फर्स्ट एक ड्राइंग,
1: ड्राइंग, जी
0: इसका
1: हाँ,
0: जो
1: सुखाने का।
0: फुरकान का प्रॉब्लम होता है। इनिशियली कोई भी स्पाइसेस मसाला को इसको हार्वेस्टिंग करेंगे, उसके बाद इसको तो क्लीनिंग करना है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी आ जाता है, स्मॉल लीफ आ जाता है, ग्रेडिंग करना है साइज हिसाब से हुए है। तो सिनेमन के तो ग्रेडिंग नहीं चाहिए, लेकिन ग्रेडिंग चाहिए आपको क्लोव्स में, लॉन्ग में, लॉन्ग
1: लॉन्ग
0: में
1: में,
0: और गुलमर्च में,
1: जी
0: इसका साइज छोटा बड़ा दाना होता है। तो क्लीन करने के बाद इसको क्या करेंगे, सुखाएंगे, क्योंकि सुखाने के टाइम में क्या होता है कि मॉइस्चर बाहर को जाना ही चाहिए। तो मान लीजिए इसमें 80% मॉइस्चर रहता है, इसको जो सुखाते हैं जनरली, आप पहले बताया कि धूप में जब सनलाइट ठीक नहीं होता है कंटिन्यूसली सूखता नहीं है, क्योंकि फंगस अटा हो जाता है। तो मेन प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है,
1: जी
0: ड्राइंग की प्रॉब्लम। तो ड्राइंग के लिए मैकेनिकल ड्राइंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और आप ग्रेडिंग करने के लिए कि मिलता है ग्रेडर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेडर मिलता है, और एस्पिरेटर मिलता है। तो एक साथ काम कॉमन क्या करता है, तो आपको ग्रेडिंग कर देगा, उसमें जो छोटा मोटा लीप आ जाता है और कुछ स्टोन आ जाता है, पीबल आ जाता है ना उसमें, तो उसमें वो भी
1: निकल
0: सेपरेट करने
1: जाता
0: का, ताकि आपको पूरा क्लीन मिलेगा। एक बार ड्राई हो गया, ड्राई होने के बाद इसको पैकेजिंग करना है। पैकेजिंग के साइज हिसाब से मान लीजिए आपको 250 ग्राम मसाला पैकिंग करना है, कि 500 ग्राम, इवन 100 ग्राम भी पॉसिबल है। तो पैकेजिंग मटेरियल मिलता है LDPE, रोल्ड डेंसिल पॉलीथिलीन, हाई डेंसिल पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपाइलीन। तो इसका टेस्ट करना जरूरी है, जो क्योंकि जो पैकेजिंग मटेरियल क्या करता है, बैरियर करता है, बाहर साइड जो एयर होता है और ऑक्सीजन, रेन वाटर अंदर कभी नहीं आएगा,
1: जी
0: पूरा
1: जी
0: प्रूफ होता है। जो प्रूफिंग जो बात होता है, जो टेस्ट के, वो डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर। जो टेस्टिंग फैसिलिटी है जो कंपनी बनाता है, जो बाहर मिलता है, मिलना नहीं मिलता है, वो तो ऑलरेडी वहाँ पे एवरीथिंग लिखा जाता है, कि इसका वाटर वेपर परमेबिलिटी कितना है और कितना इसका टेंसाइल स्ट्रेस कितना है, वो लिखा जाता है। तो वो दिखा जाएगा, तो वो वाला जो पैकेजिंग मटेरियल जो मिलता है यहाँ भी काम करेगा, लेकिन उनका थोड़ा टेस्टिंग जरूरी है। पैकिंग करने के बाद उसको लेबलिंग चाहिए, क्योंकि जो पैकिंग करेंगे लेबलिंग चाहिए, जैसे अंडामान स्पाइसेस का और 100 ग्राम स्पाइस ऑफ सिनेमन, और पैकेजिंग डेट, एवरीथिंग लेबलिंग होना चाहिए। पैकेजिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे और सील भी करेंगे। ऐसा नहीं कि उसको रबर टेप कर दिया और सील कर दिया, कोई नहीं लेगा। जैसे जनरल पैकिंग होता है, पैकेजिंग मशीन अवेलेबल है, स्मॉल पैकेजिंग मशीन, हीट सीलिंग मशीन, ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा फार्मर्स लोगों को। पैकेजिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे और देंगे।
1: तो ये सारी बातें उनको मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब आपने बड़े अच्छा से बताया कि मेनली ड्राइंग है, और उसके बाद उसको क्लीनिंग है, ग्रेडिंग है, प्रॉपर पैकेजिंग है, और उसके बाद अगर लेबलिंग भी ठीक हो तो उनका जो दाम है, जो चीज़ का जो अपने आप से उसका वैल्यू बढ़ जाता है, एक अट्रैक्शन भी आ जाता है, और इससे मतलब मेरे ख्याल से जो स्पेशली जो स्पाइस कल्टिवेटर्स हैं उनको फ़ायदा होगा। तो डॉक्टर स्वाइन, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जब अगर मसालों से अच्छा फ़ायदा उठाना है तो प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन, और आपने जैसे कहा कि पैकेजिंग, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और इन पर किसान अगर ध्यान दें तो वो अपने उत्पादन से ज़्यादा फायदा कमा सकेंगे, उनको ज़्यादा पैसा मिल सकता है। तो आज आप कार्यक्रम में आए, इतनी बातें आपसे हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू, धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आप मसालों व प्रसंस्करण व संवर्धन के विषय में डॉक्टर एस स्वैन से की गई ये बातचीत सुन रहे थे।
3: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा

0: अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आइए साथियों, सुनते हैं ये गीत।

0: किसान साथियों, अभी आपने एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना।
1: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
0: भाइयों, अब एक नजर डाल लेते हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए मौसम के अनुमानों पर।
2: साथियों, अगले दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रुक रुक के बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तापमान लगभग 27 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। 12 से 16 अगस्त के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने तथा रुक रुक कर बारिश की संभावना को देखते हुए किसानों को जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी जाती है। विशेषकर निचले खेतों और सब्जी की फसलों में पानी जमा न होने दें। बारिश के कारण खेतों में नमी अधिक रहने पर फफूंद जनित रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। इसलिए किसान नियमित रूप से फसल की निगरानी करें और रोगग्रस्त पत्तियों एवं पौधों को अलग करें। उर्वरकों का प्रयोग तेज बारिश से ठीक पहले ना करें, क्योंकि पोषक तत्व पानी में बह सकते हैं। इसी तरह बारिश के दौरान कीटनाशक या फफूंद नाशक का छिड़काव ना करें। मौसम साफ होने और पर्याप्त सूखा मिलने पर ही कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही पौध संरक्षण का कार्य करें। इस दौरान केला, नारियल और अन्य बागवानी फसलों में जल निकासी पर विशेष ध्यान दें तथा कमजोर पौधों को सहारा दें। खेतों की मेड़ और नालियों की भी समय समय पर सफाई करते रहें। इसके साथ साथ भारी बारिश या गरज चमक के समय खुले खेत में काम करने से बचें।
0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे मौसम परामर्श।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: साथियों आइए सुनते हैं एक जानकारी।
2: किसान साथियों, अजूला जल से मुक्त रूप से तैरने वाला एक जलीय फर्न एवं सुंदर बारीक पत्तियों वाला पौधा है। अजूला तालाबों, पानी के गड्ढों और नम गर्म उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे लगभग 25 से 50 प्रतिशत प्रकाश की आवश्यकता होती है। यह जल की उपलब्धता के प्रति बहुत ही संवेदनशील है।

0: है और जल के बिना पनप नहीं सकता। इसके प्रजनन और विकास के लिए सर्वोत्तम तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है तथा सापेक्षिक आर्द्रता 95 से 90% अच्छी मानी जाती है। इसका सर्वोत्तम पीएच मान 5 से 7 है। अजोला जल से ही आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करता है। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि अजोला का उत्पादन कैसे किया जाता है। उपजाऊ मिश्रित मिट्टी के साथ गोबर और पानी को समान रूप से मिलाकर तालाब में समान रूप से फैलाने की जरूरत होती है। 6x4 फीट आकार के एक तालाब के लिए यह आवश्यक है। यह समान रूप से समूचे तालाब में दिया जाना चाहिए। तालाब में पानी की गहराई 4 से 6 इंच होनी चाहिए। तालाब की सतह भी समतल होनी चाहिए जिससे पूरे तालाब क्षेत्र में पानी की गहराई समान रहे। मॉनसून के मौसम के दौरान बारिश के पानी का संचयन छत आदि से किया जा सकता है। अजोला की खेती के लिए यह संचित जल का इस्तेमाल किया जाए तो यह एक उत्कृष्ट और तीव्र विकास सुनिश्चित करेगा। चलिए अब हम आपको बता दें कि अजोला से पशुओं को होने वाले लाभ क्या है। अजोला सस्ता, सुपाच्य एवं पौष्टिक पूरक पशु आहार है। इसे खिलाने से वसा व वसा रहित पदार्थ सामान्य आहार खाने वाले पशुओं के दूध में अधिक पाई जाती है। पशुओं में बांझपन निवारण में उपयोगी है। पशुओं के पेशाब में खून की समस्या फास्फोरस की कमी से होती है। पशुओं को अजोला खिलाने से यह कमी दूर हो जाती है। अजोला से पशुओं में कैल्शियम, फास्फोरस, लोहे की आवश्यकता की पूर्ति होती है जिससे पशुओं का शारीरिक विकास होता है। अजोला में प्रोटीन, आवश्यक अमीनो एसिड, विटामिन तथा बीटा कैरोटीन एवं खनिज लवण जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें शुष्क मात्रा के आधार पर 40 से 60% प्रोटीन, 10 से 15% खनिज एवं 7 से 10% अमीनो अम्ल जैसे सक्रिय पदार्थ एवं पॉलीमर्स आदि पाए जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की मात्रा अत्यंत कम होती है, अतः इसकी संरचना इसे अत्यंत पौष्टिक एवं असरकारक आदर्श पशु आहार बनाती है। यह गाय, भैंस, भेड़, बकरियों, मुर्गियों आदि के लिए एक आदर्श चारा सिद्ध हो रहा है। दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों से साबित होता है कि जब पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किलोग्राम अजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में 15 से 20% वृद्धि दर्ज की जाती है। इसके साथ ही इसे खाने वाली गाय भैंसों की दूध की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर हो जाती है। यह मुर्गी पालन करने वाले व्यवसायियों के लिए भी बेहद लाभकारी चारा सिद्ध हो रहा है। यही नहीं, अजोला को भेड़ बकरियों, सुअरों एवं खरगोश, बतखों के आहार के रूप में भी बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे जानकारी।

किसान साथियों, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हमने कार्यक्रम के शुरुआत में ही साथियों आपसे प्रश्न पूछा था कि पशु आहार में दाने और चारे का क्या अनुपात होना चाहिए,

0: और इस प्रश्न का सही उत्तर है, पशु आहार में 3 भाग चारे के साथ 1 भाग दाना होना चाहिए। कुछ किसान भाइयों को इस प्रश्न का उत्तर पहले से ही पता था होगा और कुछ साथियों को प्रश्नोत्तर के माध्यम जानकारी मिल गई होगी।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: साथियों, बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। समय की रफ्तार के साथ अब हमें भी रुकना होगा। याद रखिएगा, खेत हरा तो घर भरा, पेड़ हरा तो जीवन हरा। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी खेती किसानी की नई बातों के साथ, नई ऊर्जा और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपनी इस दोस्त रागिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले विशेष प्रसारणों के बारे में। आज शाम 7 बजे आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल सुबह 7 बजे लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सीधा प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

कल सवेरे 8:50 पर आप सुन पाएंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नेताजी स्टेडियम से ध्वजारोहण समारोह और द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी का द्वीपवासियों को संबोधन का सीधा प्रसारण।

कल शाम 6:45 पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री विजयपुरम स्थित नेताजी स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी का द्वीपवासियों के नाम संदेश की रिकॉर्डिंग आप सुन पाएंगे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 6:35 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधित चेतावनी में बताया जाता है कि समुद्र में वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से रहेगी, जो कि बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। अतः मछुआरों को 16 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल शाम तक के मौसम संबंधित पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। मौसम के बाद अब जलयान यात्रा संबंधी सूचना।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी भारत सीमा मायबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल रात 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान रविवार 16 तारीख को दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। जलयान नालंदा आज रात 9 बजे लिटिल अंडमान के लिए श्री विजयपुरम से जाएगा तथा इसकी वापसी होगी कल सुबह 9 बजे लिटिल अंडमान से। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर सोमवार 17 तारीख को प्रातः 7 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी मंगलवार 18 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए। जलयान नालंदा कैंबल बे के लिए मंगलवार 18 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा इसकी वापसी होगी बृहस्पतिवार 20 तारीख को सवेरे 8 बजे कैंबल बे से। जाते व आते समय ये जलयान नानकौरी में भी रुकेगा। एमवी रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल प्रातः 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। यह जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप।

से। एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल सवेरे 6:15 पर स्वराज द्वीप के लिए श्रीविजयपुरम से जाएगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से।

अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले विशेष प्रसारण। आज शाम 7 बजे आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल सुबह 7 बजे लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सीधा प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल

दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल सुबह 7 बजे लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सीधा प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल सवेरे 8:50 पर आप सुन पाएंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नेताजी स्टेडियम से ध्वजारोहण समारोह और द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी का द्वीपवासियों को संबोधन का सीधा प्रसारण।

भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2026 को लाल किले की प्राचीर से होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह का दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम के माध्यम से सुबह 6:25 से कार्यक्रम की समाप्ति तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। साथ ही नेताजी स्टेडियम श्री विजयपुरम के 80वें स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह का भी दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम के यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुबह 8:50 से कार्यक्रम की समाप्ति तक लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम द्वारा विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। तत्पश्चात लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन का पुनः प्रसारण किया जाएगा। 16 अगस्त को भी माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन को दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम सुबह 8 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक पुनः प्रसारण करेगा।

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या यानी आज माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्र के नाम दिए गए संदेश हिंदी और अंग्रेजी में दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम द्वारा आज शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 6:45 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस अंतराल के बाद।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर में 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर पीड़ितों के साहस और संघर्ष को नमन करते हुए कहा कि यह दिन सद्भाव और भाईचारा मजबूत करने के संकल्प लेने का दिन है। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी श्री विजयपुरम में होगा मुख्य समारोह। नेताजी स्टेडियम में उपराज्यपाल DK जोशी करेंगे ध्वजारोहण। और मरीन फ्लैग पॉइंट बनेगा भव्य समुद्री रोशनी का केंद्र, जहाजों की जगमगाहट के साथ कल शाम रंग बिरंगे फ्लेयर्स का होगा सामूहिक प्रदर्शन।

सांध्य समाचारों के साथ मैं के जगदीश्वरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन अब से कुछ देर बाद शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम द्वारा नेताजी स्टेडियम से राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का सजीव प्रसारण सुबह 8:50 से किया जाएगा। शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। इसके अलावा कल रात 8 बजे और 16 अगस्त को सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री के संबोधन का पुनः प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री के संबोधन को देखते हुए कल प्रादेशिक समाचार का प्रसारण निर्धारित समय सुबह 7:05 के बजाय 6:45 पर प्रसारित किया जाएगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस और संघर्ष को याद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि विभाजन के उस दौर ने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, लोगों ने अपने को खोया और असहनीय पीड़ा सही। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन देश में सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने के संकल्प को और दृढ़ करे। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण के लिए मिलकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। श्री मोदी ने संस्कृत का एक उदाहरण भी साझा किया और विभाजन की भयावह परिस्थितियों से उभरकर राष्ट्र की प्रगति में अमूल्य योगदान देने वाले सभी देशवासियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने अपने साहस और संकल्प से साबित किया कि विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मौन रैली और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह रैली मिडिल पॉइंट स्थित भाजपा भवन से शुरू होकर तिरंगा पार्क में संपन्न हुई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी सहित पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले तथा विस्थापन का दंश झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। तिरंगा पार्क में आयोजित प्रदर्शनी में वर्ष 1947 के विभाजन से जुड़े ऐतिहासिक घटनाक्रम, बंगाल और असम की विभाजन सीमा को दर्शाने वाले मानचित्र, उस दौर के समाचार पत्रों की रिपोर्ट तथा विस्थापन और पलायन से संबंधित ऐतिहासिक चित्र प्रदर्शित किए गए।

0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने कहा कि विभाजन की त्रासदी को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और इतिहास से सीख लेने के उद्देश्य से हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। उन्होंने विभाजन के दौरान हुई हिंसा और बड़े पैमाने पर हुए विस्थापन का उल्लेख करते हुए पीड़ितों की स्मृति को सम्मान देने की बात कही। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने कहा,
1: ये बहुत ही दुखद दिन था 14 अगस्त 1947 को, जिसमें हमारे देश का दो हिस्सा हुआ और लगभग 20 लाख हिंदू, ईसाई, पारसी, सिख लोगों का कत्लेआम हुआ। उसके चलते ही इसी दिन को हम लोग एक दुख के रूप में पूरा भारतीय जनता पार्टी हर साल मनाती है। विभाजन विभीषिका के रूप में ये जो आज दिन मनाया है, ये बहुत ही दुखद दिन है, लेकिन फिर भी देश के दो टुकड़े हुए जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कराए गए, लेकिन देश के लिए दुर्भाग्य था 14 अगस्त 1947 जो देश के दो टुकड़े हुए।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, उपराज्यपाल संबोधन और अंडमान निकोबार कमान। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस भी FM रेडियो पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य समारोह कल राजधानी श्री विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी सुबह 9:19 पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए कल राजधानी श्री विजयपुरम में यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है। VIP और पास धारकों के वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। उपराज्यपाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के वाहन सुबह 8:30 तक नेताजी स्टेडियम के अंदर पार्क करने होंगे। गुलाबी पास धारकों के वाहन सुबह 8:15 तक अंडमान क्लब और स्पोर्ट्स हॉस्टल के सामने निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में खड़े किए जाएंगे। पीले पास धारकों के वाहनों की पार्किंग मॉडल स्कूल, क्लॉक टावर और जिमकाना क्रॉसिंग होते हुए नेताजी स्टेडियम के मुख्य गेट के पश्चिमी हिस्से तथा स्विमिंग पूल के पास होगी। बिना पास वाले वाहन वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और गर्ल्स स्कूल के पास निर्धारित पार्किंग में खड़े किए जाएंगे। आबडीन बाजार से साउथ पॉइंट जाने वाले वाहनों को मॉडल स्कूल क्रॉसिंग से बंगाली क्लब, गोलघर, सचिवालय जंक्शन, पुलिस लाइन और नयागांव होते हुए जाना होगा। वहीं साउथ पॉइंट से अबरडीन बाजार जाने वाले वाहन शादीपुर, नयागांव जंक्शन, पुलिस लाइन, RBV, सचिवालय जंक्शन और गोलघर मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। भारी वाहनों और बसों को सुबह 7 से 11 बजे तक सेलुलर जेल की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। इन्हें बंगाली क्लब से गोलघर और जंगली घाट की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। समारोह स्थल की ओर वाई नारायण जंक्शन, आरके मिशन, फायर ब्रिगेड जंक्शन और वाटर स्पोर्ट्स जंक्शन से सुबह 8:30 के बाद वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। जीबी पंत अस्पताल जाने वाले वाहनों को सुबह 7 से 11 बजे तक गांधी प्रतिमा, मरीन गेट, सिस्टी नगर, डिगनाबाद, शीशो रोड और खान जंक्शन होते हुए अस्पताल के निकास द्वार तक जाना होगा। आपातकालीन वाहनों के लिए वाई नारायण जंक्शन से सेलुलर जेल होते हुए जीबी पंत अस्पताल का मार्ग सुबह 8:30 से 11 बजे तक खुला रहेगा। परेड टुकड़ियों के वाहन जवानों को उतारने के बाद वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और गर्ल्स स्कूल की पार्किंग में खड़े रहेंगे और परेड समाप्त होने के बाद वाई नारायण जंक्शन होते हुए लौटेंगे। इस बीच कल अबरडीन जेटी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और नॉर्थ वे जाने वाली निजी पर्यटक नौकाओं का संचालन जंगली घाट जेटी से किया जाएगा। अंडमान निकोबार कमान की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कल शाम मरीना फ्लैग पॉइंट के सामने खड़े भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और जहाजरानी सेवा निदेशालय के जहाजों को रोशनी से सजाया जाएगा। जहाजों पर शाम 5:45

0: मिनट से रात 10 बजे तक रोशनी रहेगी। इसके अलावा कल शाम 5:39 पर जहाज़ों से एक साथ रंग बिरंगे फ्लेयर्स छोड़े जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर में 80वें राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर पीड़ितों के साहस और संघर्ष को नमन करते हुए कहा कि यह दिन सद्भाव और भाईचारा मजबूत करने के संकल्प लेने का दिन है। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी श्री विजयपुरम में होगा मुख्य समारोह। नेताजी स्टेडियम में उपराज्यपाल डीके जोशी करेंगे ध्वजारोहण। और मरीन फ्लैग पॉइंट बनेगा भव्य समुद्री रोशनी का केंद्र। जहाजों की जगमगाहट के साथ कल शाम रंग बिरंगे फ्लेयर्स का होगा सामूहिक प्रदर्शन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम।
2: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
3: बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत।
4: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
1: बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी।
5: माझी पॉलिसी माझा हाथी।
1: बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक।
6: मारी पॉलिसी मारे हाथ।
1: बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर।
6: यन पॉलिसी यन कयन।
1: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।

श्रोताओं, कल सुबह 7 बजे लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सीधा प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

कल सवेरे 8:50 पर आप सुन पाएंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नेताजी स्टेडियम से ध्वजारोहण समारोह और द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी का द्वीपवासियों को संबोधन का सीधा प्रसारण।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब से कुछ देर बाद यानी शाम 7 बजे आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ऑर्डर की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नाल साहब, न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: दिस इज आकाशवाणी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे वी नाउ ब्रिंग यू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मूज एड्रेस टू द नेशन।
2: ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। आपसे कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान अपने प्रयासों से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार तथा कलाकार, मार्गदर्शक बुद्धिजीवी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की टीमों के कर्मठ सदस्य, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्र में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। वयं राष्ट्रे जागरूयाम, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुए, उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही

व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारे संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्यरूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश ने तेज गति से समावेशी विकास किया है। विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुई है। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलवती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार की अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर

अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नए उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नए रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत के विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ हैं। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुक कान नेलते मिरु चेणे राग बया दाया हाया गे गुजुक कान अबुआ ज्योति धर्म दारे चेदा बाबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस गीत का संदेश ये है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा हरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त

करने वाले उद्यमियों में लगभग दो तिहाई लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारी गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्षों की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा और लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में भारत की युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसीलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेल कूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य

पराक्रम को स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ओ ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को ये कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपने गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है। तेलुगु भाषा में रचना करने वाले महान राष्ट्रवादी साहित्यकार गुर्जाड़ा अप्पा राव ने अपने एक गीत में सभी भारतवासियों को देश प्रेम का अमूल्य संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, देश मुन्नु प्रेमिंचु मन्ना, मंची अन्नदे पेंचु मन्ना, देश मंटे मट्टी का दोई, देश मंटे मनुष्यलोय। इन पंक्तियों का भाव है, देश से प्रेम करो, भलाई को बढ़ाओ। देश का अर्थ केवल मिट्टी ही नहीं है, देश का अर्थ समस्त जन समुदाय है। मुझे विश्वास है कि समाज की भागीदारी और सरकार के प्रयासों से गांव-गांव में, नगर-नगर में, भारत के घर-घर में रहने वाले सभी लोग स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनेंगे। आइए देश प्रेम की इसी सर्वसमावेशी भावना के साथ हम सब स्वतंत्र भारत को विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय साधना में स्वयं को समर्पित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माय डियर फेलो सिटीजन्स, नमस्कार। ऑन द ईव ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे, आई कन्वे माय वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस नेशनल फेस्टिवल। इन ए फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ, our country will witness the auspicious beginning of the 80th year since its independence. All Indians living in the country and abroad celebrate this festival with great joy. Our tricolor is the symbol of our freedom. We unfurl it with immense pride. On the 15th of August 1947, Bharat Mata was liberated from the shackles of subjugation. Every citizen became an architect of the destiny of independent India. The true meaning of freedom lies in ensuring that all citizens are able to utilize opportunities to fulfill their aspirations and work towards the goal of making India the foremost nation in the world. Dedicated students and teachers, scientists and engineers committed to development, doctors and healthcare workers providing health services, industrious workers and our annadata farmers are all contributing to nation building through their efforts. Talented sports persons, craft persons and artists, visionary intellectuals, diligent members of the workforce in the private and public sectors, people's representatives devoted to serving them, officials in the judicial system, dutiful civil servants, big and small investors contributing to our economy, selfless social workers, and all Safai Mitra who are frontline workers of the Swachhata Abhiyan are all

0: On the eve of Independence Day, you were listening to Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
1: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अभी आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश सुन रहे थे।
2: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले

0: विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
3: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 7:55 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक देशभक्ति गीत।

0: अभी आप एक देशभक्ति गीत का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए समाचार तरंगिणी।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है समाचार तरंगिणी। इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति द्वारा 80वें स्वतंत्रता दिवस और हर घर तिरंगा अभियान।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। इसमें उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके विशिष्ट सार्वजनिक जीवन और भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में उनकी सेवा तक के अनुभवों, संघर्षों और उपलब्धियों का वर्णन है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी रामनाथ कोविंद सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करना जारी रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़े और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचे।
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल का दौरा किया और देश की आजादी के लिए अमूल्य बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की और वीर सावरकर की कोठरी में श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्वतंत्र ज्योति, केंद्रीय टावर, फांसी घर, संग्रहालय और प्रदर्शनी दीर्घा का भी दौरा किया। श्री राधाकृष्णन ने स्वतंत्र संग्राम की वीर गाथा पर आधारित लाइट एंड साउंड शो भी देखा। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने वीर सावरकर को अद्वितीय और निर्भीक क्रांतिकारी बताया। उन्होंने कहा कि सावरकर का देशभक्ति से ओतप्रोत जीवन कई पीढ़ियों के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को जेल भेजने का उद्देश्य उनका मनोबल तोड़ना था, लेकिन सावरकर कभी हतोत्साहित नहीं हुए और अंततः अंग्रेजी राज का मनोबल टूट गया।
2: Cellular jail, the designing and the construction prevents every freedom fighter not to meet others. And it shows how much hard this our great independent warriors have undergone. That is getting reflected. When you enter this cellular jail, where Savarkar and other great warriors who fought and have been jailed here without meeting anyone, the British Raj wants to demoralize every freedom fighter. All these things is coming to your mind, that is giving a big patriotic feeling. Once you put your step inside the cellular jail, your good, great, burning patriotism is again lightened in your heart. Those who visit here, they can understand freedom of India has now never come without hurdles, without great sacrifice. Veer Savarkar's cell has not been destroyed by the earthquake of that time. So this shows

इससे पहले श्री राधा कृष्णन के राजधानी श्री विजयपुरम स्थित INS उत्कृष्ट पहुंचने पर उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल DK जोशी ने उनका स्वागत किया। उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उपराष्ट्रपति 2 दिन के द्वीप समूह दौरे पर थे। इस दौरान वे हर घर तिरंगा अभियान के शुभारंभ सहित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का भी दौरा किया। उपराष्ट्रपति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम तिरंगा कॉन्सेप्ट ऑन वंदे मातरम में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति इस अवसर पर सभागार परिसर में लगाई गई हर घर तिरंगा प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कल मुख्य समारोह श्री विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम में आयोजित होगा। द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल DK जोशी सुबह 9:19 पर ध्वजारोहण करेंगे। द्वीपों के तीनों जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर एक साथ ध्वजारोहण किया जाएगा। साथ ही प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार अन्य विभागों से भी अपने अपने परिसर में समारोह आयोजित करने की अपील की गई है। उधर श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण किया जाएगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष वी वेट्रीवेलु वार्ड नंबर 7 में सुबह 6:15 पर, कनिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश पाल गोविंद नगर पालिका परिषद विद्यालय में सुबह 6:45 पर और अध्यक्ष M वसंता नगर पालिका परिषद कार्यालय परिसर में सुबह 7 ध्वजारोहण करेंगी। कल होने वाले स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के लिए यातायात की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार VIP और पास धारकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। उपराज्यपाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के वाहन नेताजी स्टेडियम के अंदर सुबह 8:30 तक पार्क करने होंगे। गुलाबी पास धारकों के वाहन अंडमान क्लब और स्पोर्ट्स हॉस्टल के सामने पार्किंग क्षेत्र में सुबह 8:15 तक पार्क करने होंगे। पीले पास धारकों को अपने वाहन सुबह 8:00 तक मॉडल स्कूल क्लॉक टावर जिमखाना क्रॉसिंग से होते हुए नेताजी स्टेडियम के मुख्य गेट के पश्चिमी ओर तथा स्विमिंग पूल के पास पार्क होंगे। बिना पास वाले वाहन वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और गर्ल्स स्कूल पार्किंग के पास पार्क किए जाएंगे। अंडमान बाजार से साउथ पॉइंट जाने वाले वाहनों को मॉडल स्कूल क्रॉसिंग से बंगाली क्लब, गोलघर, सचिवालय जंक्शन, पुलिस लाइन और नया गाँव की ओर जाना होगा। साउथ पॉइंट से अबडिन बाजार जाने वाले वाहन साउथ पॉइंट से शादीपुर, नया गाँव जंक्शन, पुलिस लाइन, RBV सचिवालय जंक्शन, गोलघर मार्ग की तरफ जाएंगे। भारी वाहनों और बसों को सुबह 7:00 से 11:00 तक सेल्युलर जेल की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। इन्हें बंगाली क्लब से गोलघर और जंगली घाट की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। समारोह स्थल की ओर वाई नारायण जंक्शन से RK मिशन, फायर ब्रिगेड जंक्शन, वाटर स्पोर्ट्स जंक्शन से सुबह 8:30 के बाद किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। GB Pant अस्पताल जाने वाले वाहनों को सुबह 7:00 से 11:00 तक गांधी प्रतिमा से मरीन गेट, सृष्टि नगर, डिगनाबाद, सी शोर रोड, खान जंक्शन, अस्पताल निकास द्वार की ओर जाना होगा। आपातकालीन वाहनों को वाई नारायण जंक्शन, सेलुलर जेल होते हुए GB Pant अस्पताल मार्ग का उपयोग करना होगा। यह मार्ग सुबह 8:30 से 11:00 तक ही खुला रहेगा। परेड टुकड़ियों के वाहन जवानों को छोड़ने के बाद वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा गर्ल्स स्कूल पार्किंग में रहेंगे और परेड के समापन के बाद वाई नारायण जंक्शन होकर वापस लौटेंगे। कल अबडिन जट्टी से रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे जाने वाली निजी पर्यटक नौकाओं का संचालन जंगली घाट जट्टी से किया जाएगा। अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा द्वीप समूह में बनाए गए 2 ऐतिहासिक गिन्नीस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के उपलक्ष्य में कल लोक निवास में गिन्नीस वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी ने गोताखोरों को प्रमाण पत्र और पदक प्रदान कर सम्मानित किया। इस समारोह में प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और पर्यटन हितधारक उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह पूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा देश के गौरव का प्रतीक और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार अभियान के तहत देश भर में तिरंगा यात्राएं, रैलियां और संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

तथा सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया जाएगा। इस वर्ष समारोह का प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवासियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव से जोड़ना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा वेबसाइट पर सेल्फी अपलोड करने की अपील की है। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा तथा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हाल ही में तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि यह अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जगा रहा है। नई दिल्ली में अपने आवास पर तिरंगा फहराते हुए उन्होंने कहा कि करोड़ों लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी सोशल मीडिया पर तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर साझा की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सभी नागरिकों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। श्री विजयपुरम में हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत वीर सावरकर पार्क से देशभक्ति गीतों के साथ हुई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी और प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने रैली का शुभारंभ किया। रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट डेविड बेकहम भी रैली में उपस्थित रहे। प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। रैली वीर सावरकर पार्क से शुरू होकर सेल्यूलर जेल होते हुए गांधी प्रतिमा तक पहुंची। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता, गौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना को मजबूत किया जा रहा है। वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आयोजित हर घर तिरंगा अभियान में लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और वीर सावरकर के योगदान को याद किया गया। प्रदेश प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी ने युवाओं से स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। रैली के समापन पर लोगों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने और राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनाए रखने की अपील की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 से इन द्वीपों में क्रियान्वित की जा रही है। योजना का उद्देश्य अप्रत्याशित प्राकृतिक घटनाओं के तहत पंजीकृत किसानों को बीमा कवर प्रदान करना है। यह योजना कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करती है और किसानों की आय को स्थिरता प्रदान करती है। द्वीप समूह के तीनों जिलों में खरीफ 2026 सीजन के लिए धान PMFBY के तहत अधिसूचित फसल है। योजना के तहत नामांकन सभी किसानों को भूमि रिकॉर्ड या प्रशासन द्वारा अधिसूचित अन्य दस्तावेज 31 अगस्त तक जमा करने को कहा गया है। किसानों को अपने संबंधित क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक या सहकारी बैंक में भूमि दस्तावेजों के साथ संपर्क कर योजना के तहत अपना नामांकन कराना होगा। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर स्वयं भी पंजीकरण किया जा सकता है। नामांकन के बाद फसल को हुए किसी भी नुकसान की सूचना बीमित किसान सीधे 72 घंटों के भीतर क्रियान्वयन एजेंसी, संबंधित बैंक या स्थानीय कृषि विभाग को दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर पर संपर्क किया जा सकता है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के मत्स्य विज्ञान विभाग ने हाल ही में जलीय जीवों की बीमारियों की रोकथाम को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। यह कार्यशाला जलीय जीवों की बीमारी के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक ने की। मत्स्य विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर मुर्गानंदम कार्यशाला के संयोजक रहे, जबकि वैज्ञानिक डॉक्टर जे प्रवीण राज कोर्स निदेशक रहे। कार्यशाला में मत्स्य विभाग के अधिकारी और फील्ड कर्मचारी, किसान, झींगा पालक, सजावटी मछली के व्यापारी और केज कल्चर संचालकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जलीय जीवों के स्वास्थ्य, बीमारी की रोकथाम, बायो सिक्योरिटी और क्वारंटाइन के महत्व पर जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को स्वस्थ स्टॉक भरोसेमंद स्रोतों से लेने और नए स्टॉक को शामिल करने से पहले उसकी स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी गई। कार्यशाला का उद्देश्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जलीय जीवों की

बीमारियों की निगरानी और रोकथाम के लिए संबंधित लोगों की जागरूकता और क्षमता बढ़ाना था। इसके साथ ही समाचार तरंगणी का ये अंक समाप्त हुआ। समाचार तरंगणी आकाशवाणी श्री विजयपुरम के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से तैयार की जाती है। वाचिका अनीता क्रिकेटा, संपादक और प्रस्तुतकर्ता अंकित कुलश्रेष्ठ।

अभी आप समाचार तरंगिणी सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 10वीं कड़ी।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. पैसे बचाने के आसान तरीके आज के लम्हे प्रोग्राम में आप सुनेंगे चेतन के साथ। पहले निवेश करें, फिर खर्चा करें। ज़्यादातर लोग उल्टा करते हैं, सारे खर्चों के बाद जो पैसा बचता है वो पैसा निवेश करते हैं यानी सेव करते हैं। अगर आप पैसा बचाने में परेशानी हो रही है तो आप सैलरी आते ही पैसा निवेश कर दिए, जो बचेगा उसे आप खर्च करिए। कई बार जब बैंक में पैसा कम होते हैं खर्च अपने आप कम हो जाते हैं। महीने के शुरुआत में ही आप रिकरिंग डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड्स के माध्यम में पैसे निवेश कर दें। बचे हुए पैसों को आराम से निवेश कर खर्च कर सकते हैं। जैसे ही आपकी सैलरी आए उसमें से कुछ पैसे आप एक दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दीजिए, जो कि आप केवल निवेश के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। खर्च केवल अपने आम खर्चों वाले बैंक अकाउंट में करिए। वैसे तो क्रेडिट कार्ड के उपयोग करने से कुछ फायदे हैं, परंतु अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते तो बेहतर होगा कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल न करें। अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी संयम होना चाहिए, अन्यथा आप काफ़ी ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। हर महीने पहले से ही अपना बजट बना ले और फिर उस पर अमल करें। अपने खर्चों को नोट भी करें और बाद में उनकी तुलना अपने बजट से करें। बजट से आपको ये भी पता चलेगा कि किन खर्चों को कम किया जा सकता है और किन को नहीं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कहाँ ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। धीरे धीरे आप उन अतिरिक्त खर्चों को कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप हर हफ्ते बाहर खाना खाते हैं तो कोशिश करें कि दो हफ्ते को एक बार खाएं और बाकी का जो भी है घर पर पकाकर खाएं, होम कुक्ड फूड। दिस इज़ हेल्थी एज वेल एज सेव्स मनी। जिन चीज़ों का इस्तेमाल न हो उन पर पैसे खर्च न करें।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: अगर किसी मैगजीन या पत्रिका को सब्सक्राइब कर रखे हैं पर पढ़ते नहीं हैं तो ऐसे सब्सक्रिप्शन को बंद करें। ऐसे और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं जो आप रोक सकते हैं। अपने खर्चों को प्लान करें, खासकर अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो पहले से बुकिंग करने पर हवाई जहाज, ट्रेन या होटल की बुकिंग सस्ते में हो सकती है। समय समय पर मॉल में या ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर सेल चलती रहती है। अगर आप समझदारी से काम ले तो काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। बड़े त्योहारों या नए साल पर तो सेल लगती ही है। कई बार हम लोग कुछ कदम इसलिए नहीं उठाते क्योंकि हमको लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कि अगर समझदारी से इस्तेमाल करें तो बिजली का बिल कम हो सकता है। बूंद बूंद सागर बनता है।

दोस्तों, अगर आपके पास मोबाइल का पोस्टपेड कनेक्शन है और आपका बिल काफ़ी ज़्यादा आता है तो आप प्रीपेड कनेक्शन पर शिफ्ट कर सकते हैं। पोस्टपेड कनेक्शन में कई बार अपनी यूसेज की आइडिया नहीं होता है, इसीलिए बिल ज़्यादा आता है। और फिर आजकल प्रीपेड कनेक्शन में सुविधा भी काफ़ी अच्छी और सस्ती मिल रही है। अगर आप महीने के 1,000 रुपये भी बचा लेते हैं तो साल में 12,000 रुपये बचा सकते हैं। दिखावे के चक्कर में न पड़े दोस्तों, ये ना तो आपकी आर्थिक सेहत के लिए अच्छा है और ना ही आपकी मानसिक सेहत के लिए। उतना ही खर्चा करें जितना आप में सामर्थ्य हो। क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लेकर केवल दिखावे के लिए खर्चा करना बेवकूफ़ी है। ये सारी बातें शायद सभी पर लागू नहीं होगी। आपको देखना होगा कि आपके लिए सबसे बेहतर रास्ता क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं पैसे बचाने के। इजी टिप्स टू सेव मनी, बचत करने के आसान तरीके चेतन के साथ लम्हे प्रोग्राम में सुनते रहिए दोस्तों। सभी लोगों को महीने का बजट बनाना चाहिए जिसे ये पता चले कि इनकम और एक्सपेंसेस कितनी हैं। ज़्यादातर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन इससे आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। इसका सीधा सा तरीका है कि आप अपने खर्चों का हिसाब रखना शुरू कर दीजिए, फिर महीने के अंत में उसमें से फालतू खर्चे हटा दीजिए और उसके आधार पर अगले महीने का बजट बना दीजिए। खर्चों का हिसाब करने के लिए आपसे कोई भी रिलेटेड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आप हर दिन के अंत में खर्च लिख सकते हैं। जिन लोगों को सही में बचत करनी है वो हमेशा अपने वेतन से कुछ पैसे निकाल दे और बचे हुए राशि से घर का बजट बनाए। सभी तरह के खर्च इस बजट में लिखना चाहिए जिसे बिना जरूरी खर्चे को रोका जा सके।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: दोस्तों, लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG खाना बनाने का सबसे सस्ता तरीका नहीं है। रसोई गैस पर भी बचत हो सकती है यदि इंडक्शन चूल्हा इस्तेमाल किया जाए। खाना बनाते समय बहुत से व्यंजन होते हैं जिससे सीधे गैस की जरूरत नहीं होती है, उस समय इंडक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। यह चूल्हा बिजली पर चलती है पर इसमें बहुत कम बिजली का उपयोग होता है और इस तरह हम रसोई गैस पर बचत कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों का पैसा या तो सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है या फिर वो FD या कोई इंश्योरेंस में निवेश करते हैं। कुछ लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और रिस्क उठाने से घबराते हैं। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स न करें और अपने फ्यूचर प्लान के अनुसार कुछ पैसे टर्म इंश्योरेंस खरीद लें और बाकी का पैसा अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जैसे फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, इक्विटी आदि में निवेश करके अपना एक मजबूत इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लें। थोड़ी सी रिस्क उठाएं और शेयर मार्केट की सिक्योरिटी जैसे इक्विटी, बॉन्ड आदि में भी कुछ पैसे इन्वेस्ट करें। शेयर्स या इक्विटी में रिस्क होती है लेकिन सही ज्ञान और रिसर्च के साथ लॉन्ग टर्म अप्रोच से इन्वेस्ट करने पर सबसे अधिक रिटर्न्स शेयर्स में ही मिलता है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में अधिक जानकारी ले। मोबाइल और इंटरनेट आज जरूरत बन गई है और इस पे लोग बहुत खर्चा भी करते हैं। बचत के लिए सबसे पहले इसी खर्च पे कटौती करनी चाहिए। अगर आप पोस्टपेड प्लान उपयोग कर रहे हैं तो अपने इस्तेमाल के अनुसार प्रीपेड कनेक्शन ले लेना चाहिए जिसे हम ज़्यादा प्रयोग ना करें। इंटरनेट रिचार्ज हो तो बात करने के लिए सोशल मीडिया साइट्स यूज़ कर सकते हैं। आजकल कई जगह मुफ्त वाईफाई मिलता है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने महीने के आवश्यकता के अनुसार बैलेंस और इंटरनेट रिचार्ज करवाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ मनी सेविंग टिप्स आपके लिए। उम्मीद है आप भी पैसे बचाएंगे और बहुत जल्द आपका बहुत सारा ढेर सारा इन्वेस्टमेंट हो। इसी आशा के साथ मैं भी आपसे इजाज़त लेता हूँ आज के लम्हे प्रोग्राम में। अगले कड़ी में फिर से मुलाकात होगी, तब तक आप चेतन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार
0: दोस्तों। अगर आप हमें कोई

सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में ये गीत था वीर ज़ारा फिल्म से। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। रोजगार समाचार। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति अर्थात डेप्यूटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के 2 पदों पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के एक-एक पद रिक्त है। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग में समकक्ष पदों पर नियमित रूप से कार्यरत हो अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हो। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूरसंचार में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वहीं सहायक सलाहकार संचार पद के लिए उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूरसंचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन, आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम से अवर सचिव प्रशासन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण A-1 सफदरजंग एनक्लेव नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting turbo booster jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs. 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
2: Some cars are designed to blend in, others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design, already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now.
3: Nexa.
4: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting turbo booster jet.

आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो, अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए।

चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

श्रोताओं, कल सवेरे 7 बजे लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सीधा प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

कल सवेरे 8:50 पर आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नेताजी स्टेडियम से ध्वजारोहण समारोह और द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी का द्वीपवासियों को संबोधन का सीधा प्रसारण।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
1: महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार

0: और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
1: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
0: राष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प सुदृढ़ है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया। इसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का अवसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेल भवन परिसर में तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेलवे संगठन में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे तीसरे चरण के साथ किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया।
2: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया जाएगा। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा। समारोह में 2500 सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट तथा मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन के शहरी सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के युवा नवोन्मेष, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षित उत्कृष्ट युवा और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगर इस समारोह में शामिल होंगे। समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों के लगभग 15,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लाल किले पर 1,000 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व

0: पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। एक रिपोर्ट।
1: इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र के लिए चुना गया है। हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन लाखों देशवासियों को याद कर रहे हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापित की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज हमें जिस स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ है वो पिछली पीढ़ियों के महान बलिदान से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनों को खोया और पलायन करने के लिए मजबूर हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री नवीन ने उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और विस्थापन का दर्द सहा।
2: जब 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई उसी समय इस देश के लोगों को अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार जनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सबको आज नमन करता हूँ।
0: रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। छात्रों ने कहा है कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण रूप से निकाली जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय डिजिटल बैंक मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उड़ीसा में लगातार घनघोर वर्षा जारी है। वर्षा के कारण बालेश्वर, भद्रक, क्योंझर और मयूरभंज के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं।
3: आज उत्तरी ओडिशा में चारों तरफ पानी ही पानी है। बैतरणी, जलका, बूढ़ा बुलंगा, सुवर्णरेखा और सालंदी नदियों का एक बार फिर उफान पर है। खेत पानी में डूब गए हैं और सड़कें व गांव में पानी भरा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई लोग राहत शिविरों में हैं और कुछ इलाकों के निवासी राहत सामग्री और गांव में बाढ़ का पानी घुसने को लेकर चिंता जता रहे हैं। IMD ने आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग और 14 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को

विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

संडे से आते हैं कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी अपने पसंदीदा गीत इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं तो आप अपना नाम व पता, फिल्म का नाम, गीत के बोल टाइप करके व्हाट्सएप कीजिए हमें इस नंबर पर 9474234000। नंबर एक बार पुनः नोट करें 9474234000। करते हैं कार्यक्रम का आगाज और लेते हैं प्रोग्राम का पहला मैसेज जिसे भेजा है रंगस से पारितोष बराई ने। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं दिल जले फिल्म का ये गीत कुमार सानू और आदित्य नारायण की आवाजों में, बोल जावेद अख्तर की, धुन बनाई अनु मलिक ने।

हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में तैयार, अब लीजिए सुनिए सनम तेरी कसम फिल्म का ये शीर्षक गीत। आवाजें हैं अंकित तिवारी और पलक मुछल की, गीत रचना समीर अंजान की। इस गीत को सुनना चाहा है कैंपबेल बे से दीपक कुमार और अंशिका ने।

0: आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो, अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: संदेश से आते हैं कार्यक्रम को जारी रखते हुए, आइए सुनते हैं किडनैप फिल्म का ये गीत श्रेया घोषाल की आवाज में। इस गीत को सुनने के इच्छुक श्रोता है बम्बू फ्लैट से नाजिया और तरन्नुम।

अब एक सूचना। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2026 को लाल किले की प्राचीर से होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह का दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम के माध्यम से सुबह 6:25 से कार्यक्रम की समाप्ति तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। साथ ही नेताजी स्टेडियम श्री विजयपुरम से 80वें स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह का भी दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम के यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुबह 8:50 से कार्यक्रम की समाप्ति तक लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम द्वारा विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। तत्पश्चात लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन का पुनः प्रसारण किया जाएगा। 16 अगस्त को भी माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन को दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम सुबह 8 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक पुनः प्रसारित करेगा। सूचना समाप्त हुई।

लिटिल अंडमान से अंकुश यादव और स्मृति यादव की पसंद पर आइए अब सुनते हैं शंघाई फिल्म का ये गीत, नंदिनी श्रीकर और अरिजीत सिंह की आवाजों में, बोल कुमार के धुन बनाई विशाल शेखर ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में खामोशियां फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा सईद कादरी ने। इस गीत को पसंद किया है शहीद द्वीप से आकृति श्रेष्ठ और गौरव मंडल ने।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम, मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधित चेतावनी में बताया जाता है कि समुद्र में वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से रहेगी, जो कि बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। अतः मछुआरों को 16 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल शाम तक के मौसम संबंधित पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 10:30:45 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:28 और 20 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की पहली स्थानीय प्रसारण सेवा में हम

अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी श्रोताओं को ढेरों शुभकामनाएं।

0: सभा की शुरुआत अनमोल विचार के साथ।
1: हर वर्ष अगस्त माह की 15 तारीख को हम सब स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वर्षों के संघर्ष एवं अनेकों बलिदानों के बाद आज ही के दिन सन 1947 को हमें आजादी मिली। इसलिए ये दिन आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने का भी दिन है। अथक परिश्रम एवं शहादत के पश्चात मिली इस आजादी की रक्षा हर कीमत पर हमें करनी है। तो आइए आज हम प्रण लें कि हम हर कीमत पर अपने देश की आजादी की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देंगे। आज भारतवर्ष के हर नागरिक इस दिवस को पूर्ण उत्साह, उमंग और जोश के साथ मना रहा है। आज के दिन आप सभी श्रोताओं को स्वाधीनता दिवस की प्रातः बेला में ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई।
0: अनमोल विचार अभी आप सुन रहे थे और अब लीजिए सुनिए समवेत स्वर में कुछ देशभक्ति गीत।